0: प्राप्तेषु आवेदन पत्रेषु सप्ताशीत्यधिक शतं परिणाम प्रतिशतं परिणामाः घोषिताः सन्ति। अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख

0: से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालेम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning 3 indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak and anti-submarine warfare shallow water craft Agra yesterday. Mr. Modi said India's journey from INS Vikrant to this date is not just about new warships but towards increasing self-reliance.
2: INS Vikrant se lekar aaj tak ki yatra keval naye yuddhapoton ki yatra nahi hai. Ye Bharat ki बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: President Draupadi Murmu will visit Kuno National Park in Madhya Pradesh, Shivpur district today. During her visit, she will go on a safari in the park this morning and review the progress of the Cheetah Reintroduction Project. She will also interact with members of the Seheria tribe who work as Cheetah Mitras, Cheetah Trackers, local forest staff and tourist guides to learn about the experiences and role in the project. After the visit, the President will leave for Gwalior and later return to New Delhi. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious Cheetah Reintroduction Project in 2022 by releasing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park on his birthday. Later, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. India will host a 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the gathering, which brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. The meeting will focus on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today, with discussion centered on the rapidly evolving nature of national security threats and the role of new technologies in emerging security risks. Delegates will also examine cyber security, digital vulnerabilities and artificial intelligence-driven threats. The National Testing Agency NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. The national level eligibility test will be conducted in computer-based test mode until the 30th of this month in 2 shifts each day. The UGC NET exam is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship or GRF, Assistant Professor positions and admission to PhD courses.

0: classes. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all exam details. CBSE has commenced the release of Class 12 verification of issues observed and re-evaluation outcomes. In a statement, it said that the outcomes are being released in a phased manner, with over 87% of the total applications received declared yesterday. The outcomes of the remaining applications will be made available in phases, and the entire process is expected to be completed soon. The status of application can be checked at results.digilocker.gov.in. On to sports now. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their final FIH Pro League match in Rotterdam yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. समीन इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर. सुबह के 7:10 हो रहे हैं, वक्त हो रहा है लाइव मॉर्निंग शो पयाम ए सुबह का. आइए समाप्त करते हैं तजारती पैगाम के फौरन बाद.
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे. अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान. रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान. रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया. राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर.
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं.
3: अच्छा, तो पैकेट दिखा. ओए, ये तो एक्सपायर्ड है.
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें. अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-11-2100 पर.
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार.
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K.
8: दोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू. दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल. रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल. रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल. आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट. डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट.
9: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
10: हर लेन देन अब है आसान.

0: जो रूह की गहराइयों में सांस लेते हैं।
1: तो चाय का पहला घूंट भर लीजिए, अपनी खिड़कियों के पर्दे हटा दीजिए और खुद को ताज़ा हवा के सुपुर्द कर दीजिए।
0: हम हैं आपके मेज़बान आपके साथ इस प्रोग्राम में। प्राम है लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, जहां से शुरू होती है आपकी आज की कहानी। सुनिए, सोचिए और महसूस कीजिए, क्योंकि हर सुबह एक नया आगाज है नई जिंदगी का और आपकी किताब के नए सफ़े का, आपकी ज़िंदगी के नए बाब का। और ये बाब इस तरह से लिख दीजिए कि चारों तरफ हम खुशियाँ बिखेर सकें।

0: लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन इस नशरियात में कंट्रोल रूम में आज हमारे इंजीनियर्स हैं समीर अहमद और तारिक अहमद, और इनकी मावनत और इनकी भरपूर खिदमात की वजह से हमारी जो ये नशरियात है आप सब समीन तक पहुँच रही है।
1: बिल्कुल सही, और आज हम अपने सामीन से प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। जो हमने नगमा चलाया इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, शौकीन आपने उस चीज़ को नोटिस किया होगा। मोहब्बत की बात हुई, एक दूसरे के काम आने की बात।
0: बिल्कुल सही।
1: जो मोहब्बत का जायका है ना, जब लफ्ज़ों में घुलता है तो कायनात की खामोशी भी गुनगुनाने लगती है। कभी सोचा है हमने कि जब सूरज की पहली किरण बिखरती है ज़मीन पर दुनिया में, तो वो सिर्फ अंधेरों को नहीं मिटाती बल्कि हमारी रूह के निहा खानों में भी छुपे उन सवालों को भी रोशन करता है जो हम खुद से पूछने से घबराते हैं।
0: जी बिल्कुल, आज की सुबह महज एक वक्त का नाम नहीं, ये एक मौका है अपने वजूद की परछाइयों से मिलने का और इस ताल्लुक की पासदारी का जो हमारी रूहों के बीच है।
1: इंसान तन्हा होकर एक तिनकू के सहारे अगर चलने लगे तो भी लड़खड़ा सकता है, लेकिन अगर तिनकू के बजाय हाथ में हाथ हो तो फिर पहाड़ भी सर किए जा सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में हम क्या हासिल कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है शौकीन कि हमने कितनों को सहारा दिया है, मतलब हमारा वजूद जो है वो कितनों के लिए एक ऐसा पिलर बना है जिस पिलर को उन्होंने अपनी मुश्किल में थामा है।
0: आपके कहने का दरअसल यही मतलब है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है,
1: क्या
0: दूसरों के लिए कोई जी पाता है?
1: अगर जी नहीं पाता है तो मैं इतना ही कहूंगी कि अपने लिए तो हर जानदार जी लेता है, सांस लेता है, खा लेता है, पी लेता है, अपनी केयर करता है, बट अगर इंसान को हम इंसान की बात करें शौकीन, इंसान अशरफुल मखलूका है और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी मतलब क्वालिटीज रखी हैं, इतने गुण रखे हैं कि ये अपने साथ साथ सारी दुनिया को अपने साथ लेके चल सकता है, लेकिन सोचने की बात है, सोच की बात है और अपनी नीयतों का खलूस है। अगर वो पैदा हो जाए तो कोई भी हमारे आसपास जो मुश्किल में होगा ना, कभी मुश्किल में नहीं रहेगा,
0: नहीं रहना चाहिए। देखिए कतकलाफी माफ, यहाँ दरअसल मैं आपकी बात में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ।

0: आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मेरे वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप समाप्त कर रहे हैं हमारा लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान तस्लीमा और मेरे साथ हैं
1: शौकीन हिलाल।
0: शौकीन, अगर हम इस बात के बारे में सोचे, इस चीज के बारे में सोचे जो हम बात कर रहे थे कि एक दूसरे की मदद कैसे करें, तो देखिए आज अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें क्या कोई ऐसा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ समीम, क्या कोई ऐसा है जिससे आपके एक जुमले, आपके एक कदम या आपके एक राबते की जरूरत है? अगर है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे, उसके काम आएंगे, आ सकते हैं? अगर नहीं है आपके पास कोई हल उस चीज का, तो कम से कम आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं, उसे तसल्ली दे सकते हैं।
1: देखिए, क्योंकि जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका यह कि हम इसे दूसरों के लिए आसान बना दें, आप अपने सामीन से इस बारे में, इन तजुर्बात
0: के बारे में पूछ रही हूँ, बिल्कुल पूछ रही हूँ, और मैं खुद से भी पूछ रही हूँ कि अगर मेरे आसपास या मेरी लोकेलिटी में, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा मसला है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रिलेटेड है, तो क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? मैं आपके साथ एक तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ, हिलाल आपके साथ भी अपनी ये एक छोटा सा तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं यही स्टूडियो से बाहर जा रही थी और मैं बस का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे लोकल बस से घर जाना था। कभी कभी ऐसा प्रैक्टिस में आ जाता है कि जब ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो हमें सड़कों पर या फिर बहुत देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ियों का, तो मैंने भी लगभग 15 मिनट गाड़ी का वेट किया क्योंकि मैं ऑफ रूट थी। और ऐसे में मैंने नोटिस किया कि स्टैंड जो है, वेटिंग स्टैंड शौकीन हमारे यहाँ जो होते हैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चियाँ बैठी थी 12th क्लास की, तो जानबूझ के मैंने

0: दो गाड़ियां मिस की, उनको वॉच कर रही थी और वो एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रही थी जो मेरे कानों में पड़ी और मैंने महसूस किया कि मुझे अभी गाड़ी में बैठ के घर नहीं जाना चाहिए. तो मैं उनकी बातें सुन रही थी. दे वर वेरी डिप्रेस्ड, लाइक मुझे बहुत परेशान हाल लगी. तो मैं उनके साथ गई, उनके साथ बात की, उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो. बोला हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं. मैंने कहा कहाँ जाना है. तो उन्होंने बताया उन्हें कहाँ जाना है. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बस तो मेरी नहीं आ रही है क्योंकि मैं ऑफ रूट हूँ और शायद मुझे पता भी नहीं था कि बसेस कहाँ किधर से निकलती
1: हैं. निकल रही है, टाइमिंग क्या है वगैरह. जी बिल्कुल,
0: एग्जैक्टली. तो उस टाइम मैंने उनसे पूछा कि उस रूट की तो कई बसेस आकर निकल गई, तो आप लोग बस में बैठ क्यों नहीं रहे. लेकिन मैं बड़ा हल्का फुल्का माहौल बना दिया. तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, कहा दीदी हम लोग बहुत परेशान हैं. हम लोग जब कॉलेज जाते हैं उसके बाद ट्यूशन जाना पड़ता है, उसके बाद घर में जाते हैं तो सारे लोग हमारे सर पे सवार हो जाते हैं कि पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और ऐसे में हम मैनेज नहीं कर पाते. हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, पढ़ाई हमसे होती नहीं है. तो शकीन आपको पता है, मैंने उनसे पूछा कि आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या है. तो उन्होंने बोला अच्छा सुबह नेहरा कॉलेज पक्षी वहाँ, और हमें चाय पीने का भी मौका नहीं मिलता, उठकर हम अपने कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में काफ़ी एक दो घंटे लगते हैं, फिर जब हम आते हैं फिर हमें बाकी सारा वो जो हमारा टास्क होता है, जो हमारा काम होता है,
1: जी,
0: वो हम करते हैं. लेकिन अश्विन याद गसंकिन हम याद नहीं कर पाते हैं. तो फिर मैंने जब दिन का शेड्यूल उनसे पूछा तो अपने हिसाब से उनको एक शेड्यूल दे दिया कि मैंने कहा कि अपने लाइफ शेड्यूल में आप थोड़ा सा हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट रखो, हल्का फुल्का पढ़ाई रखो, अपना सोशल गैदरिंग रखो, अपना फोन भी आधा घंटा चेक करो और सब चीज़ों को मैनेजेबल वे में रखो. और यू विल नॉट बिलीव, एक हफ्ते के बाद उनका फोन आया, बोला कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी जो पढ़ाई है वो कैसे हो रही
1: जा रही है.
0: तो एक छोटी सी हेल्प थी.
1: देखिए आपने बिल्कुल एक अच्छी बात छेड़ी यहाँ पे. इस तरह के जो अमल है, इस चीज से बच्चों पर एक गैर जरूरी दबाव बढ़ जाता है और जो हम मन की शांति जो कहते हैं, वो मन की शांति, वो सुकून जो उनका है वो खत्म हो रहा है. क्योंकि हमने
0: ये हम ही बड़े छीन लेते हैं उनसे, शौकीन, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम उन पर पढ़ाई का दबाव प्रेशर डालते हैं. लेकिन वो एक अलग मौजू है जिसके बारे में हम अलग से बात
1: करेंगे.
0: पर मैंने ये जानना था शौकीन, आपको लगता है कि मैंने पैसे खर्च किया उनकी हेल्प करने के लिए?
1: बिल्कुल कुछ भी नहीं. आपने वक्ती तौर उनका मदावा किया, उनको एक सलाह दी और इससे यूं कह सकते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी उनकी मदद हुई, एक दवा हुई उनकी किसी मुश्किल की. तो इसका यही तरीका है. मतलब हर एक इंसान में गुण है, ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में, जितने भी लोग अल्लाह ने पैदा किए हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई कला उसके अंदर मौजूद है. बस किसी के साथ शेयर करना, किसी को मतलब किसी की मदद करनी है, किसी को हौसले के लिए दो लफ्ज बोलने, बस उसके लिए वो बहुत काफी है.
0: क्या आप अपने मोहल्ले से जाते हैं, छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि वो साइकिल पे, उनकी साइकिल की चेन उतर गई है और वो ट्राई करते हैं उस साइकिल की चेन को चढ़ाने की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कैसे चढ़ाए? तो आप जाइए ना, आप उनकी हेल्प कीजिए ना. अगर आपको लगता है छोटा बच्चा आपकी लोकेलिटी में सिगरेट पी रहा है, जिसकी उम्र सिगरेट पीने की नहीं, वैसे भी सिगरेट पीना जिंदगी के लिए ठीक नहीं, तो 5 मिनट उसको रोक के उसको प्यार से समझाए, उसकी काउंसलिंग करे, कर सकते हैं ना आप?
1: बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये तो खैर सगाली का काम है, इसमें कौन सी परेशानी है. बट जरूरत इस बात की है कि हम कभी कभार इन चीजों को बहुत हल्के में ले रहे हैं. हम कहते हैं कि चलिए रहने दीजिए, लेकिन दरअसल अगर देखा जाए सचमुच इंसानियत यही है. हम जाकर इंसानियत के नाते उनको सलाह दें, उनको समझाएं, उनको उन राह रास्ते पर लाने की कोशिश करें.
0: आप घर में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, आपकी माँ ने चाय सर्व की, आपने चाय का कप तो खत्म किया लेकिन चाय का कप उठाकर आपने सिंक में डाल दिया, या सिंक से उठाकर उसको धोकर अपनी जगह रख दिया. अगर रोटी की टोकरी आपके सामने पड़ी है या आपका दस्तरखान आपके सामने पड़ा है, तो क्या आपने उसको उठाकर फोल्ड करके अपनी मॉम की हेल्प की, अपनी बहन की हेल्प की? अगर नहीं तो उठिए ना, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना उनकी, अच्छा लगेगा उनको और आपको करके अच्छा लगेगा. अपने घर में छोटी छोटी हेल्प अपने माँ बहन अपने भाइयों की कीजिए, अपनी लोकेलिटी में छोटे छोटे बच्चों की हेल्प कीजिए. अगर छोटे छोटे बच्चों का आप किसी झगड़े में पड़े देखते हैं, शौकीन आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कितना एक दूसरे को मारते हैं जब वो बहुत झगड़ा करते हैं, तो आप प्यार से उनको जाकर समझाएंगे ना. जब आप बहुत प्यार से उनको समझाएंगे कि आप दोनों भाई भाई है, भाई बहन है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाओ, झगड़ा नहीं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर कोई पावर आप यूज करो अपने बॉन्ड की, दोस्ती बनाओ.
1: जी बिल्कुल,
0: थोड़ा समझाओ, तो वो भी एक बहुत परफेक्ट हेल्प होगी आपकी दूसरों के लिए.
1: बिल्कुल सही, ये बात बहुत सही है. और इस तरह से देखिए, ये छोटे छोटे काम या छोटी छोटी जो तदबीरें हैं, आगे चलकर जिंदगी में एक बहुत बड़ी मंजिल

0: पता बता देते हैं,
1: मंजिल का पता बता देते हैं। हम दोनों ये जो आपके मेज़बानी के फ़राइज़ यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की तरह है। अगर मैं इम्बैलेंस्ड हो जाऊं तो शौकीन कुछ नहीं कर सकते। अगर शौकीन इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे यहां पर माइक पे, तो आप तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। उस हेल्प से एक म्यूचुअल बॉन्ड बन जाता है, जो बॉन्ड प्यार बन के आप तक पहुँचता है, इंफॉर्मेशन बन के आप तक पहुँचता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं।
0: फिलहाल यहाँ पर एक नातिया कलाम सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: समीन लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल और मेरे साथ तस्लीमा, और नशरियात जारी है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। और आपको एक बार फिर याद दिलाते चलेंगे कि कंट्रोल रूम में आज हमारे इंजीनियर्स हैं समीर अहमद और तारिक अहमद। फिलहाल वक्त चला है कश्मीरी खबरों का, तो समाप्त कीजिए कश्मीरी में खबरें, उसके बाद प्रोग्राम की नशरियात जारी रहेगी।
1: आदाब, ये छे आकाशवाणी। शबीर उज़्ज़मा बोझनावी खबर, गोड़े खास खास खबरन हुंद खुलासा। अमरीका तो ईरानस दरमियान स्विट्ज़रलैंड किस बर्गिन स्टॉकस अंदर कतर तो पाकिस्तान ची सलसी मज बरह रास्त कथबात शुरू। वजीर अजमन चु कुन ते मुल्क किस इक्तिसादी तो स्ट्रैटेजिक असर रसूखस मज बहरियुक अहम रोल वतलोमुत। कशीर मज चु आज खीर भवानी मोलक चुकचाव, गांधरबल किस तुलमुलिस मज पंडित अकीदत मंदन हिंज जबरदस्त वजदरस। तमिलनाडुस अंदर अकिस कंपनी मज अमोनिया गैस लीक गसने किस वाकस मज सत नफर मार सतत खोत ज्यादा मुतासिर। वंच पेश खबरन हिज तफसील। अमरीका तो ईरानन छ स्विट्ज़रलैंड किस बर्गिन स्टॉकस मज बहली पाई तो बरह रास्त कथबात शुरू करमच। यमुक मकसद हाल ही करना आमुत अबूरी महादे मजीद मजबूत बनाउन तो मगरबी एशियास मज न्याय खत्म करने च कोशिश ब्रोह पकनाउन छु। अमरीका की वब्दिच कयादत छ नायब सदर जे डी वैंस करान, यल जन ईरान वब्दिच कयादत स्पीकर मुहम्मद बाकिर कालीबाफ तो खर्ज वजीर अब्बास अराकची करान छ। अथ कथबाथि मज कतर तो पाकिस्तान मंजमिस दरि सज कान यह मुलाकात तम वज सपदान ये लिबनानस पे जारी इसराइली हमलन हिंदिस तनोजरस मज तहरानन बे अक फिर आबनाए हरमुज बंद करनुक दाव कुर, मगर अमरीकी फौजन कुर तम सुंद दाव रद। पत्मि हफ्ते ब्रोह कुन आमते 14 निकाती मफामती यादाश्तुक गोडनुक शिक छु लिबनानस सान तमाम महाजन पे जंग बंद करनुक तकाज करान। पोज इसराइल तो ईरान किस हिमायत वलिस हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाहस दरमियान छ लड़ाई तेजियम। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन छु बहरीच अहमियत वतलावान वोनमुत जि मजबूत बहरी सलाहियत छ कुन ते मुल्क की इक्तिसादी तो स्ट्रैटेजिक असर रसूखुक फैसला कुन उनसुर आसान। तिमो वोन जि भारत छु यह हकीकत समझान तो छु पानस अमे मुताबिक तैयार करान। वजीर आजम ऐस मगरबी बंगाल किस कोलकाथास मज श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाहस पे त्रेन मकामी तौर डिजाइन तो तैयार कर आमतन बहरी जहाजन हिजे शमूलियत पत एकिस तकरीब खिताब करान।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं।
1: वजीर अजमन वोन जि मजबूत बहरी सलाहियतों बगैर हे कह मुल्क बड़े ताकत रंग वतलित। तमो वोन जि तरक्की सलामती तो खुशहाली हुंद चु समंदरन से तोलुक। नरेंद्र मोदियन वोन जि दुनियुक ज्यादातर तिजारत चु समंदरी वतो किनी सपदान, यल जन आलमी डेटा नेटवर्कन हुंद बोड़ हिस्से समंदरों मंजी काम चु करान।

और रात 8 बजे खेल शाइकिन के लिए खेलों से मुतलिक प्रोग्राम नश्र होगा स्पोर्ट्स टाइम। इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं एजाज नाज़की। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे सुहेल निसार। तो समीन, ये थी तफसील आज हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों की। आपने अपने रेडियो सेट्स पे ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वी 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

राष्ट्रोगा स्पोर्ट्स टाइम। इस प्रोग्राम के मेजबान हैं एजाज नासकी। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे सुहेल निसार। तो समीन, ये थी तफसील आज हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। आपने अपने रेडियो सेट्स पे ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वी 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से अब ठीक 8 बजे समाचार प्रभात समाप्त करेंगे। बस जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन

0: फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला, वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो।

0: पहले प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर सुबह के 8:15 और 12 सेकंड हो चुके हैं। समीन 22 जून का दिन और सोमवार। पयाम सुख की नशरियात आप तक बराह रास्त पहुंच रही है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टूडियो से। मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल और मेरे साथ हैं
3: तस्लीमा अख्तर। शौकीन, हम बात कर रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत मौजू के बारे में कि आख किस कित पट हिमो आकार बकार आख किस कित पट सहलाओ अथ आख एक सुन मदद कित पट करो। अगर ऐसे याद समाज में रोजन या दुनिया में रोजन तो बेहतर इंसान बनित रोजन तो पान सेटिस्फेक्शन जरूरी है। तमें खतर जरूरी जमो आख किस आकार बकार, फिर चाहे वो इतना ही क्यों ना हो कि हम किसी के दुख में सिर्फ उसके साथ खड़े रहे उसको तसल्ली देने के लिए। जरूरी नहीं है हमारे पास लाखों करोड़ों हो जो हम किसी को दे सके, लेकिन उन लाखों करोड़ों से बढ़कर आपका नियत, आपका खुलूस नियत है, आपका वो साथ रहना है, आपका थोड़ा सा किसी को तसल्ली देना,
2: किसी को दिलासा देना, किसी को हौसला देना, वो एक बहुत बड़ी बात हो।
3: अगर इस पर कशीर की बात करो, सोन कशीर अमे हवाल वारिया सरमाएदार ये किस अकार बकार युनुक यूजन जज्ब सो वारिया मौलूल जज्ब। और कश्मीर की सरजमीन की अगर बात करें भाईचारे के हवाले से तो यहाँ का भाईचारा, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की मोहब्बत सब कुछ पूरी दुनिया में मशहूर है,
2: मशहूर एक मिसाल है।
3: और ये सब अगर कायम और दायम और भी इसमें जान पड़े तो और बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि कश्मीर की जो सरजमीन है आज यहाँ पर एक बहुत ही जो रूहानी मेला है वो आज मनाया जाता है, त्यौहार है, रूहानी त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है। हमारे पंडित बरादरी के जो अकीदतमंद है उनके लिए हम यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वक्त उनके साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीर की सरजमीन पर खीर भवानी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और ये त्यौहार महज एक मजहबी तकरीब नहीं है बल्कि हमारी इज्तिमाई रूह का एक ऐसा रोशन बाब है जो मोहब्बत, सुकून और बाहमी राम की अक्कासी करता है। इस मुबारक मौके पर हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और तमाम अहले कश्मीर और खुसूसन पंडित बरादरी को हमारी तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: जी बिल्कुल, ये जिस त्यौहार की या जिस आज के इस मौजू की बात आप कर रहे हैं ये एक सदियों पुरानी रिवायत है। कश्मीर एक ऐसी जगह, एक ऐसी सरजमीन का नाम है जहां सदियों पुराने जो लोग रहते थे, जो यहां की सकाफत है, जो यहां का तमद्दुन है, ये एक मिला जुला तमद्दुन है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह जो एक मतलब बरादरी है, जो एक मिलनसार की एक खुशबू है, वो सदियों से यहाँ चली आ रही। और इन्हीं मतलब बिरादरी में एक हमारी जो बिरादरी, एक कम्युनिटी जो हमारी है, पंडित बरादरी है, और उनके लिए आज का दिन निहायत ही अहमियत का हामिल है। हम एक बार फिर से अपने स्टूडियो की तरफ से, अपने पूरे अमले की तरफ से पंडित बरादरी को खैर भवानी के मौके पर दिल की अमीक गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए नेक तमन्ना और नेक दुआओं की पेशकश भी करते हैं।
3: बिल्कुल, नियत खुलूस के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मोहब्बत, ढेर सारी अकीदत आप सबके लिए। और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। शौकीन
2: जी,
3: एक लीला हो जाए।
2: बिल्कुल।

0: इस हवाले से हम प्रोग्राम में आगे कोशिश करेंगे। तुलमुला गांधरबल से जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस मेले के हवाले से देखेंगे कि वहाँ कैसा माहौल है, वहाँ के हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आज 22 जून का जो दिन है, इस हवाले से तारीख के आईने में, तारीख के पस मंजर में आज के दिन की अहमियत क्या है? तस्लीमा, आप अपने
1: जी बिल्कुल, जो 22 जून है, 22 जून की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो देखने को मिल जाती है। हर दिन से कुछ ना कुछ जो हमारी हिस्ट्री के हवाले से मालूमात होती है वो हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने सुनने वालों तक। 22 जून के हवाले से अगर आलमी सतह पर हम बात करें, आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दिन भर के बरसाती जंगलात यानी रेन फॉरेस्ट की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और उनके तहफ़ुज़ के लिए इकदाम करना है। ये जंगलात ज़मीन के माहौलियाती तवाज़ुन, आबो हवा को मुस्तकिम रखने और कुरे अर्ज़ पर हयात के तनु यानि बायोडावर्सिटी को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा भी 22 जून को कुछ और भी दिन मनाए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात करेंगे, 22 जून को हुई इंटरनेशनल बीइंग यू डे भी मनाया जाता है। ये दिन लोगों को अपनी असलियत को अपनाने और अपनी मुनफरिद खूबियों का जश्न मनाने की तरगीब देने के लिए भी मनाया जाता है। और इस हवाले से अगर और भी बात करें तो 22 जून बॉलीवुड के हवाले से देखें तो बॉलीवुड में आज की तारीख की क्या अहमियत है? बॉलीवुड के मायानाज अदाकार अमरीश पुरी हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के एक अजीम अदाकार हैं। अमरीश पुरी का जन्म भी आज ही के यानी 22 जून को 1932 को हुआ। वो अपनी शानदार कारकर्दगी, गहरी आवाज़ और यादगार किरदारों के लिए मशहूर थे।
1: साई पल्लवी जो है मशहूर साउथ इंडियन और बॉलीवुड अदाकारा है। इनकी पैदाइश भी 22 जून 1992 को हुई थी। वो अपनी बेहतरीन रक्स की सलाहियतों और कुदरती अदाकारी के लिए बेहद मकबूल हैं। संजय सूरी एक और नाम है बॉलीवुड का, बॉलीवुड अदाकार और प्रोड्यूसर हैं ये। इनकी पैदाइश भी आज ही के दिन 1971 को हुई थी। उन्होंने झनकार बीच और माई बरादर निखिल जैसी कई काबिल जिक्र फिल्मों में काम किया है।

जी समीन, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। सुबह से हम इसी बात को लेकर चर्चा करें। फिलहाल हमारी ये जो गुफ्तगु है आज के प्रोग्राम में 11:30 तक जारी रहेगी, और यहाँ वक्त हो चला है एक और खबरों के बुलेटिन समाप्त करने का। लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप ठीक 8:30 पर उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन उनसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। और मर्दों के हॉकी में FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उनसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस शिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
1: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अल-अक़वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना

0: करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया, जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है, क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कूनो में चीता कमान और कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं, जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुजगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नजर रखने और उनकी ट्रैकिंग के निजाम के बारे में जानकारी दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबादकारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मस्नूई ज़हानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतायज का जायजा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू लचक पजीरी, इख्तरा, बाहमी ताउन और पायदारी को फरोग देना है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवाम पर मरकूज विजन की अक्कासी होती है, जिसे 2025 की रियो समिट में पेश किया गया था। चीन ने तस्दीक की है कि उसके वजीर खारजा वांग ई इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए आज से यूजीसी नेट 2026 का इम्तिहान शुरू कराएगी। कौमी सतह की एहलियत का टेस्ट हर रोज 2 शिफ्ट में इस माह की 30 तारीख तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी मोड में कराया जाएगा। यूजीसी नेट इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन और पीएचडी कोर्सेज के दाखिले के लिए क्वालिफाई करने के ख्वाहिशमंद हैं। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करें और इम्तिहान की सभी तफसीलात के पूरे ध्यान से तस्दीक करें। उसने कहा है कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से पहले अपने इम्तिहान की तारीख, शिफ्ट, वक्त और इम्तिहान के मरकज के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मजीद ये कि पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्ररा इम्तिहानात के मराकिस का पहले से दौरा करें, ताकि मकाम और दस्तयाब सहूलियात से वाकफियत हासिल की जा सके। इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान का सवालनामा इफ्शा हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट का इम्तिहान जामे सिक्योरिटी और निगरानी के तहत कामयाबी के साथ मुनक़िद कराया गया। उसने मजीद कहा कि तलबा के लिए

0: तरह की गलत मालूमात जानबूझकर फैलाना एक संगीन जुर्म है। सीबीएसई ने 12वीं जमात से मुतालिक मामलात के तस्दीक नामे और दोबारा जांच के नतीजे जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इन नतीजों का ऐलान मरहलेवार किया जा रहा है, जिनमें से 87% से ज्यादा दरखास्तों के नतीजों का ऐलान कल कर दिया गया। बकिया दरखास्तों के नतीजे दीगर मरहलों में जाहिर कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि यह अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। दरखास्त किस मरहले में है इसकी मालूमात results.digilocker.gov.in पर की जा सकती है। सीबीएसई ने तलबा को यकीन दिलाया है कि हर एक दरखास्त एक बड़े शफाफ और करीबी नज़र रखने वाले निज़ाम से गुजारी गई है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अफवाहों या गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और वो सही मालूमात के लिए सीबीएसई के सरकारी बयान पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2026 के पद्म इनामात सिविल अवार्ड्स की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: आप इस गुफ्तगू का आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाति जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तलात और नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाति जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबला जाति जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमेरिका के नायब सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में खतरखाह पेशरफ्त हुई है, जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेरी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामाधिकारों से बात करते हुए जेरी वांस ने कहा कि मुजाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नताइज बरामद हुए हैं। मुजाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क्यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने आलमी योमी योग से मुतालिक खबर को नुमाया।

0: तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है। आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन अंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। और अमरीकी सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 8:45 हो चुके हैं। स्वागत करें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन।

0: समीन आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे सेहत बदन। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा हमारी नशरियात अब तक पहुंचती है DTH और आकाशवाणी की लाइव ऐप के जरिए। समय सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब समीन, आज सोमवार है। मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख मुताबिक 22 जून 2026 श्रीनगर से शाया होने वाले उर्दू और अंग्रेजी अखबार से तरतीब दी गई आज की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल और मेरे साथ हैं
3: तस्लीमा।
0: तो समीन, आज भी अखबारात ने मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर खबरों को अपनी शेष सुर्खी के तौर पर शाया किया है।
3: एक उर्दू अखबार है मेरे पास और इसकी शेष सुर्खी है, वजीर आजम के हाथों 3 बहरी जहाज बेड़े के हवाले। हिंदुस्तान सिर्फ दिफाई सामान खरीदने वाला मुल्क नहीं बल्कि दिफाई साजो सामान तैयार करने वाला मुल्क।
0: सब जिला अस्पताल करालपुरा का ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर गैर फाल, एनेस्थीसिस या डॉक्टर तैनात लेकिन ड्यूटी कहीं और, 3 दहाइयों से 1 भी बड़ी सर्जरी अमल में नहीं लाई गई।
3: योगा महज वर्जिश नहीं खुदशनासी का रास्ता है LG। जिंदगी की मसरूफियात और शोरगुल के दरमियान योगा जहन और जिस्म को हम आहंग करता है।
0: एक उर्दू रोजनामे की एक सुर्खी है, सियासी खानदानों ने सियासी तंजीमें नहीं मुनाफा बख्श दुकानें खोली हैं। NC का मुजवजा दिल्ली धरना महज ड्रामा, अल्ताफ बुखारी का नौजवानों के दरमियान बामाने मकालमे पर जोर।
3: मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसकी शेष सुर्खी है, मेला खीर भवानी पर वजीर आला की मुबारकबाद, अमन और खुशहाली के लिए दुआ। इसी अखबार से एक और शेष सुर्खी है, जम्मू में खवातीन और बच्चों के लिए पिंक टॉयलेट्स बनाने का मंसूबा, मकसद शहरी इलाकों में सफाई सहूलत और तहफ्फुज को बेहतर बनाना है। हुकाम
0: दीवान बाग में निकासी आपकी नई स्कीम नाकाम, आवाम की डिप्टी कमिश्नर से मुदाखलत की अपील।
3: 3 अफवाज के तालमेल से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, आर्मी चीफ। बैन अक्वामी ह्यूमन योगा के मौके पर तेजपुर मिलिट्री स्टेशन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब।
0: अल्ताफ बुखारी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात, अवामी मसाइल, तरक्याती अमल और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत।
3: जम्मू से लेकर अमरनाथ तक के सफर के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सदारत में पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में अहम इजलास।
0: समीन एक और सुर्खी उर्दू एक रोजनामे की, LG सिन्हा से कई वफूद का मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल।
3: इसी उर्दू रोजनामे से एक और शेर सुर्खी है, नीट उम्मीदवारों की इम्तहानी मराकज तक आसान और बरवक्त रसाई के लिए कल बरोज इतवार श्रीनगर में संडे बाजार को दिन भर बंद रखा गया, अवामी हलकों का इजहार मसरत।
0: उड़ी और लसजन में दिलदोज सड़क हादसा, बाप बेटे समेत 3 अफराद लुकमा अजल।
3: बानीहल काजीगुंड टनल के अंदर कार उलट गई, 4 अफराद जख्मी।
0: एक और उर्दू रोजनामा रकम तराज है, पहलगाम हमला, NIA चार्जशीट, इंसानी इंटेलिजेंस जमा करने में कमी का इंकशाफ।
3: एक और उर्दू अखबार से हमने शेष सुर्खी ली है, हिंदुस्तान के सदर ने जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की तकरीब का इनकार किया।
0: खनमू सीमेंट फैक्ट्री हादसा, एक मजदूर जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा।
3: महकमा माही परवरी और महकमा हैवानात और डेयरी ने योगा का आलमी दिन 2026 मनाया। योगा जहनी सुकून, सब्र और

0: Beşiktaş. Doğru dinler.
1: Böyle lan. Ya onun Piaggio Lord gelir. Atatürk LCD free.
0: Piaggio'yu ihtiyacı onu. Devasına aitir kılın.
1: Kaşmir Motors valiyana gayıp pıntı veri Piaggio Lord gelir kına. Dağ kontak tına Lord. Mazbut body. 40 km mileage. Damdar inyan tüm oksipet final.
2: Piaggio Lord gelir suit at LCD. Ya dağın sasın Rupya News Cashback Offer. Sikim ki madud vakti khatri. Rekt kayu Kaşmir Motors Emi Road. Dilga Nagdal Gate Srinagar.
3: वक्फे के बाद सुर्खियों में आपका फिर खैर मकदम है।
4: अंग्रेजी अखबार की एक और सुर्खी है, नियरली वन इन फोर एडल्ट्स इन जेएनके यूज टोबैको रिपोर्ट्स।
3: समीन, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है जिसमें कुछ कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों पर एक नजर दौड़ाते हैं। मशरिकी वस्ता में अमन हमारी तरजीह है, जेडी विंस।
4: खेलों से मुतल्लिक कुछ खबरें हैं, हिंदुस्तानी बॉक्सर्स की शानदार कारकर्दगी, 8 तलाई तमगों समेत 12 तमगे जीत लिए।
3: लॉर्ड्स से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की मेजबानी वापस लिए जाने का इम्कान।
4: कोहली, बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी, इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तानी वनडे टीम का ऐलान।
3: सूर्यवंशी, उम्र सिर्फ 15 साल के लेकिन फाइनल में 29 गेंदों पर 94 रन बनाकर अपनी धाक बिठा दी।
4: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराकर क्लीन स्वीप कर दिया।
3: और एक और खेल सफे की सुर्खी है, 33 मैचेस में 100 गोल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल 1982 और 2014 के वर्ल्ड कप में ये संगमील 36 मैचों में हासिल हुआ था।
4: विभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर 50 बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया।
3: तो समीन, ये थी मकामी रोजनामों से तरतीब दी गई आज की सुर्खियां। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नासिर,
5: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समीन मकामी रोजनामों की सुर्खियां आप तक पहुंच चुकी हैं। और अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा मौसम के हवाले से।
1: मौसम तो बिगड़ता जा रहा है और वैसे जो खुशगवार मौसम के दो आसान गर्मी सुबह से शाम आसान बड़ा ठंड मौसम, अगर हम इसका ये पहलू देखेंगे कि हमें कैसा लग रहा है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम दिन भर जिस गर्मी से तपते हैं शाम को हमें वो ठंडी छाँव ठंडी हवाएं मिल जाती हैं, सुबह हमें ठंडा ठंडा मौसम मिलता है। लेकिन और बाकी नवियत से ये मौसम नुकसानदेह भी है, लेकिन अगर हमारे जमींदारों का देखें, किसानों का देखें, फसलों के हिसाब से देखें, उस एतबार से मौसम का ये बिगड़ना बहुत ही बुरी बात भी है।
0: जी बिल्कुल, ये बात अगर हम मौसम की कर रहे हैं तो दरअसल ये कहना लाजमी होगा कि आज ये जो जून का महीना चल रहा है, गर्मी का मौसम है, और इस जून का जो ये महीना है इसमें जितनी गर्मी हमारे यहाँ पड़ती थी, अगर हम पिछले साल का मुकाबला देखेंगे इस साल के साथ करेंगे, तो पिछले साल अच्छी खासी गर्मी हमने देखी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी थी यहाँ पे, तो उस साल के मुकाबले में इस साल हमने फिलहाल उतनी गर्मी का जो वो हद है वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। माहरीन मौसमियात का यही मानना है कि मौसमी जो एडवाइजरी है या मौसमियात के जो माहरीन हैं उनकी जो हिदायत है, उनकी जो एडवाइजरीज, हमारे जो किसान दोस्त हैं, हमारे जो बाग मालिकान हैं, उनको उन एडवाइजरीज पर या उन हिदायत पर अमल करनी चाहिए और हर एक हिदायत को बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए ताकि उनकी जो फसल है, उनके जो बागात हैं, वो मौसम के एतबार से भी महफूज रहें और उन पर किसी मौसमियाती मार का कोई असर न पड़ सके।
1: अगर हम चूंकि इस खुशी मनावा कि यूता ठंड ठंड मौसम जो है अवेलेबल, मगर बाहर इन चीजों पर से ध्यान देने की जरूरत, ये जन इस मौसम की वारिया यम जन चीज खरीबी से तथ इसते जिम्मेवार के छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी गफलतों से हम अपने माहौल को खराब कर रहे हैं। तो बह कर सिर्फ एक चीज जिक्र ये सो गो प्लास्टिक, प्लास्टिक करो कम इस्तेमाल, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक जो बैग्स है, पॉली बैग्स जो है, पॉलीथीन के जो बैग्स हैं उनको इस्तेमाल करना हम सबको बंद

0: कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़मीन के लिए सही नहीं है, एक अच्छी चीज़ नहीं है, जहर की मानंद है, और यही आकर हमारे मौसम को भी कहीं ना कहीं ख़राब करने का एक अंसर बन ही जाता है। तो ये छोटे छोटे कदम जब हम उठाएंगे और जब हम ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे, तो हम अपने जो मौसमी नवियत बिगड़ रही है, धीरे धीरे करके इस नवियत को हम सही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने फरमाया। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक गजल के लिए, अपने सामीन को भी सुनवाते और हम भी सुन लेंगे।

019 पर हो रही है। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। पहम सुब की नशरियात जारी है। मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल, मेरे साथ हैं तस्लीमा। और समीन, हमने आज सुबह ही आपको बावर कराया था कि आज कश्मीर की धरती पर, कश्मीर की सरजमीन पर एक मुकद्दस जो त्यौहार है मनाया जा रहा है, यानी हमारी मुराद खीर भवानी से है। और ये कश्मीर की पहचान है, कश्मीर की एक तारीख का एक बहुत अहम और इंतहाई नागुज़ीर पहलू है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस बारे में थोड़ी सी बातचीत फ़िलहाल जारी रखते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ी देर में जो तुलमुला गांदरबल से हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और वहाँ क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस हवाले से, इस मेले की, तो इस बारे में भी आप तक जानकारी थोड़ी देर में पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
1: अगर हम आज के इस मेले की बात करें तो ये बे बंद तुक अमन अमनुक पैगाम दिवान, सान मोहब्त पैगाम दिवान सदियों पुरानी इस रवायत का अमीन है, जिसमें रंग नस्ल और अकीदत से बालातर होकर इंसान का दिलों से मिलना शामिल है। कश्मीर की मिट्टी जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी तहजीबी गहराइयों के लिए भी जानी जाती है शौकीन, ये जो अमन बोए बंदुत मिलसार पान हमेश पत वत रूदमुत हमेश मिसाल से पूरे दुनिया मजान दिन ये दो ऐसे याद दहानी करना कशीर हुन असल हुसन युजन चु सुच अथ बोए बंदस मजी छुपित गुपित तो ये अकिस अखिक सन खुशियन मन शामिल शरीक ग नफरत दीवार खुद ब खुद पानी पत्थर पेवान
0: बिल्कुल
1: नफरत गुंजाइश रोजान तो इत पे अखिक सन खुशियन मज शरीक सपदित यह साबित करान सिर्फ तो सिर्फ इंसान सिर्फ इंसान
0: बिल्कुल
1: मजहब रंग नस्ल या जात यह पत
0: ये सब बात की बात है। पहले हमारा जो पहला असूल है कि हम सब इंसान हैं। देखिए, मेला खेरबानी कश्मीरी पंडित बरादरी का एक अहम मजहबी और सकाफती त्यौहार है जो हर साल कश्मीर के गांदरबल जिला के मुकाम तुलमुला में वाक़ मुकद्दस मंदिर में मनाया जाता है। ये मंदिर देवी रागनिया भवानी खीर भवानी के नाम से मंसूब है। रिवायत के मुताबिक अकीदतमंद इस दिन बड़ी तादाद में मंदिर पहुंचते हैं, देवी की पूजा करते हैं, दुआएं मांगते हैं और मुकद्दस चश्मे में दूध और खीर चढ़ाते हैं। इस वजह से इस त्यौहार को
1: खीर भवानी का नाम दिया जाता है। जी, इस मंदिर का असल नाम जैसे आपने बोला रागनिया देवी है और खीर भवानी इसका मकबूल नाम है क्योंकि अकीदतमंद यहाँ देवी को जैसे कि आपने बोला दूध और चावल में बनी हुई मीठी डिश यानी खीर का भोग चढ़ाते हैं। और अगर तारीखी और मजहबी पस मंजर में देखें तो रागनिया देवी को देवी दुर्गा का ही एक अवतार माना जाता है और ये मकाम सदियों पुराना है। कहा जाता है कि देवी हनुमान जी को हुक्म देकर यहाँ लाई थी और इस जगह को मुंतखब किया था। और मौजूदा सफेद संगमरमर का मंदिर महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में तामीर करवाया था, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इसमें मजीद तौसी की। और इसमें एक चश्मा भी है शौकीन, सैक्रेड स्प्रिंग। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का एक कुदरती चश्मा है जिससे यथे केशरपट नाग बनान छत आई मीन नाग खसूसियत चीज अमुक रंग चु बदलान रोजान इसके पानी का रंग बदलता रहता है। और अकीदत मंदों का मानना है कि पानी का रंग बदलना कश्मीर के आने वाली किसी अच्छी या बुरी सूरत हाल की पेशगोई करता है। आमतौर छुआसा ये आबुक रंग यूजन छु यह दूध या सफेद आसा, मगर कुन कुन वीज छु ये सियाह या यूजन गहरा नीला जो है गहरा नीला हो जाता है, जिसे मुकामी लोग आने वाले वक्त की निशानी समझते हैं।
0: जी बिल्कुल, अहम जानकारी आपने अपने सामीन तक पहुंचाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम गांदरबल से जो हमारे नुमाइंदे हैं इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खीर भवानी के हवाले से वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं बराह रास्त तुलमला गांदरबल से।

0: रहीम रिजवान। रिजवान, पैम सुब में आपका सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, हम अपने सामान को ये बताना चाहते हैं कि गांधरबल जिला के टोला मोला इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ माता खीर भवानी के स्थापन पर, जहां आज माता खीर भवानी का सालाना मेला रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और मेले में शिरकत करने के लिए देश के विभिन्न भागों के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के तमाम पंडित बरादरी के लोग आज यहां जमा हुए हैं। एक जमे गफीर देखने को मिल रहा है, एक बेहतरीन माहौल यहां देखने को मिल रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर या हमारे देश की बात की जाए, कहीं भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है तो वो आज टोला मोला गांधरबल में देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ न सिर्फ पंडित बरादरी के लोग या हिंदू मजहब के लोग जो है वो इस त्योहार में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के मकामी मुसलमान जो है और यहाँ के सिख बरादरी के लोग जो है वो भी इस त्योहार में, पंडित बरादरी के लोगों के इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। एक बेहतरीन मिसाल आज यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि चारों ओर यहाँ मकामी लोग, हिंदू बरादरी के लोग, सिख मजहब के रहने वाले लोग, यानी हर मजाहब के लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और हर साल इसी तरह ये त्योहार बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार के बहुत सारे पहलू है। अगर हम धार्मिक के लिहाज से लेंगे तो ये एक सबसे बड़ा स्थापन माना जाता है हिंदू मजहब का, जहाँ हर साल ये जो हमारे श्रद्धालु हैं इनका तांता बंधा रहता है। और इसके साथ साथ आज जो ये मेला मनाया जाता है इसमें तमाम मजाहब के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक पहलू देखेंगे तो ये त्योहार मनाने का ये भी एक मुद्दा मकसद है कि यहाँ बहुत सारे लोग हमारे तिगर का अपराध जो है वो भी साल भर इंतजार करते रहते हैं कि कब ये मेला आएगा, कब ये दिन मनाया जाएगा, तो हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत भी करेंगे और रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे सियासी पहलू के अतबार से तो यहाँ की सियासी लिबरल समाजी कारकुनान जो है तो उनको भी मौका मिलता है कि इसमें ये लोगों की खदमत करें और अपने फराइज बखूबी अंजाम देंगे। तो इस तरह हम ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये त्योहार जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और अगर हमें भाईचारे की, इंसानियत, उखवत की मिसाल कहीं देखने को मिल रही है वो इस त्योहार के मौके पर यहाँ देखने को मिल रही है हर साल। खासकर मकामी मुसलमानों की बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सामाइन को कि आज के दिन वो इस त्योहार का इतना एहतराम करते हैं कि ये जो टोला मोला के रहने वाले लोग हैं वो इस गोश्त वगैरह भी अपने घरों में नहीं पकाते हैं। यहाँ के लोग
0: जी ये रिजवान मुझे बताएं, ये इंतजामात के हवाले से जो चाहे सूबाई सतह के इंतजामात है या जिला सतह के जो इंतजामात है, किस तरह के इंतजामात किए गए और अकीदतमंदों के साथ अगर आपने बात की हो तो क्या वो इंतजामात के साथ मुतमईन नजर आते हैं?
1: बिल्कुल, हम यहाँ श्रद्धालु से भी बात करेंगे, वो भी हम अपने सामान तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम सूबाई और जिला इंतजामिया की बात करेंगे तो माता खीर भवानी का मेला शुरू होने से पहले ही इन्होंने तमाम तक इंतजाम, बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर चेकिंग हो रही है और साथ ही जो भी इनको रहने के लिए जगह यहाँ पे है और खाने पीने के भी इंतजाम वो भी मुफ्त में किए गए, फ्री लंगर यहाँ पे लगाए गए। और यहाँ के सियासी समाजी और मकामी लोगों ने, रजाकार तंजीमों ने यहाँ बहुत सारे स्टॉल भी लगाए हैं ताकि जो तो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं इनकी खदमत को बाजत तौर करने के उनके लिए तमाम तक सहूलियात यहाँ बैंक पहुंचाई जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ यहाँ के मकामी शख्स बिलाल भट्ट जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। बिलाल साहब, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से आप अपने सामान को?
2: जिन्हें हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, सबसे पहले बिलाल भट्ट सामाजिक कारकुन की ओर से तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी को बहुत बहुत मुबारक। आज जहाँ पे मोहब्बत, उखवत, भाईचारे की मिसाल जिंदा हो रही है, वही क्रिमिनल हार्मनी की मिसाल जिंदा हो रही है, वही नेशनल इंटीग्रेशन की मिसाल यहाँ पे जिंदा हो रही है। कैसे एवरी फेस इज हैप्पी چمائلنگ سے خوشی کا ماحول یہاں پہ ہے کہ ماتا کھیر بھوانی استھاپن کے اندر ہزاروں میں شردالو بھی اپنے یہاں پہ فرائض انجام دے رہے ہیں اور کشمیری مسلمانوں کا بھاجانا استقبال ہو رہا ہے۔

0: कम्युनिटी लेवल पे यहाँ पे सभी माए बहने बुजुर्ग और बच्चे इनको बाजाना के लिए यहाँ पे हर हमेशा रहे हैं। यही एक वादा लेके क्या हम आप हमारे हैं और हम आपके हैं, आपके रूट से यहाँ पे आप और कहाँ जाओगे, ये आपकी जन्मभूमि है, आपको तुलना नहीं रहना है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो प्यार मोहब्बत आज यहाँ पे बना के रखा है यही मिसाल कायम रहे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ बात करने के लिए। जी हाँ, जहाँ जिला इंतजामिया ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, वही श्रद्धालु से अगर हम बात करेंगे तो इंतजाम को लेकर मुतमईन है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कश्मीरी पंडित है आदाब जी।
2: आदाब
1: भाई, हमारा क्या नाम?
2: मेरा नाम है इंद्रजीत राघव, मैं कश्मीरी पंडित हूँ
1: जी। तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आकाशवाणी के सामान्य से?
2: सबसे पहले मैं तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी को इस जेठ अष्टमी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो इंतजाम है डिविजनल कमीशन कश्मीर और जो यहाँ के गांधरबल के डीसी साहब ने जो इंतजाम के बहुत अच्छे किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे इंतजाम है। सिक्योरिटी भी, मेडिकल फैसिलिटी भी, हर एक किस्म की फैसिलिटी है यहाँ पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ करने के लिए। जी हाँ आजाद, अगर हम बात करेंगे यहाँ इंतजाम के तो बिल्कुल श्रद्धालु मुतमईन है इस पे, जो जिला इंतजामिया ने श्रद्धालु के लिए इस मौके पर इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी से भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं।
3: जी रिजवान, इस जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैम सुब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी समीर थे गांधरबल से हमारे साथी रहीम रिजवान, जो तुलमुला खीरबानी के मेले के हवाले से हमारे समीन तक जानकारी पहुंचा रहे थे
4: और लाइव जानकारी थी। और देख रहा है कि इंतजामात भी सही हैं और लोग भी बहुत खुश हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत खुश हैं और इसी तरह से खुश रहेंगे। यही बात हम कर रहे थे कि एक दूसरे के काम आना, क्योंकि श्रद्धालु वहां से आए, इस वक्त हमारी जरूरत है उनको, तो जितनी भी हम उनकी मदद कर सके, उनके साथ खड़े रह सके, उनको आसाइश और सहूलियत दे सके, वो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तस्लीमा. मेरे साथ है
1: शौकीन हिलाल.
0: हिलाल, आज का दिन जो है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट के डे के तौर पर मनाया जाता है और आज के दिन दुनिया भर में बरसाती जंगलातों की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जाती है और इनके तहफ़ के इकदाम भी किए जाते हैं. और आज अगर हम देखें हमारा थीम भी आज एनवायरमेंट साइंस और क्लाइमेट होता है.
1: बिल्कुल,
0: हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे तो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है. प्लास्टिक थैलियां हो या प्लास्टिक के बर्तन हो वो एक जहर की मानिंद है हमारे लिए. जब हम प्लास्टिक के बर्तनों, बोतलों या थैलियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद खतरनाक केमिकल्स जो है हमारे खुराक के और पानी के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं.
1: प्लास्टिक के इस्तेमाल से सेहत पर पड़ने वाले बड़े और अहम नुकसान जो होते हैं उन पर कभी शायद हमारी तवज्जो जाती है, लेकिन बिलाखिर वो अपनी जो जहरी केमिकल्स हैं या उनके जो मुज़िर असरात हैं वो काफ़ी देर तक ही सही लेकिन देखने को मिलते हैं. हार्मोन्स का निज़ाम दरहम बरहम होता है, यानी एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन. प्लास्टिक को नरम या सख्त बनाने के लिए इसमें BPA ने बिस्फिनॉल ए पैथेलेट्स जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं. जब ये केमिकल्स जिस्म में पहुंचते हैं तो ये हमारे कुदरती हार्मोन्स खुसूसन एस्ट्रोजन की नकल करते हैं. इससे हार्मोन्स का पूरा तवाजुन बिगड़ जाता है जो मर्दों और औरतों दोनों में भांजपन यानी इनफर्टिलिटी और दीगर पोशीदा अमराज का सबब बन सकता है.
0: और अगर हम आज देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक सतह पर आ चुकी हैं और हर तीसरा बंदा आप देखेंगे इन चीज़ों से, इन बीमारियों से जूझ रहा है जिसमें कैंसर का बढ़ता हुआ खतरा है. ये भी प्लास्टिक में मौजूद कैंसर के बायस बनने वाले अज़ा यानी कार्सिनोजेंस जो है खसूसन इसमें इस वक्त मुतहरिक होते हैं जब प्लास्टिक को गर्म किया जाता है या माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं या गर्म चाय खाना प्लास्टिक की थैलियों में डालना या प्लास्टिक के बर्तनों कप्स में डालना. ये बराह रास्त कैंसर जैसी छाती और गुदूत का कैंसर जिसे कहते हैं इसके खतरे को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक इंसानी जिस्म को जूझना पड़ता है. आज ना इस तरह शौकीन पदमिन वक्त मज पदमिन आयामन मज मतलब अक्सर सैन बुजुर्ग बनान ये बीमारी आम चीज़ सेहतमंद आसान गिंदान दवान दौरान मगर तम वक्त जो लाइफ स्टाइल सिंपल.
1: हाँ बिल्कुल सही. एक बात वो भी है, लाइफस्टाइल आपने कहा सिंपल है, बिल्कुल सही. लेकिन दूसरी बात जो तहकीक है, जो मतलब रिसर्चेस होते हैं आजकल के ज़माने में जदीद दौर में, तो तब के ज़माने में इस कदर की रिसर्च नहीं थी, इतनी तहकीक की मतलब वो गुंजाइश नहीं थी, तो लोगों को इस बारे में उतनी जानकारी नहीं होती थी. लेकिन अब चूंकि तहकीक का दौर है, रिसर्च का दौर है और हर चीज़ पर आज साइंसदानों की, माहरीन की या जो सेहत के साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनकी नज़र रहती और वक्त पर वो इस हवाले से अवाम तक जो है जानकारी पहुंचाते रहे.
0: और मुझे नहीं लगता इस पुरान जमानों इस पातकालो इन जन के वरी ब्रोंट अगर इस बात करो इमन दोन ना इमन वक्त ना प्लास्टिक इस्तेमाल उस गसा इसे डेवलपमेंट उस तमन दोन उस तहकीक कुछ तीसा जरूरत थी कैसे इसे बीमारी थी आसने की आक इंसान उस तिम चीज इस्तेमाल करा वारी नेचुरल तो प्योर फॉर्मस में ऐसा आसान तो विचो आप जो इस चमान उसे त्रेश चमान दोस त्रेश चेंज सान खतर सठा जरूरत मगर तो विचो हर कैसे नफरस हर कैसे बचन इमन इनफैक्ट स्कूल दिमान प्लास्टिक बोतल मज त्रेश. तो धीरे धीरे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सेहत पे असर करती है और हमें एक सेहतमंद मुआशरा इस वक्त मुहैया नहीं है, अवेलेबल नहीं है. बच्चों में वो सारी बीमारियां, बड़ों में वो सारी बीमारियां जिनकी तरफ हमारा जब ध्यान जाता है उस बना बीमारी कहते आई चूंकि प्लास्टिक यूज गुड पज मे बस अगर माहौल कत करो अज ये प्लास्टिक यूज शौकीन पे लाइफ मज पे डे टू डे रूटीन लाइफ हिंस तम प्लास्टिक बिल्कुल एलिमिनेट करो.
1: बिल्कुल सही कहा आपने, एक खामोश कातिल की तरह है और इसके असरात भले ही जल्दी आपको नजर आते हैं लेकिन एट द एंड अगर देखेंगे इन द लॉन्ग रन इसके जो असरात हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी जिंदगी और खुसूसन हमारी
0: आने वाले माशरे पर भी पड़ रहा है.
1: बिल्कुल.

0: आकाशवाणी श्रीनगर की नशरियात आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, और पयाम सुबह में मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल और मेरे साथ
1: तस्लीमा, और देख रही हूं आपका चेहरा उतर रहा है क्योंकि आपको जाना पड़ेगा अभी शो में, आपका बड़ा मन

0: लगा हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे, पर आप अगले प्रोग्राम के बारे में जरूर बताइए।
1: जी बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो चला सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और 10 बजे वक्त हो रहता है सूफी और सूफी बुजुर्गों की और उनकी जिंदगी और उनकी सूफी रिवायात से मुतलिक प्रोग्राम सूफी सदा का आप तक पहुंच रहा है।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉल स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ एयर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉल स्टार्ट्स बेस्ट सर्विस, कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10:30 बजे 10:30 बजे तक नश्र सदान बलि बोजो।

0: जो इसमें हवा में है इस वक्त तकरीबन पहले 0.03% ही था प्री इंडस्ट्रियल में, फिर 0.05% पहुंच गया, इस वक्त 0.07 यानी 700 PPM इस वक्त हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है।
1: जी
0: तो इस कार्बन डाइ ये मेन वजह है क्लाइमेट चेंज के लिए,
1: जी जी
0: ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हवा में है ये मेन है क्लाइमेट चेंज की वजह यही है। जो भी चेंजें होती जा रही है दुनिया भर में, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हमारे पास अभी एक ही टेक्नोलॉजी है, वो है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज और जंगल को बचाओ ताकि हम ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें।
1: हम इस बारे में तफसीली बात करेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे लाइक ग्लोबल वार्मिंग के लिए या फिर सोइल डिग्रेडेशन
0: के
1: का
0: लिए
1: हमें फेस करना पड़ता है, फ्लड एंड रॉट्स का हमें मसला वो सामने है, या एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है और वाटर क्राइसिस है
0: बहुत
1: हमारी जो
0: सारी
1: हमारे
0: चीज़ें
1: यहाँ पर मतलब देखने को मिल रही है, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इसके बहुत सारे जो ये रीजंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक आम इंसान तक सबसे पहले हम उसको कैसे ये मोटिवेट करेंगे कि उससे ये बासान चीज़ ये सिर्फ जंगलुक कुलन हूँ जुर्म या अथमच जानवर या और चीज गसा पिकनिक स्पॉट खतरे, ये के पोछ अकेस आम इंसान से जिंदगी से जुड़े अकेस आम इंसान अक ले मैन छु ये मिस यूज अक्सर छु वना कि मे सु छु अथ कंसर्न के हिन लाइक हम तो इस पे आप रिसर्च करते आपने अपनी जिंदगी के 30 साल इस फील्ड को दे दिए, क्यों दे दिए? एक आम इंसान को ये कैसे समझ आएगा कि ये आदमी जो मेरे सामने, ये जो डॉक्टर, ये जो साइंटिस्ट मेरे सामने है, इसने अपने 30 साल जो खर्च किए वो किस चीज़ पर खर्च किए? ये जंगल हमारे लिए कहाँ पे कंसर्न है, कनेक्टेड है?
0: जंगल बहुत सारे कंसर्न, देखो हम इस जंगल को आम इंसान को बोलेंगे हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा था ये, सर मैं बोलूँगा हम इसको ग्रीन गोल्ड भी बोला करते थे, मतलब कि बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट वास्ता था इस लाइवलीहुड का, इसके साथ बिल्कुल लाइवलीहुड वास्ता था। अब चूंकि जंगल हमने ख़त्म कर दिए, बहुत सारा लाइवलीहुड ख़त्म ही हो गया, सिर्फ पेड़ पौधे, सिर्फ लकड़ी ही नहीं है, जंगल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती है जिसके साथ, जैसे उसको बोलते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स NTFPs,
1: जी
0: जैसे जंगल से जड़ियाँ बूटियाँ निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जंगल से
1: हर्बल
0: निकलती
1: मेडिसिन
0: हैं, हर्बल
1: प्लांट्स
0: मेडिसिन प्लांट्स, इवन बहुत सारे मशरूम्स निकलते हैं, हनी निकलती है, बहुत सारी चीज़ें जंगलों से निकलती है जिससे लोग डायरेक्ट वाबस्ता थे। जब हमने जिन जंगलों को ख़त्म किया, वो जो लोग इस ट्रेड से वाबस्ता थे उनका भी लाइवलीहुड खतरे में हो गया। ये तो वो लोग हो गए जो इवन दूर दूर के लोग भी रहते हैं या जंगलों के नज़दीक भी रहते हैं,
1: जी
0: जो बिल्कुल जंगल के नज़दीक रहते हैं या जंगलों के पास में रहते हैं उनने देखा होगा जो ही हम जंगल काटते हैं या
1: जी
0: कोई पेड़ काटते हैं, जो डलवान ज़मीन होती है वो सिक रूड हो जाती है, मतलब इरोड हो जाती है, वो जब इरोड हो गई फिर उनका जो मकान वगैरह होता है वो भी बह, उसको भी खतरा रहता है या कई कई मकान भी उड़ जाते हैं उससे।
1: जी
0: हमने देखा कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है इसका मेजर वजह क्या है कि जो लैंडस्लाइड्स वगैरह आते थे ऑनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, जो जंगल हमने ऊपर काटे जो सड़कों के किनारे पर होते थे पेड़, तो जब उनको काट दिया हमने तो सड़कों पर भी वो इरोजन होता था, तो सारा सड़क भी बहुत देर तक बंद रहती थी,
1: जी
0: अब लोगों ने उसमें टनलें वनलें इसलिए बचाई ताकि बना दी ताकि वो इरोजन बच जाए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जितनी जंगल होंगे एक तो उसकी इरोजन भी बच जाएगी, लोगों का लाइवलीहुड जो से वाबस्ता है वो भी ज़्यादा ज़्यादा बच जाएगा। तो लकड़ी को जो हम देखेंगे, अब लकड़ी जो हमारी इस्तेमाल होती है यहाँ पर, आप देखेंगे आप इस नगर कश्मीर रहने वाली है, इतने जंगल हमारे पास है,
1: जी
0: 50% एरिया इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का है, लगभग 50% एरिया फॉरेस्ट के अंडर है,
1: जी
0: लेकिन इतना एरिया होने के बावजूद भी हमारे हम अपनी हमें हमें लग अपनी लकड़ी मिलती ही नहीं है। अगर आपको भी घर बनाना हो या लकड़ी खरीदनी हो, आप जाओ बाजार में, आपको यूरोप से लकड़ी मिली, यूरोप की लकड़ी मिलेगी, यूरोप की लकड़ी वहाँ से आ जाती है और यहाँ बिकती, यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में भी
1: बिक
0: बिकती है, यूरोप का छोटा सा एरिया। लेकिन ये फॉरेस्ट्री मतलब एज अ साइंटिस्ट मैं बताता हूँ कि हमें अगर हम लकड़ी उगाना चाहेंगे ना तो बहुत सारा हमारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, सिर्फ लकड़ी नहीं लेकिन बाकी फॉरेस्ट्री का जो प्रोड्यूस है उस पर बहुत सारी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है।
1: जी
0: तो ये एज अ साइंटिस्ट मैं बताता हूँ आपको कि उसको बोलते हैं हम ट्री इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं उसको,
1: जी जी
0: हम ट्री को कैसे इम्प्रूव करेंगे,
1: इम्प्रूव करेंगे।
0: अब जैसे कि मैं आपको हमका एक शाहकार एक दरख्त है जिसको देवदार बोलते हैं, देवदार का पेड़ जो है बेस्ट देवदार पेड़ सिर्फ कश्मीर में उगता है, सारे दुनिया में देवदार का पेड़ है, तो अफगानिस्तान से लेकर करीब करीब उत्तराखंड तक नीचे नेपाल के बॉर्डर तक ये ट्री उगता है और दुनिया में

0: पेड़ दिखाई देंगे, या
1: जी
0: आपको फ्रेश दिखाई देगा पॉपुलर, या विलो दिखाई देगा,
1: विलो दिखाई देगा,
0: और उसके बोला और थोड़ा सा ब्रेन दिखाई देता,
1: ठीक
0: ब्रेन दिखाई देगा, बाकी मतलब ये यही दिखाई देता है हमारे इकोलॉजी में अब,
1: जी।
0: क्योंकि इससे बेहतरीन फायदा है और हमारे इकोसिस्टम में फिट हो गया ये फ्रेश।
1: तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स हैं या जो डिग्रेडेड लैंड जो हमारे पास, जो बंजर ज़मीन की बात हम
0: बंजर
1: करेंगे,
0: जमीन
1: एक अच्छा खासा रुकबा हमें मयसर है। हम सिर्फ यूटी की बात नहीं करेंगे, अगर ओवरऑल इंडिया की भी
0: इंडिया की
1: बात
0: बात
1: हम
0: है।
1: करेंगे, तो क्या उसका मतलब ये जो प्लांटेशन होनी चाहिए, लाइक हम प्लांट्स काटते, पेड़ काटते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, और इंसान जाएगा भी कहाँ जब ज़रूरत है। तो तुहंद वन जो बजा कि अगर ऐसे पानस निश ये खजान आसिया ऐसे उसने नेबर गसने ज़रूरत कहीं इस गसा हो मशी तौर बे ज़रा स्ट्रांग, तो तथ पर छुना ऐसे तुम मतलब वो प्लान्स नहीं है हमारे पास, वो प्लान्स होने चाहिए ताकि एक आम इंसान उससे फ़ायदा उठाए। मगर उसी बंजर ज़मीनों का अच्छा खासा रुकबा जो हमारे पास है, उधर प्लांटेशन होती क्यों नहीं है फिर?
0: वही तो कहें, होती तो है प्लांटेशन, बहुत सारे ऐसे फेल होते हैं, क्योंकि जो भी आजकल दुनिया में है एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर सिचुएशन ना, अगर आप ही देखोगे कोई बंजर ज़मीन होता है ना,
1: जी
0: उसमें देवदार नहीं आएगा खुद ब खुद,
1: जी
0: लेकिन कुछ पेड़ ऐसे आ जाएंगे जो खुद ब खुद आ जाते हैं। वो होते हैं ऐसे बात, अच्छा ऐसे आइलेंथस, अंग्रेज पर वन आइलेंथस,
1: ओके
0: सिनर्स में वन था खान कोल वन या बहर कुल वन अडन जाए,
1: जी
0: यूँ तो अगर कोई जगह ना वरान बंजर ज़मीन, वो पेड़ उसमें खुद ब खुद आ जाते हैं, यानी कि हम साइंटिफिक तरीके बोलते हैं उसको सक्सेशन बोलते हैं। अगर बिल्कुल बंजर ज़मीन आए ना, इरोड ज़मीन आए, अगर डायरेक्ट लागो तथा लागो कॉनिफर लागन शुरू करो, कॉनिफर लागो शुरू करें तथा खसने डायरेक्ट कॉनिफर कहीं,
1: कहीं
0: मगर अगर सो सक्सेशन हिसाब कौर साइंटिफिक तरीके हिसाब कौर मानव गोनेट लगिस क्या कुल ये सत्या ज़मीन बने
1: बंजरपन
0: तथा
1: उसका खत्म हो जाए।
0: बंजरपन खत्म हो तीस इकोलॉजी बने पत हेको तथा मज देवदार वगैरह तुम, मगर क्या इलाक तिथि ये जंगल चोटमुत तथि हेको डायरेक्ट देवदार कायुर वगैरह वविथ ववान ववान तुम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर तुम अक्सर जायन तिथि कुल ववान, मगर अक्सर जाए वो तुत बंजर ज़मीन आज बिल्कुल इरोड गुमत आज ज़मीन ये बिल्कुल कने याच
1: ठीक
0: तथा डायरेक्ट कॉनिफर लगन ठीक ठीक तो नहीं क्या साइंटिफिक तरीके वन थोड़ा सक्सेशन ऑफ ट्रीज वन सक्सेशन मतलब गोच अकम कुल खसान गोच यु जमीन बिल्कुल बंजर जमीन
1: मिट्टी नरम हो
0: तथा
1: जाती
0: की
1: है,
0: मिट्टी लूज मिट्टी होती है,
1: तथा
0: गोन हर्बस क्या नैचुरली हर्बस जाय रटान हर्बस से जाय रट पे खसान तथा बुशस क्या खसान तम रटान तथा जाय पे बुशस रटान पटान क्या कुल रटान तथा जाय इथे पे तिथ अच्छे तिस टेक्नोलॉजी अगर तुत जाए युद्ध बंजर ज़मीन आ टेक्नोलॉजी तिस टेक् मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी ये तिथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो यम सो वो इस्तेमाल करनी है टेक्नोलॉजी तो ताकि वो हमारी प्लांटेशन जो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए,
1: तो
0: उसमें सक्सेसफुल तभी होगी जब हम साइंटिफिक तरीके से वहाँ लगाएंगे।
1: तो यही जानना चाहेंगे कि कूतः ज़मीन ऐसे कूतः आस ज़मीन यूज़न युद्ध बंजर ज़मीन ऐसे अवेलेबल वनक या कितने इकदाम उठाए हैं आपने, क्या इकदाम करते हैं, और कितना कवर किया है इस बंजर ज़मीन से भी आप लोगों ने प्लांटेशन के लिए?
0: बंजर ज़मीन मुख्तलिफ किस्म का होता है, मैं तो बताऊँ हमारे जो वादी है जम्मू कश्मीर जो स्टेट
1: हम
0: है,
1: यूटी की बात
0: यूटी
1: करेंगे
0: की
1: कि
0: बात करें
1: ये कूता ज़मीन बंजर ज़मीन यल ज़मीन विनकेस तथा मज कूता गुमत विनकेस यूटिलाइज अम खतर प्लांटेशन
0: मुख्तलिफ किस्म बंजर ज़मीन अक्सर बिल्कुल तम पहाड़ इन बिल्कुल नंग पहाड़ है कने या
1: जी
0: सुच बंजर ज़मीन मान यहाँ पे हेको कहें
1: कर
0: नहीं कर सकते जो माउंटेन टॉप आर आल्सो बैरन लैंड
1: ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस
0: के साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर नीचे नीचे आ जाएंगे कुछ ऐसे बंजर ज़मीन है जैसे आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कितना एरिया वगैरह है, लेकिन हमारा एरिया जो है मैंने आपको 50% एरिया फॉरेस्ट के अंडर है। इस फॉरेस्ट में जो 50% एरिया है इसमें तकरीबन 10% ही एरिया है जिसमें बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है,
1: ओके
0: जिसमें डेंस फॉरेस्ट है, फिर नेक्स्ट 20% है जिसमें मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है,
1: ओके
0: ये हो गया तकरीबन 30% है जिसमें अच्छा फॉरेस्ट है, फिर जो हमारा वो फिर 70% जो फॉरेस्ट बच गया ना फॉरेस्ट एरिया, 70% ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसमें हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ये चाहे उसकी डेंसिटी कम है यानी कि दूर दूर पेड़ है
1: जी,
0: यानी कि इतने दूर दूर पेड़ है कि हम इसमें बीच में प्लांटेशन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मतलब ایک تو ڈینس فارسٹ ہوتا ہے, میڈیم ڈینس فارسٹ ہوتا ہے, بالکل جس میں پیڑ دور دور ہے, پھر بالکل بالکل ویسٹ لینڈس ہے جس میں بالکل کوئی پیڑ ہی نہیں ہے. ایسے تقریباً 70% ایریا ہے جس میں ہم پلانٹیشن

0: स्पैम सुपर प्रोग्राम है आपका फिर से खैर मकदम है. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तस्लीमा. मेरे साथ है फहमीदा. चूंकि फहमीदा बोलती बहुत कम है और फहमीदा के साथ मैं यही बातें करती रहती हूँ क्योंकि इनको बहुत मज़ा आता है प्रोग्राम सुनने में. लेकिन अभी फहमीदा हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर सजाद गंगू उनके साथ कुछ बात कर रही थी और अब यही बात मैं भी आप तक पहुंचाना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं माहौल को लेकर जो हम सबको जाननी चाहिए जिसके बारे में हमें अवेयर रहना है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आखिरकार हम ही एक आम इंसान ही इसका खमियाजा भुगत रहा है. और अगर हमने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए तो बहुत ऐसा कुछ होगा ऐसी बर्बादियाँ होगी माहौल की जो हमें भुगतनी पड़ेंगी. सर फिर आएंगे आपकी और हमने ग्लेशियर्स की बात की थी. ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी की जो सलामती है ये कितनी ज़रूरी है. अगर हम कोलाई ग्लेशियर्स की बात करें तेज़ी से इनका पिघलना दरियाए जहलम के पानी के बहाव और कश्मीर की ज़रिए मैशियत अगर इनकी बात करें तो किस कदर ख़तरनाक है ये इस वक्त ये जो इसके लिए चैलेंज बना हुआ है.
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये. जब आपको पता है ग्लेशियर जो हमारे पास है ये कुदरत का देन है.
0: देन है नियमत है.
1: तो इसको जो हमारी जो हिमालय जो है इसको हिमालयाज में बहुत सारे ग्लेशियर्स है जहाँ पानी का जखीरा हो पानी का जखीरा है इसको पोल ही बोलते हैं वाटर पानी का जखीरा हिमालयाज ग्लेशियर में. हमारे पास बहुत अच्छे ग्लेशियर्स हमने देखे बचपन में जब मैं भी ट्रैकिंग की है जैसे कोलाई का ग्लेशियर है फिर सोनमर का हमारा ग्लेशियर है फिर आगे एक और हमारा हरमुख जो गंगबल की पहाड़ी के ऊपर है हरमुख पहाड़ी है उस पर ग्लेशियर्स है. लेकिन जब 30 साल पहले और आज ट्रैकिंग करते हैं ये ग्लेशियर्स हम देखते हैं दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं. दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड. तो एक तो रिड्यूस होते जा रहे हैं कि अगर क्योंकि रिड्यूस वजह ये है कि एक तो हमने देखा है कि हम बहुत कम बर्फ़ गिरती है. जब बर्फ़ कम गिरेगी तो ग्लेशियर्स भी कम बनेगी. फिर आगे जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है तो ये ग्लेशियर्स भी पिघलने लगते हैं. तो हमने देखा है कि जब फ्लड्स आ जाते हैं जो 2014 का फ्लड जो आया था तो उस वक्त सिर्फ बारिश ही नहीं गिरी थी ये पिघल भी रहे थे ये ग्लेशियर में पिघल रहे थे. इनका भी फ्लो हमारे इसमें आ गया था दरियाओं में इसका फ्लो आ गया था और फ्लड्स का उसने माहौल बना दिया था. अब हम देखते हैं इस वक्त अगर चंद दिनों के लिए बारिशें बंद हो जाती है अब देखो जहलम के कितना रिड्यूस हो जाता है जहलम की ताह दिखाई देती है और जो ही बारिशें होती हैं तो बहुत ही हम देखते हैं कि उसका फ्लो बहुत अच्छा होता है. तो अगर कंटिन्यूस पानी चाहे अगर ग्लेशियर्स अपने अच्छे तरीके में रहें तो दरिया जहलम और बाकी नदी नाले भी हमारी अच्छी तरह से चलते रहेंगे. तो गवर्नमेंट ने यह भी किया था वो वाटर ट्रांसपोर्ट जो किया था जहलम में वो भी ठीक तरह नहीं चला क्योंकि हमारे जहलम का जो उसमें जो फ्लो पानी का है उस तरह से नहीं है जिसमें उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था
0: जी.
1: तो इस तरह से मतलब ग्लेशियर्स बहुत अहम है हमारे लिए. लेकिन इसका ग्लेशियर्स को पिघलने के लिए आम इंसान का कोई रोल नहीं है इसमें आम इंसान का रोल नहीं है. इसको आपने ठीक बोला ग्लोबल वार्मिंग जो बोला ये सिर्फ हमारे ही नहीं है ये पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग है हमारे नहीं मतलब हम इसमें कोई
0: सिर्फ चुनौती होती है
1: यूटी ने हमारे इस पर पूरी दुनिया का. अब है कि एक एक चीज़ है उसको बोलते हैं एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल
0: जी.
1: हम अपने लिहाज से एक्ट करेंगे हम अपने यहाँ जंगल बचाएंगे हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो उसमें तो हम एक्ट लोकल कर रहे हैं लेकिन दुनिया का हम सारे को सोच रहे हैं कि दुनिया में अब सब लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो दुनिया का माहौल बच जाएगा. मैं आपको ऐसे मैं बता रहा था आपको फॉसिल फ्यूल्स तो जब बर्न करते रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा ज़्यादा होता जा रहा है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हवा में बढ़ता जा रहा है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है इसको डायरेक्ट कैप्चर करने के लिए एक ही चीज़ हमारे पास है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल उगाएं ताकि इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं इसको. ये जो जंगल होते हैं कार्बन सिंक्स होते हैं ये अपने कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी लकड़ी में बंद रखते हैं. तो ये लकड़ी तब ये कार्बन तब तक उसमें बंद रहेगा उस लकड़ी में उस जंगल में जब तक उसको जलाएंगे

0: नहीं है या उसको सड़ेगी नहीं, तब तक उस पर कार्बन बंद रहता रहेगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग कह रहा था, मैं कहा तो एक और चीज़ है, अब आप दुनिया अभी देखा होगा, अब हमारे फॉसिल फ्यूल जो है, जो पेट्रोल वगैरह है, उसमें ब्लेंड किया जाता है इथेनॉल से।
1: जी
0: इथेनॉल जो बनता है वो बनता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसरों से बनता है इथेनॉल,
1: जी
0: ताकि फॉसिल फ्यूल उसको कम किया जाए। ये दुनिया भर में ये तरीका है इस कार्बन कंटेंट को कम करने के लिए, ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बचाने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है अपने पेट्रोल वगैरह में, अपने कारों में जो पेट्रोल डालते हैं तो उसमें ब्लेंड किया जाता है इथेनॉल से। उसकी मेन वजह यही है, उसकी मेन वजह यही है। तो ये ग्लोबल लेवल पर ये सोचा जा रहा है कि हम कैसे इसको ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे। उसकी मेन वजह ये है, मेन तरीका यही है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे और ये जो बाकी इथेनॉल वगैरह जो बनाई जाती है इसको इस्तेमाल करके फॉसिल फ्यूल्स कम इस्तेमाल हो जाएंगे, और इस तरह से जो ट्रैप है कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स में, वो हवा में और बाहर नहीं आ जाएगा।
1: जी, आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं पहले।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मर्दमशुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।
1: सर, पानी की बात करते हैं। पानी जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है हर मामले में। आप बगैर एक ना इंसान ज़िंदगी में तसव्वुर करें। अगर हम अपने यहाँ की वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखो, मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हमारे श्रीनगर में एक बहुत अच्छा कॉल बहती थी जिसको मर के नाम से बोलते थे।
1: अच्छा।
2: डाउनटाउन में चलती थी। लॉरेंस अपनी किताब में लिखता है, द वैली ऑफ कश्मीर में, वो लिखता है इसमें इतना पानी साफ है। वो कहता है, इफ़ आई टॉस अ कॉइन, ऐसी वर्ड्स लिखा है, इफ़ आई टॉस अ कॉइन आई फाउंड गोइंग डीप इनसाइड। यानी कि उस कहने का मतलब यह है कि वो मर जो थी, जो श्रीनगर में बहती थी, पूरी डाउन टाउन गुजरती थी, उसमें इतना साफ पानी था उस टाइम। सिर्फ 100-150 साल पहले लॉरेंस लिखता है अपनी किताब में कि इसमें इतना साफ पानी था। लेकिन हमने क्या किया, इस मर को हमने इतना गंदा कर दिया, इतना पोल्यूट कर दिया। जब मैं छोटा था हमने देखा इससे बदबू आती थी
1: जी।
2: उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उसको मर को ही बंद कर दिया। अब हमारे पास इस वक्त क्या है कि हमारे पास वो इस वक्त मर बना रोड है, उसके ऊपर आप गाड़ियां चलती है, वो मर ही ख़त्म हो गई।
1: ओके।
2: हमारे शहर में और भी कुछ वाटर बॉडीज़ है जो ख़त्म होने के गगार पर है, यानी कि गिलसर है, खुशहाल सर है, आंचार है, आंचार सर है। ये ऐसी इतनी गंदगी इसमें जाती है कि ये बंद होने के गगार पर है। कुछ एनजीओज निकली हुई है जो इनको बचा रहे हैं, तो खासकर गिल सर, खुशहाल सर और निगीन लेक को बचाने के लिए कुछ लोग निकले हुए हैं इसको बचाने के लिए। इवन डल लेक हमारे पास जो है, बहुत सारा वाटरशेड में देखो आप कि कितनी गंदगी डल लेक में जाती है। तो अगर ऐसा ही रहा तो डल लेक का भी यही हशर होगा जैसे आंचार का इस वक्त है। कुछ सालों के बाद आंचार का ही हशर होगा। ये हमारी वाटर बॉडीज़ का ये हाल क्यों है? क्योंकि हम ही इंसान, ये तो कोई बाहर का लोग तो नहीं आते इसको गंदा करने के लिए, इसको हम ही गंदा करते हैं। मुझे लगता है जब हम छोटे थे हम डल का पानी भी पीते थे। इवन जब हाइकिंग वगैरह ट्रैकिंग के लिए जाते थे, कहीं भी पानी बहता हो हम हाथ से उठाते पानी पीते थे। अब सब अपने अपने बोतल साथ ले जाते हैं, कोई इसको पानी रास्ते में नहीं पिएगा।

0: क्योंकि सबको पता है कि पानी एट सोर्स ही गंदा हो गया, गंदा ही हुआ है। हमें अपने माइंड सेट चेंज करना चाहिए एज ए सिटीज़न, कश्मीरी सिटीज़न, हमें अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए कि किसी किस्म का गंदगी किसी वाटर बॉडी में नहीं डालनी चाहिए। ये भी रिपोर्ट आया है कि पिछले 1960 से जो तकरीबन 30 वाटर बॉडी जो है सूख गई है या ख़त्म होने वाली है। हमारे सामने मैंने आपको बोला 70s में हमने नाले मार ख़त्म कर दिया, मोर जो हमारे था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से बहुत सारे वाटर बॉडीज़ है जो खुश्क हो गई है, ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह से ये इसकी मेन वजह यही है कि हम अपने वाटर बॉडीज़ को हम पोल्यूट करते हैं। तो हमें अपना माइंड सेट चेंज करके किसी किस्म की गंदगी, हम वी शुड मेक अ हैबिट कि इवन वाटर बॉडी में थूकना भी मना होना चाहिए, वी शुड नॉट इवन स्पिट इन वाटर बॉडी। तो गंदगी डालने की तो गंदगी डालने की तो सवाल ही नहीं उठता है। वी शुड मेक इट अ हैबिट एज अ सिटीज़न, क्योंकि हम देखते हैं अगल बागे, अगर ये वाटर बॉडीज हमारे पास नहीं होगी हमारा माहौल सारा बिगड़ जाएगा, जो फिर जो रिसोर्सेज हमारे वाटर बॉडी से है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि जितने भी घरों से कूड़ा निकलता है या मोहल्ले से कूड़े निकलता है वो क्या करते हैं, वाटर बॉडी के साथ में डाल दिया
1: जी।
0: तो भी बारिश आ गई, कुछ आ गया, या कुछ लोग तो हमने देखा है कि वाटर बॉडी में ही डालते हैं कूड़ा, अपने वाटर बॉडी में ही डालते हैं। तो चाहे जो गाँव हो या शहर हो, हर जगह हमने ये देखा, हमने ये माइंड सेट चेंज करना है। जब तक हम ये माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे हमारे वाटर बॉडीज बचने वाले नहीं है। तो ये हमारा माइंड सेट, गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है कि वाटर बॉडीज को बचाने के लिए, लोगों में डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत सारे NGOs इसके लिए काम करते हैं इस टाइम भी, कि वो कहते हैं कि किसी किस्म का कूड़ा इसमें ना डालो। अगर किसी को पकड़ लेते हैं उसको सोशल मीडिया पर रुसवा करते हैं, देखो हमने इसको पकड़ा हुआ है कूड़ा डाल रहा था दरिया जहली में, या किसी और नाले किसी और कॉल में डाल रहा था, या किसी और वाटर बॉडी में डाल रहा था। लेकिन माइंड सेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने वाटर बॉडीज को बचाएं।
1: जब माइंड सेट हमारे लेवल पर चेंज नहीं होता है तो फिर सख्त कवानीन की बात आती है, और सख्त कवानीन जो है वो हैबिट्स क्रिएट करते हैं एक इंसान के लिए। तो ऐसा होना चाहिए, लगता है आपको कि हुए हैं ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं जिसके तहत अगर किसी इंसान को खिलाफ वर्जी करते हुए देखा जाए तो उसको जुर्माने के तौर पर कुछ मतलब लिया जाता उससे, या फिर उसको कोई पनिशमेंट दी जाती है, ऐसा कुछ बना है?
0: कानून तो है, कानून ऐसे बहुत सारे कानून हैं, हर म्यूनसिपलिटी के पास कानून
1: हम लाए जाते हैं,
0: काम लाए बहुत कम जाते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके हवाले से बहुत कम ही कोशिश करते हैं, तो अपनाने में बहुत कम कोशिश करते हैं। इवन माइनिंग भी बैन है, रिवर बेड्स की माइनिंग की जाती है बहुत सारी जगह, देखा हमने कि हमारे जो वाटर बॉडीज है इसको इलीगल माइनिंग करके कैसे उसको उसका इकोसिस्टम ही बिगाड़ दिया गया है। तो इसको भी बहुत सारे ऐसे कवानीन है कि ऐसे नहीं किया जा सकता है, वही माइनिंग की जा सकती है जिसको अलाउड हो, जिसकी मतलब गवर्नमेंट इकोलॉजिकल क्लियरेंस हो, तभी माइनिंग की जा सकती है। वही उसी जगह माइनिंग कर दी है जहाँ पर अलाउड हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हमें सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं या खुद जब जाते हैं शहर से बाहर निकल के देखते हैं तो देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ में कैसी इलीगल माइनिंग की जाती है। तो इसके लिए भी सख्त कानून हैं लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम किए जाते हैं, इसके लिए हमें करना चाहिए।
1: तो क्या लगता है इस पैनल के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे कि गसन स्ट्रिक्टली यम लागो यम रूल्स यम जो सख्त कानून है
0: बिल्कुल करने चाहिए,
1: कितनी जरूरत है अभी सख्ती से अमल करने की?
0: बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हम अगली जनरेशन शायद डाल डे को भी नहीं देखे।
1: तो ये बहुत ही
0: जरूरी है,
1: बड़ा अलमिया है,
0: बड़ा अलमिया
1: और है। इस पर बहुत तश्वीशनाक सूरत हाल है ये।
0: मैं आपको बताऊं
1: जी,
0: लंदन में एक रिवर चलते, रिवर थेम्स है लंदन में
1: जी,
0: कहते हैं कि उसकी हालत वैसी है जिस हमारे ऐसे मर की हालत थी,
1: okay.
0: उसमें पोल्यूशन होता था, बदबू आती थी रिवर थेम्स में। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कानून बनाए और उस वक्त रिवर थेम्स बिल्कुल साफ क्लियर पानी बहता है, उसमें शिप्स चलती है लंदन के बीच में से, तो लंदन की जो खूबसूरत है रिवर थेम्स की वजह से है। मैं आपको जो मर के बता रहा था लॉरेंस लिखता है कि वेनस से भी ब्यूटिफुल है मर, वो लिखता अपनी किताब में कि मैं कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो मोर के इर्द गिर्द लोग रहते हैं। वो कहते हैं वेनस से भी ब्यूटीफुल है, लेकिन जब हम छोटे थे हमने देखा उसे बदबू आती थी। अगर हम यही करते रहे, पोल्यूट करते रहे अपने वाटर बॉडीज़ को, तो हमारी वाटर बॉडीज़ का फिर सब वाटर बॉडी से बदबू

0: हम देखते भी है डल लेक में, जो ही बारिश कम होती है तो फ्लो कम हो जाता है, बदबू आने लगती है हमारे डल लेक से। तो ये अगर हम अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे तो यही होगा। गवर्नमेंट के कानून कितने भी सख्त हों, लेकिन जो लोग इर्द गिर्द वगैरह रहते हैं उनको अपना माइंड सेट चेंज करना ही करना पड़ेगा। अगर अपने जनरेशन को बोलना है कि हमने हमारे पास डल लेक था तो हमें ये था, उसको उसी सूरत में अपने अगली जनरेशन को भी हवाले
1: जाहिर
0: करना
1: सी
0: है।
1: बात है सर, जैसे आप कह रहे हैं कि मर मुतलिक छो यूता वन आमुत कि आप में आप गुता साफ शफाफ उस मगर अस चुन वुछमुती
0: अच्छा
1: अस वुछी न सो मर सो
0: मुश्मती
1: कुता साफ शफाफ कोल अस। तो इथे पोट छो मुमकिन के येन वालिस वक्तस में जो नव जनरेशन आसे तमन आस न पाई
0: डेफिनेटली
1: जेल डलस
0: ये
1: मुतलिक
0: डल क्या है
1: या पद जेल वुलरस मुतलिक
0: ये
1: ते
0: वालों से तेरी
1: बासान छ तिमे इम्कानात। इसलिए मैं बासान अस सुधरने जरूरत तो सही पॉइंट्स पर सही स्टेप्स नन जरूरत अगस आम इंसानस अत मुतलिक सारवी ब्रो सोचने जरूरत। इरिगेशन हवाल अगर विनकेस कात करो जमीन जरातस खतर छन अस आप ते विनकेस दिन खतर ये छ आकन
0: ये
1: सो
0: चाल दे हाँ
1: तशवीशनाक सूरत हाल
0: सोचा
1: कशीर यो जन आप किस मामलस में वारिया अमीर तरीन यवान छ मान मगर विनकेस अस पान आप खतर तरसान बहुत मुश्किलात हैं और इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है।
0: डेफिनेटली
1: चूंकि आपने कहा कि सख्त कवानीन लागू करने की ज़रूरत है पर अगर इस पानी पन पानस सख्त कवानीन लागो तो पन्नस पानस दपो कि वन तु सुधरन अख वक्त होशियार गुक अख वक्त तो वन तुकुन चुन तूता
0: डेफिनेटली
1: जेर गुमत। एक और नगमा हम सुनेंगे और बात करेंगे आपसे खुशबूदार पौधों के बारे में जो
0: हाँ
1: हमारे जंगली पौधे हैं जंगल में जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे लेकिन एक प्यारा सा नगमा सुनेंगे पहले।

0: बहारों का मौसम जब उरूज पर होता है तो मौसम का मिजाज ही खुशनुमा और खुश
1: होता
0: रंग
1: है
0: होता
1: बिल्कुल
0: है। और सर, ये जो माहौल की बात हम करते हैं, ये खुश रंग और खुश मिजाज ना हो तो ज़िंदगी में खूबसूरती का एक रंग जो है वो बिखर जाएगा। उसी रंग को हम वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद निखारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे मुखलिस लोग जो हैं पेश पेश हैं। और ज़रूरत है कि हम भी आप जैसे मुखलिस लोगों की तरह पेश पेश रहें, आपका साथ दें और आपकी जो मेहनत है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं।
1: शुक्रिया शुक्रिया बहुत सर।
0: तो डॉक्टर साहब, खुशबूदार पौधों की बात चली है, मैंने पढ़ा था कि आपने लेवेंडर के बारे में, जो कश्मीर के ढलानों पर लेवेंडर की काश्त है, उसको बिजनेस के तौर पर मुतारफ कराया। तो हमारे सामने उनको बताइए कि एक लेबोरेटरी की तहकीक किस तरह से किसानों के खेतों और उनके जेब तक पहुंची, इस खुशबूदार सफर का आगाज कैसे हुआ और कैसा रहा आपका ये खुशबूदार आगाज?
1: चलो, आपने बहुत, ये भी अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा कि इसको पर्पल रिवॉल्यूशन बोलते हैं।
0: जी
1: ये जो लेवेंडर की खेती है, ये पहले कश्मीर से ही शुरू हुई, जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में ही शुरू हुई। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसका हेड क्वार्टर शांतनगर में है। तो यहाँ पर उन्होंने ये लेवेंडर यहाँ पर लाया था, और कश्मीर में इसकी काश्त होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पिछले 8-10 साल से बुद्रवा में, एक मुकाम बुद्रवा में जगह है जहाँ पर इसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरह होती थी, उसको होती हो रही है, और वहाँ पर इसकी फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं जहाँ से इसकी लेवेंडर की फिर उसका ऑयल निकाला जाता है। लेकिन कश्मीर में भी तो कई जगह लगाया जाता है। तो हमने भी इसके लिए, जो यूनिवर्सिटी में हमने, हमारे पास एक वेस्ट लैंड था जहाँ हमने फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बनाई, उस जगह का नाम है बैनहामा।
0: जी
1: बिहामा नहीं है, बैनहामा है।
0: बेनहामा, जी,
1: बैनहामा
0: बिल्कुल।
1: एक गांव है लार के माउंटेन्स में। लार की जो पहाड़ी सिलसिला है, ये बिल्कुल बैरन लैंड है, इसमें किसी किस्म का पौधा नहीं है। उसी वही लैंड हमको दिया गया जहाँ हमने फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बना दी, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री। अभी भी वहाँ ही है, हमने तकरीबन 15-20 साल हो गए जहाँ पर हमने फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बेनहमा लाहौर में बना दी हमने।
0: जी
1: जो हमें चैलेंज दिया गया, अब वहाँ पर क्या लगा दें हम, तो हमें एज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, हमने उसमें यही मेडिसिन प्लांट्स लगा दिए। मेडिसिन, इसको बोलते हैं मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स,
0: ओके
1: मेडिसिनल एंड एरोमेटिक।
0: एरोमेटिक,
1: एरोमेटिक एरोमेटिक प्लांट में
0: खुशबू,
1: खुशबूदार,
0: जी
1: एरोमेटिक
0: जी जी
1: जिसमें खुशबू आती
0: बिल्कुल।
1: है, ये एरोमेटिक प्लांट में बहुत ही अच्छा लेवेंडर है। अब ये लेवेंडर जो उगता है, लेवेंडर उगता है बिल्कुल जिसका डायरेक्ट सन पड़ जाए, जिसमें डायरेक्ट सन पड़ जाए वहाँ उगता है। हमारे जो साउथ फेसिंग माउंटेन्स होते हैं ना, जो साउथ फेसिंग होती हैं,
0: जी,
1: उसमें डायरेक्ट सन पड़ता है, इसलिए जो हमारे वो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, वो
0: जी
1: साउथ की फेसिंग शेप करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है।
0: जी
1: और ये लेवेंडर जो है, ये भी डायरेक्ट सन में उगता है। अगर उसको शेड में उगाएंगे, शेड में नहीं उगता है,
0: जी
1: उगेगा भी उसकी अच्छी फ्लावरिंग नहीं आ जाती है। ये वहीं पर अच्छी आ जाती है जहाँ बिल्कुल डायरेक्ट सन पड़ता है, क्योंकि वो साउदर्न फेसिंग स्लोप था। हमने इंतखाब किया कि हम लेवेंडर लगाए वहाँ पर। हमने उसको एज अ बिजनेस यूनिट वहाँ पर जब हमने काश्त किया, पूरे 1 हेक्टेयर पर लगा दिया, 20 कनाल। 1 हेक्टेयर होता है 20 कनाल ज़मीन। 20 कनाल की ज़मीन में हमने लेवेंडर वहाँ पर उगा दिया, और उसी के अंदर हमने वो उसका लेवेंडर एक्सट्रैक्शन यूनिट भी लगा दिया। क्या कि ये जो लेवेंडर होता है, जब जू ही काटा, जब जू ही हार्वेस्ट करते हैं, उसी वक्त काट के उसको वो डिस्टिलेशन यूनिट में डालना है, उसका लेवेंडर, उसको ऑयल हासिल करना है।
0: जी
1: तो एक तो हो गया वो पूरा जो 1 हेक्टेयर लैंड है उसमें पूरा पर्पल हो गया वो, मतलब जो ही फ्लावरिंग में आता है वो पर्पल हो गया। और दूसरा कि उसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो इरोजन भी रुक गया वहाँ पर उसका, जो
0: अच्छा
1: टेक्नोलॉजी हमने उसके इस्तेमाल की ना, वो एक तो वो मतलब बिल्कुल पत्थरी पहाड़ थे। दूसरा वो साउदर्न फेस स्लोप था।
0: जी
1: तीसरा वो बिल्कुल स्लोपी लैंड था,
0: ओके
1: कंप्लीट स्लोपी लैंड, मोर देन 60% स्लोप थी उसमें। 60% स्लोप के बावजूद हमने उसमें एक टेक्नोलॉजी लगा दी, उसको बोलते हैं स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी।
0: जी
1: वो एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने उस डलवान पर लेवेंडर उगा दिया, और वो सक्सेसफुल रहा, और उसमें एक पौधा भी सूखा हुआ नहीं है, यानी कि सब हमने 1 हेक्टेयर पर देखा।

0: तकरीबन साइकिल में 8-10 साल की साइकिल में देखा, कम से कम 1 हेक्टेयर में जहाँ वो कुछ भी नहीं उगता था, कम से कम 5 लाख का वहाँ पर नेट रेवेन्यू आता है, वहाँ पर नेट रेवेन्यू प्रॉफिट आता आता है, जिसमें लेवेंडर काश्त करके बाद लेवेंडर ऑयल हम बेच देते हैं वहाँ पर। ठीक है, आपने जो वेस्ट लैंड की से पहले बात की, वेस्ट लैंड जो ऐसे वेस्ट लैंड हो जहाँ पर ट्रीज हम नहीं उगा सकते हैं,
1: जी
0: कोई श्रब नहीं, अगर उसको कल्टिवेबल लैंड में लाना है तो बेस्ट इज द टू प्लांट लेवेंडर दियर।
1: ओके
0: लेवेंडर है एक पौधा है जिसको किसी किस्म की इरिगेशन की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत केयर करने की जरूरत है और ये अच्छी काश्त वहाँ पर उस जमीन पे हो सकती है,
1: और माशी तौर ये आपको इंडिपेंडेंट भी कर सकता
0: इंडिपेंडेंट भी
1: है।
0: कर सकता है। और इसके अलावा एक और पौधा है जिसको रोजमेरी बोलते हैं,
1: जी
0: रोजमेरी भी एक खुशबूदार पौधा है जिसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, जो बिल्कुल वेस्ट लैंड है, जिसमें ढलान है, जिसमें कुछ थोड़ी सी इंटरवेंशन करके तो उसको लगा सकते हैं, लेवेंडर और रोजमेरी हम लगा सकते हैं वहाँ पर।
1: जी, तो ये बहुत ही खुशायन बात है, और अगर ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं तो बहुत ही उम्दा रहेगा माहौल के हिसाब से भी। और अगर हम आशी तौर देखें तो हम अपने माहौल के इससे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे हमारी फैक्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर भी, लेवेंडर के अलावा भी, आपका प्लान है या फिर कुछ ऐसा प्लान आप लोगों ने किया है कि ये जो हर्बल मेडिसिन्स हैं इसको आप इस सतह पे, इस लेवल पे लाएं कि इकोनॉमिकली हैकन सर्न लो किमजन छे
0: जी,
1: तिम हैकन इंडिपेंडेंट के सिद्ध।
0: देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे ये मेडिसिन प्लांट्स है ना, मेडिसिन प्लांट्स, मेडिसिन प्लांट्स बहुत सारे हमारे जंगल में उगते थे। मेडिसिन प्लांट मेजर एक प्लांट बोले बोतूंगा आपको, उसको कोट बोलते हैं,
1: जी
0: कोट हमारे हाउस होल्ड नाम है,
1: जी
0: लेकिन अगर जंगलों में कोट ढूंढेंगे ना हम, कहीं मिलते ही नहीं है, आप
1: ओके
0: इतना एक्सट्रैक्ट हो गया। हमारा जो महाराजा था उसने जब कश्मीर यहाँ से जो उसने अपनी हुकूमत शुरू की, उसने पहले 2-3 साल में 1 लाख की कोट बेच दी, यानी कि
1: जी
0: नाइनटीन सेंचुरी में, अर्ली
1: जी
0: नाइनटीन सेंचुरी में
1: जी
0: उसने 1 लाख की कोट बेच दी। को इतने सारे हमारे पास है पौधे जिसको हम इकोनॉमिकली इसको कल्टिवेट कर सकते हैं, फिर इसमें प्रोडक्ट बना के हम पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। दिस नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, दिस टू बी कल्टिवेटेड एंड कॉमर्शलाइज,
1: ओके
0: ओनली देन आवर मेडिसिनल प्लांट्स कैन हैव अ बूम एंड कैन देन हमारी इकोनॉमी पर उसका असर कर सकते हैं।
1: तो यहाँ से आप हमारे जो नौजवान हैं या जो तालिबे इल्म हैं जो इस शोबे से वाबस्ता अभी हैं, जो आपके ज़र निगरान हैं, उनको या फिर आप एक आम यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से ताकि वो इन हर्बल मेडिसिन प्लांट्स की तरफ आ जाए, एक तो ये मेडिसिन हर्बल प्लांट जो है कल्टिवेट भी करें और अपना जो रोज़गार है वो भी इसमें वो कर सकते हैं, उसका भी
0: हाँ,
1: काफ़ी
0: यूनिवर्सिटी का
1: स्कोप है,
0: काम था, यूनिवर्सिटी अच्छा हमने एक यूनिवर्सिटी में
1: एक
0: काम किया,
1: मैसेज लोगों के
0: हमने
1: लिए।
0: हमने इसके प्रोडक्ट्स बनाए। अब जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हमारे पास मेडिसिन प्लांट्स के हैं उनको कमर्शलाइज करके अच्छी अच्छी प्रोडक्ट ऐसे बनाए ताकि दुनिया में हम अपने प्रोडक्ट्स हम बेच सकेंगे। अब रॉ बेचने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, एज अ मेडिसिन अगर कोई मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट बेचना है, इट शुड बी सोल्ड एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: तो हमारे नौजवान नस्ल को इसकी तरफ आना
0: आना
1: चाहिए और
0: चाहिए,
1: इसमें भी अपना वक्त देना चाहिए। नौकरी यश छुन सो रही क्या, अगर इस यमन चीज़ों को गसो इस हैको इकोनॉमिकली वारिया रीच हो गए।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली
1: सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए, चूंकि वक्त हमारा मुहिन होता है, एक ख़ास वक्त में ही हमें ये सारी बातें करनी होती है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो अगली बार ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया तस्लीमा जी, थैंक यू वेरी मच,
1: तो
0: आपने
1: सामीन
0: हमको यहाँ बुलाया, हमने अपने दिल की बात कही जो भी कही।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया,
0: चलो
1: और समीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रोग्राम पाया मैं सुबह में, वक्त हो रहा है अब आपसे इजाज़त लेने का। आपसे हमारी साथी जुड़ेंगी फहमीदा, और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।
2: शुक्रिया तस्लीमा। समीन ये थी हमारी पयाम सुबह की नशरियात पहुंचती है, लेकिन समीन ये थी पयाम सुबह की नशरियात हमारी इख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन आगे का सफर करते हैं हमारे आज दिन भर की नशरियात से। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, समीन हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर का बजे 3 मिनट सपित ولی بوزو چھکر تو رو پیش کرن عبدالحمید تیلی تسے تھی یمنیش بوزو کلامی

0: हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर।

0: क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today on an official two-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batatseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. During the visit, the Minister will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. The Parliamentary Standing Committee on External Affairs, chaired by Member of Parliament Shashi Tharoor, has begun a four-day study visit to Jammu and Kashmir and Ladakh to review strategic border security and foreign policy.

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सामिन 12:30 होने वाले हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरिया की अहमियत उजागर करते हुए कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क के लिए इक्तिसादी और स्ट्रैटेजिक असर रसूख का फैसला कुन अंसर होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को समझता है और इसके लिए खुद को तैयार भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म मगरबी बंगाल के कोलकाता शहर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क की सतह पर तैयार किए गए 3 मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों को बहरिया में शामिल करने के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं।
1: वादी में आज खीर भवानी का मेला बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तुलमुला गांदरबल में मरकजी तकरीब मनाई जा रही है, जहां श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद आई।

0: हुई है, जिनमें मकामी पंडित बरादरी के अलावा मुल्क और बेरून मुल्क से आए हुए श्रद्धालु भी शामिल हैं। मेले में शिरकत करने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए श्रद्धालु ने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा,
1: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबल तुलमल तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यो असल प्रोग्राम थोमत हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान बॉयस नबर कम शान बशान सहिंद सात्रा गफल।
2: नमस्कार, आमद योर खीर भवानी मरा आये आज पांच ऐठ वोर शुक्र गुजार कर बड़े सपोर्ट कर।
0: माता भद्रकाली हंदवाड़ा, लोगरपुर अनंतनाग और माझामा कुलगाम में भी पंडित बरादरी की बड़ी तादाद इस दिन को जोश व खरोश के साथ मना रही है। खीर भवानी का मेला कश्मीर की तारीखी और सकाफती रिवायात का एक कदीम त्यौहार है, जो यहां के भाईचारे और इंसान दोस्ती की नुमाया मिसाल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी माता खीर भवानी मंदिर गए और वहां खुसूसी पूजा की। बाद में जराया ब्लॉग से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने सभी के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ की। वादी में इन दिनों सयाहों का अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के मारूब झील, डल और मुगल बागात के अलावा वादी के दूसरे सियाहती मकामात पर भी सयाहों की अच्छी तादाद आ रही है, जो यहां के कुदरती नज़ारों से काफी लुत्फ महसूस कर रहे हैं।
3: मेरा नाम सोनल पटेल है। मैं 3-4 दिन से इधर घूमने के लिए आए हैं। इधर का वेदर बहुत ही अच्छा है और नेचर भी इतना प्यारा है, आप एक बार जरूर घूमने आए।
4: लोग कश्मीर तकरीबन 4-5 दिन हो गए और अभी हम लोग दूधपत्री में, दूधपत्री लाइक मिनी स्विट्जरलैंड लगता है हमें, पूरा सेफ है, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है।
5: नाम है अंश पटेल और मैं अब कश्मीर आया हूँ और इधर बहुत सारा घूमने की जगह है। इधर दूधपत्री पर आए थे, उधर भी बहुत अच्छा मिनी स्विट्जरलैंड जैसा है।
0: सरकार नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर मुसलसल इकदाम कर रही है। इन बातों का इजहार तालीम की वजीर सकीना इतू ने SKICC श्रीनगर में एक प्राइवेट इदारे के अहतमाम से तकसीम असनाद के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नौजवान जम्मू कश्मीर की जामे तरक्की में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके पर सकीना इतू ने तालीम के मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कई तलबा को एजाजात से नवाजा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जून 2026 का नेट इम्तिहान आज से शुरू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रोजाना 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। काबिले जिक्र है कि नेट इम्तिहान JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के ख्वाहिशमंद कोर्सेज के लिए लिया जाता है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्ज़रलैंड में बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान हतमी मुहैदा से मुतल्लिक 60 रोज़ा रोड मैप तय पाया है। मुज़ाकरात में अमरीकी वफद की क़यादत नायब सदर JD वंस जबकि ईरानी वफद की क़यादत वहां के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची कर रहे हैं। सैयद सालेह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स खान साहब बड़गाम में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये 3 रोजा उर्स कल से शुरू हुआ और इसमें इलाके भर के हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फोन नंबर 01942452019 पर हो रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समीन दिन के एक बजने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका

निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

0: वासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today for an official 2-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with Cheetah Mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivapur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The national security advisors and heads of delegation will also review the outcome

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय 1:10 हुए हैं। पेश है एनसीईआरटी का तैयार करता स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव।

तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी ठाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज्य स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के

के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए।

0: जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं, यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
0: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण

0: और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: समीन, आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करता स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर, समीन आप बजे 7:30 मिनट सपेद वली बोसो कशिर लीला।

0: खाली ओहदों के लिए 1,00,000 अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली ओहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने एमएलए के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70,00,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपए करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकरूरी की जाएगी। शिमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेरे गौर आया था। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत ज़िंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गई और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सरदस भारत में 52 चीते हैं और उनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नाशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ तबादले ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना में मुलाकात की और पंजाब के जरई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली तआवुन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदारा सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुई और उन्हें एतमाद है कि उनके नज़रियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी शौभाग्य का विषय है।
0: इत्तेहाद और नशरियात और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर मम्लुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे, जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कनोड तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे।

0: जहां वो एमपीलैड स्कीम के तहत मंजूर शुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चार दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद किलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नवा निगार ने बताया है कि यह कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने जेली, हिमालयाई मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा और शिमाल मशरक हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सर फहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्ड और यूरुगे का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हममनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. In a major employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026-27, focusing on social welfare, infrastructure development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, has announced the recruitment for 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. We have a detailed report from our Kolkata correspondent.
2: The government proposed a 20% hike in dearness allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Pensioners will also benefit from this increase, which will take effect from 1st October. Presenting a deficit budget of 6,070 crore, Finance Minister Swapan Dasgupta called it a roadmap for building a developed Bengal. He also revealed that the state's debt now stands at over 8 lakh crore rupees, making financial discipline a major challenge. The budget

ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.81 मीटर के अलावा FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 3 बज चुके हैं। समाप्त करें फिल्मी नगमों का प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमीद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी खैर आफियत से हैं जी। फिर हो गया नगमा, नगमों पर आइए सफ़र शुरू, और सिलसिलेवार नगमे लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आइए कुछ और न बोलते हुए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा नगमा।

फौजी भाइयों, ये थी आवाज़ किशोर कुमार की। फिल्म का नाम बेमिसाल, आनंद बख्शी का लिखा नगमा था और आरडी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा।

0: फौजीबाई और लता मंगेशकर की आवाज़ में अपने फिल्म लव इन टोक्यो से इस नगमे को सुना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत। दोस्तों नगमों का सिलसिला जारी रहेगा, हम लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: फौजी भाइयों, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये नगमा फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से।

फौजी भाइयों, ये नगमा आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं अब ये आखिरी नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में यह है फिल्म आपकी कसम।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय 3:50 होने वाले हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के दिफाई निज़ाम में बहरिया की अहमियत को किया उजागर। वादी में आज मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है माता खीर भवानी मेला। LG मनोज सिन्हा ने तुलमुला में अस्थापन पर दी हाजिरी, कहा इंतजामिया पंडित बरादरी के लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद। और नई दिल्ली में ब्रिक्स के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग शुरू। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरिया की अहमियत उजागर करते हुए कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क के लिए इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक असर व रसूख का फैसला कुन अंसर होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को समझता है और इसके लिए खुद को तैयार भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म मगरबी बंगाल के कोलकाता शहर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्की सतह पर तैयार किए गए 3 मुख्तलिफ बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मुजाकरात के पहले दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान हतमी मुहाइदे से मुतल्लिक 60 रोजा रोड मैप तय पाया है। ये मुजाकरात पाकिस्तान और कतर की सालिसी के तहत हो रहे हैं। मुजाकरात में अमरीकी वफद की क्यादत नायब सदर जेरी वैंस जबकि ईरानी वफद की क्यादत वहां के वजीर खारजा अब्बास अराकची कर रहे हैं। वादी में आज माता खीर भवानी का मेला मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में माता खीर भवानी मंदिर में हो रही है, जहां श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद ने पूजा पाठ में शिरकत की, जिनमें पंडित बरादरी के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद शामिल है।

माता खीरभवानी मेले के सिलसिले में टिकर कपाड़ा और लोगरीपुरा अश्मकाम में भी पूजा पाठ की खसूसी तकारीब मुनक्कद हुई, जिनमें काफी तादाद में पंडित बरादरी के लोगों ने शिरकत की और आलम इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल

0: अमन अमान के लिए दुआ की। कई श्रद्धालुओं ने हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब, तसदुक रशीद और रफीक अहमद के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
1: मैं प्रार्थना यही कर रही हूँ जो हमारी माता खीर भवानी से कि जो हमारा त्योहार है हर साल हम ऐसे खुशी से मनाते रहे, बट हम जम्मू से ना आए, हम कश्मीर में रह के ये त्योहार मनाए। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाई भाई है, पहले भी कहा गया है, आपस में प्यार रखिए, भाईचारे रखिए।
2: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबल तुलमला, तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यो यूथ असल प्रोग्राम थो हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान भाई नबर कम शान बशान सहि कन सी यात्रा गा सफल।
0: मेले के ताल्लुक से इन तमाम मकामात पर आपसी रवादारी और मजहबी भाईचारे के मनाजर देखने को मिल रहे हैं और मकामी मुसलमान बरादरी ने मेले के दौरान पंडित बरादरी की लोगों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखी थी। दरी हंसना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर तुलमला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए दुआ की। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एलजी ने मेला खीर भवानी के ताल्लुक से किए गए इंतजाम पर इंतजामिया और दीगर एजेंसियों की तारीफ की। पंडित बरादरी के लोगों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा कि इंतजामिया इस तबके के लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, डीसी गांधरबल जतिन किशोर और इंतजामिया व पुलिस के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। आज ही ज्येष्ठ अष्टमी का त्योहार भी मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर है कि यह त्योहार हम सबके लिए अमन तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर पंडित बरादरी के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस तरह के त्योहारों से अमन, उखुवत और आपसी रवादारी के रिश्ते मजीद मुस्तहकम होते हैं। वादी में इन दिनों सयाहों का अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के मारूफ जिले डल और मुगल बागात के अलावा वादी के दूसरे सियाती मकामात पर भी सयाहों की अच्छी तादाद आ रही है, जो यहां के कुदरती नजारों से काफी लुत्फ महसूस कर रहे हैं।
3: मेरा नाम सोनल पटेल है, मैं 3-4 दिन से इधर घूमने के लिए आए हैं। इधर का वेदर बहुत ही अच्छा है और नेचर भी इतना प्यारा है, आप एक बार जरूर घूमने आए।
4: लोग कश्मीर तकरीबन 4-5 दिन हो गए और अभी हम लोग दूधपत्री में, दूधपत्री लाइक मिनी स्विट्जरलैंड लगता है हमें, पूरा सेफ है, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है।
5: नाम है अंश पटेल और मैं अब कश्मीर आया हूँ और इधर बहुत सारा घूमने की जगह है। इधर दूधपत्री पर आए थे, उधर भी बहुत अच्छा, मिनी स्विट्जरलैंड जैसा है।
0: शोपियां से ताल्लुक रखने वाले मेवा उगाने वाले और डीलर्स एसोसिएशन के एक वफद ने मेंबर असेंबली शबीर अहमद कुल्ले की क्यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ लोक भवन श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद ने एलजी से हालिया जालकबारी की वजह से मेवा बागात को हुए नुकसान का मुआवजा मंजूर करने और जिला शोपियां में फ्रूट मंडी को तरक्की देने की दरखास्त की। 20वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय वुशो टीम, जिसकी क्यादत कौमी चीफ कोच कुलदीप हांडो कर रहे हैं, बी एलजी से मुलाकात हुए। ये टीम 23 जून को सुबह होबी में मुनक्कद होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुशो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए चीन रवाना होगी। साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, जबकि निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का वफद और जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर सोसाइटी के एक वफद, जिसकी क्यादत इसके चेयरमैन जफर इकबाल मनहास कर रहे थे, ने भी लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल की सदारत में मुनक्कदा हो रही इस मीटिंग में ब्लॉक के 11 मेंबर ममालिक के सिक्योरिटी सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने और नई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाने से मुतलिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स की सदारत कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में इसकी सदारत की थी। خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں

0: जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोजा स्टडी दौरा शुरू किया है। इस दौरान कमेटी बॉर्डर सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जैसे मामलों का जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ एलजी का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के तालुक से एक उस्ताद शबीर हुसैन रातर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशा एक ऐसी खामोश तबाही है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों की खुशियां और माशरे का सुकून छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करें और नौजवान मस्बत सरगर्मियों को अपनाएं। सब मिलकर अहद करें कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशियात से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें।
0: इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सामिन सपहर के 4 बजने वाले हैं। समाप्त करें आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले पेश है ये वक्फा।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी स्टेशन श्रीनगर थी आईदा पहाड़ी प्रोग्राम केन कमे हैं तुसदा मेज़बान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया कुआखता। सामीन मुहर्रम उल हराम दा महीना चल रहा है, ये इस्लामी कैलेंडर दा पहला महीना है। इसको हुरमत वाले चार महीनों बिच शुमार कीता जुलदा है। इस महीने दी खसूसियात बिच लड़ाई झगड़िया दी मुमानत आई दी है। रोज़ियां दी फजीलत और यौम आशूरा दी तारीखी अहमियत शामिल है। इस दे अलावा रोज़ियां दी फजीलत और यौम आशूरा दी तारीखी अहमियत शामिल है। ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदीना दर हिजरत दी यादगार है। इसी थी हिजरी कैलेंडर मंसूब है। मुहर्रम अल हराम को मुहर्रम इस वास्ते आखे गेंदा है कि ये महीना काबिले एहतराम है। अरब बिच इस्लाम तो पहले भी इस बिच जंग ते कतल बंद रहंदा सा और इस्लाम सुन भी इस दी हुरमत को बरकरार रखिया। इस महीने बिच नेकी दा सवाब दुगना होंदा है जदके गुनावां दी नहुसत भी शदीद होंदी है। सामीन गल्लां और भी करसा ते प्रोग्राम को अगे बधेंदे होया आओ सुनदे आं आरिफ हुसैन ते साथियां दी आवाज़ बिच नुहा।

0: अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सपर के 4:20 हो रहे हैं। आइए अब पहाड़ी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब। 4:20 हो गए दिन। आकाशवाणी श्रीनगर थी खबरों का बुलेटिन कहन के मैं फिरदोस खान साहब की पहले इस वेली दियां खास खास खबर। मुल्क बिच पिछले 12 साल के दौरान आई मस्बत तब्दीलियां की बदौलत हुकूमत ते इंतजामिया उतै अवाम का एतमाद होया मजबूत। वजीर अजम नरेंद्र मोदी। वादी बिच अज मजहबी जोशो खरोश ते अकीदे तो एहतराम दे नाल मनाया जुल रहा है खीर भवानी मेला। एल जी मनोज सिन्हा सुन तुलमुला बिच अस्थापन उतै दिती हाजरी। आखिर इंतजामिया पंडित बरादरी दे लोगों दे मसले हल करने दी वादा बंद। तखारजी अमूर्ति मुतलक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी दा चौं त्याड़ियां दा दौरा जम्मू कश्मीर व लद्दाख आज थी शुरू। हुण पेश है इन्हां ते दूईयां खबरां दी तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन आखा जे मुल्क बिच पिछले 12 सालों के दौरान आई मस्बत तब्दीलियां की बदौलत हुक्मरानी के अमल ते इंतजामिया उतै लोगों का एतमाद ते भरोसा मजबूत होया है। उन्होंने सुन आखा जे हुकूमत सुन मुल्क के करोड़ों लोगों की जिंदगी के म्यार बिच बेहतरी आने उनकी सलामती को यकीनी बनाने ते जिंदगी को सुखला करने वास्ते कई स्कीमां ते प्रोग्राम शुरू किए। वजीर अजम सुन इन्हां गल्लां दा इजहार अज सनअत खिरफत ते मरकजी वजीर पियूष गोयल दा एक मजमून सोशल मीडिया पोस्ट उत्ते शेयर करदियां कीता। उन्होंने सुन आखिया जे अवामी एतमाद ते भरोसा बेहतर हुक्मरानी दा खास है। पियूष गोयल सुन पिछले 12 सालों के दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत मुल्क के तरक्याती सफर को उजागर किया आसा। वादी बिच अज माता खीर भवानी दा मेला मजहबी जोशो खरोश ते अकीदत व एहतराम दे नाल मनाया जुल रहा है। इस सिलसिले बिच सब की बड़ी तकरीब गांधरबल जिला दे तुलमुला इलाके बिच माता खीर भवानी मंदिर बिच हो रही है, जिथे श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद सुन पूजा पाठ बिच शिरकत की, जिन्हां बिच पंडित बरादरी के अलावा मुल्क ते बेड़े दे मुल्कां थी आए श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद शामिल है।

0: माता खीर भवानी मेले दे सिलसिले बिच टिकर कोपारा तय लोगरी पुरा अशमकाम बिच भी पूजा पाठ की खसूसी तकरीबा हुई जिन्हें बिच काफ़ी तादाद बिच पंडित बरादरी दे लोगों सुन शिरकत की ते आलमी इंसानियत की बका ते जम्मू कश्मीर बिच मुकम्मल अमनो अमान वास्ते दुआ की। कई शरदालियां सुन अस्ते नुमाइंदियां साबर अजूब तसदुक रशीद रफीक अहमद ते खुर्शीद पडरू दे नाल गल करदियां अपने तासरां दा इस तरह इजहार किया।
1: मैं प्रार्थना यही कर रही हूँ जो हमारी माता खीर भवानी से कि जो हमारा त्योहार है हर साल हम ऐसे खुशी से मनाते रहे, बट हम जम्मू से ना आए हम कश्मीर में रह के ये त्योहार मनाएं। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाई भाई है, पहले भी कहा गया है आपस में प्यार रखिए भाईचारे।
2: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबलस मे तुलमला तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यो यूत असल प्रोग्राम थोम हर कह फैसिलिटी कर्म प्रोवाइड खास कर मुसलमान भाई नबर कन यम शान बशान सहित यहंद कि सी यात्रा गसल

0: छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करें और नौजवान मस्बत सरगर्मियों को अपनाएं। सब मिलकर अहद करें कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशियात से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे, ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार।
1: सरकार नौजवानों को बाख्तियार बनाने तय उन्हें वास्ते रोज़गार के मौके पैदा करने वास्ते लगातार इकदाम कर रही है। इन्हें गलों का इजहार तालीम की वजीर सकीना यीतू सोन SKICC श्रीनगर बेच एक प्राइवेट इदारे के एहतमाम नाल सनदा बनने के सिलसिले में हुई तकरीब नाल खिताब के दौरान आखी। उन्होंने सुन आखिया जे नौजवान जम्मू और कश्मीर की जामिया तरक्की में जरूरी रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके उत्ते सकीना यीतू सोन तालीम के मैदान में सोहनी कारकरदगी दसालने वास्ते कई तलबा को एजाजा नाल नवाजिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दे जून 2026 का नैट इम्तिहान आज थी शुरू हो गया है, जड़ा 3 जून तक जारी रहे सी। ए CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओ सी, जड़ा हर त्याड़े दोवें शिफ्टों पर किया गया सी। काबिले जिक्र है जे नैट इम्तिहान JRF असिस्टेंट प्रोफेसर ते PhD दे ख्वाहिशमंद कोर्सेज वास्ते किया गिनता है। इसी दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन मुकया। खबरों का अगला बुलेटिन 5:50 तक गोजी जबान पर नशर हो सी। दो इजाजत, खुदा हाफिज।
2: एशिया आकाशवाणी श्रीनगर समय वाले शाकर तो बोजो फनकार अब्दुल हमीद अली तहथी यम करें पेश कला में मासूम निसार।

0: Samintă eșu, ce cărtoru bozan? Fan care eș Abdul Hamid Ali Tesati, iman eș bozu tahe kalame masum nesar. Ișe Akash vani Srinagar sănis doimi selana speriu.
1: Commercial Broadcasting Service Srinagar. Avaz jo aapke karobar ko ek nayi udaan de. Kya aap चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शाम के 5 बज रहे हैं। समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम लेके हूँ थारो मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा थारी खिदमत में हाजिर हूँ। ते तम सारा नाम मेरा तरफ ते प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। समीनी क्राम तुम दस्तो चलो कि आज का प्रोग्राम में थारे वास्ते एक ड्रामो भी पेश कियो जाएगा। ते प्रोग्राम का शुरू में सामिनी क्राम थारे वास्ते पेश है यो लोक गीत, आवाज है सूरज सिंह शबनम अख्तर ते साथियों की।

जी असमीन, हम महमद हुसैन विरासी की आवाज़ में लोकगीत सुन रहा था। गोजरी लोकगीत मारी समाजी जिंदगी को शीशो है, जिसमें हम अपना सदियां पुराना चेहरा ना देख सका। मारा कारवां किन किन औखता ते सोखता ते गुजरिया है, मारा कल्चर ते मारा रस्म रिवाज की सारी कहानी को नचोड़ जुड़ो है ना, वो आमना अपना लोकगीता में लब जाए। यह हकीकत है कि मारा लोगों ने सुखों की मंजिल देखी है, फितरत की चोली में कुदरत ने इन्हें ना खिडाया है, साफ सुथरों ते पाक माहौल नसीब कियो है। मारा लोगों ने हमेशा ते माल मवेशी को काम कियो, जिसकी वजह ते वक्त ते मौसम ने आमना एक जाते दूजी जा जान वास्ते तैयार रखे हुए, ते इसी माहौल में सारा लोकगीत मारे सामने आ जाए, जिनमें बैसाख, कुकू, कैंची, बारामा ते और मुझ सारा लोकगीत शामिल हैं। पेश है इन्हें लोकगीतों बिचों यो लोकगीत।

जी ते समीन, हसबे वादा ओन पेश है थारे वास्ते ड्रामो गुलबानो, या तहरीर है हसन परवाज साबुरा की।

0: अरे बशीर,
1: ओ बनी, ओ जल्दी जल्दी करो रे, आज ये सारी लकड़ी चीर के ठिकाने लानी है। सुनियो है आज कोई बड़ो अफसर यहाँ आ रियो है। निकालते दारा ना ते मैं अपनी जेब में बंद कियो वो है। विराज पता नहीं यो कौन कम बख्त यहाँ आ रियो है। खैर तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
2: पे वो जो बड़ो बुटू है ना,
3: हाँ जी,
1: उसने आज रेन दियो, परसों देखूंगा।
3: अच्छा ठेकेदार साहब, पुलिस तो हमेशा थारा बुआ पर ताबेदारी में रहे, थारी जी हजूरी करता थकती नहीं, फिर तुम न कहो डर है।
1: ओ बशीर तू नहीं समझा को चलिया, वागो रुख देख लो, वह जिन माया एलियत नहीं होती वे हमेशा मुंह मुंदा टें। अकरम खान

0: कोई चक्कर चुलन तो पहला ही उसको रुख ताड़ है।
1: ओ जनाब तुम फिक्र ना करो, बशीर है ना थारो खादम, तुम कणी छा पी गया आराम नाल सो जाओ।
0: आराम के खाक करनो है, दिल में चैन रहे थे आराम भी आवे।
1: अल्लाह खैर करे जी, की गल आज थारो चिरो क्यों को यो चुंसे जो बा?
0: की गल पूछे बशीरा, वह ठेकेदार की तबीयत ठीक नहीं है, पतो नहीं के रोग लग के हुए उसमें, मेरी दौलत भी दे उसने ठीक नहीं कर सकती। की थी उनके रह गई है।

0: गुलबानो, गुलबानो, उठ गुलबानो, यह दवाई पी ले, शाबाश, उठ, मेरा हाथ को सारू ले गया, उठ, शाबाश, इंशाल्लाह, जल्दी ठीक हो जाएगी।
1: यह जिस्म की बीमारी नहीं, जड़ी दवाइयां नाल ठीक हो जाएगी। यो रोग मेरी हड्डियां में खूब गयो है, यो मेरी रूह को दर्द है, इसको कोई इलाज नहीं।
0: तू तो बेहद नेक है गुलबानो, खुदा जाने मेरा तो की गुनाह हो गया है जिस नाल तिन्ना यो ला इलाज रोग लग गयो है, जिसकी दवा किसे हकीम डॉक्टर या पीर फकीर को भी नहीं।
1: थारा कोल इस दर्द को इलाज है, वर्तन मेरा इस रोग ना नहीं समझ सकया।
0: खुदारा अपना दिल ना खोल के दस गुलबानो, बाखुदा हूँ अपनी जान कुर्बान कर दूँ कुछ दस ते से कीड़ो कीड़ो अपना काल जमा पाल रही है।
1: हाय तमना कुछ याद करवाना चाहूँ अकरम खान, कोई पुली भी गल, कोई बिसरी भी याद, उन यादा नाल जुड़ी भी कुछ अजीज चीज, कितनो हसीन बेफिक्र वक्त थो, हर वेले हर पासे सिर्फ खुशी ही खुशी, आनिया ते संगना की खेड़ एक खाबर उसे

0: गुलबानो गुलबानो
1: के
0: अक्रम अक्रम
2: के
0: आस बूटा की छा मां पंजगीटी खेडा
1: वो बड़ा बूटा मेरा ओ इसके मुंड अच्छा के नाल बांटा खेडो
0: ओ गुलबानो की बच्ची मिना भी बड़ा बूटा चाहिए ओ तेरा बूटा की पिछवाड़ी आला
1: ठीक है डर लगे ठीक है हम सारा इकट्ठा खेलेंगे
3: चढ़ भी चढ़ आए हुए बड़ा के जे बदल गजन नाल गुच्छी मुझ निकले और चला गुच्छी चुना फिर इतना आगे बढ़ांगा
1: चल
3: तू इतने बूटा हेठ बैस आप
1: अपना बूटा हेठ बैस
3: क्यों उतके है
1: बिगाना बूटो मेरा दर्द क्या समझेगो ते अपना बूटा हेठ बैसूंगी
3: बूटो तेरी अम्मा है जो तेरा दर्द समझेगो
1: हाँ यो बूटो मेरी अम्मा भी है सहेली भी हमदर्द भी हूँ इसके नाल एकला गल करती रहूँगा जब इसकी डाली ले तावे मेरा नाल गल कर रही

0: अच्छा अच्छा अच्छा बूटा माँ बूटा भी गल करे
1: अम्मी खुदा पले चली गई है, लेकिन मेरा पत्तो है के भाई इसकी डालिया में छप के बैठी हुई है। वाह वाह ऊपर ले जित कहा पत्थर है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।

0: वाह, आज मिजाज बड़ो खुश है, की गल है?
1: कुछ ही तनी, बस नहीं।
0: खैर गुलबानो, वो एक सलाह करने आया।
1: कैसी सलाह? क्या कोई खजाना थे आगे?
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। मैं सोचा कि ठेकेदार खुदा बख्श ठेका पर मजदूरी करूंगा, वो लकड़ी कपूं है बेचने वो काम करे।
1: तो क्या तन बूटा कपेगा?
0: कुछ ना कुछ तो करना है। पहला अम्मा अब्बा था, हूं तुम, फिर आखिर टब्बर के वास्ते आटा लो, वो चारों करने में, और फिर हम कोल गाल का बूटा थोड़ा कपूंगा, दूर दराडा का जंगल है उच्च लकड़ी कपूंगा।
1: बूटा तो बूटा ही है, चाहे कोल गाल या दूर का।
0: अच्छा गुलबानो, चले।

0: अकरम खान जी हूँ तो अच्छो खासो कम संभालन लग पे हो। मेरी गैर हाजिरी में मजदूरों पर नजर रखा कर, बड़ा नमक आराम है। मालक सिर पर ना वह तो ये टंग पसार के सुता रहे।
1: कम फिक्र ना करो हजरत, हम संभाल लेंगे।
0: अकरम परसों शतीरियों को एक ट्रक शहर भेजना है, ऊपर थोड़ी सारी गल हो गई है
1: जी।
0: बस कोई परोसालो नाल लोड है, और तेरा तो बाद मेरा कौन है परोसेमंद?
1: हम तो थारो एहसान है जनाब, थारी सरा निवासी है।
0: तो ठीक है, पालक अधी रात में चंद चढ़ता ही तन निकल जाइयो। सुनियो
1: ठीक है जनाब, तन्ने सारो इंतजाम कर दितो भाई को।
0: और है सारी पुलिस अपनी जेब में है, कोई पूछे तो कह दियो ठेकेदार खुदा बख्श को माल है। पुलिस सलाम कर गया हट जाएगी।
1: ठीक है जनाब।

0: तुम बड़ी परेशान आ।
1: या गफूर,
0: कर्मा सो खराब नहीं, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मेरी बहू नाजक हालत में है और पता नहीं उसने के हो गयो है, शायद किसी जिन परी को सायो पै गयो है।
1: अल्लाह,
0: वो अपनी सुदबुद्धि गवा बैठी है।
1: अल्लाह हक अल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगो। तू आज इत पूज गई है, इंशाल्लाह सब मुराद पूरी रहेंगी। अल्लाह हो, चल तू चल चराल तू, खुद को कमाल तू, ओके मेरे नाल तू, आई बराना डाल तू, चू चू चू चू चू। ये मिट्टी ले जा, उसका जुस्सा पर मल चुड़िए, और ये तावीज उसने गले में बन चुड़िए।
0: जी बाबा।
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह सब खैर करेगो। ये दूजो तावीज निका मासूम बच्चा की बाना बन चुड़िए। अल्लाह सब बदनजर दे शैतान ते महफूज रहेगो।
0: बाबा दुआ करे।
1: अल्लाह
0: अल्लाह मेरा घर की खुशी बचा।
1: अल्लाह हूं जा, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगो।
0: खुदा हाफिज बाबा।
1: खुदा हाफिज। हक अल्लाह अल्लाह।
2: कौन है बाहर? गुलबानो
3: जी,
2: जरा देखता
3: कौन है।
4: मुआ जी, हूँ वली अकरम खान को संगी।
3: वे किते?
4: कल रात खुदा बख्श ने अकरम खान ते दो मजदूरों ने शतीरियां का ट्रक नाल शहर भेजो थो, लेकिन
2: गुलबानो कौन है बुआ मां?
3: ठेकेदार का मजदूर वली।
2: की कहियो, अंदर बुलाना इसना।
4: अस्सलाम वालेकुम चाची जी।
0: वालेकुम अस्सलाम। इस वेले कुफ्ता ना खैर है ना?
4: चाची हूँ पतो देना आए थो, कल अकरम खान लकड़ियों को ट्रक ले गया है शहर गयो थो, लेकिन
0: लेकिन की
4: रास्ता में पुलिस ने सारो माल जब्त कर लियो, नाले अकरम खान ना भी पकड़ कर ले गई है।
0: हाय अल्लाह, हूँ यू के सुन रही हूँ। ओ गुलबानो
3: जी,
0: वो तो सुन रही है मेरो अकरम जालिम ने मुझे मारो बैगो।
4: नहीं चाची फिक्र ना करो, इंशाल्लाह पालक नमाशियां तोड़ी अकरम खान मुड़ा बैगो, जमानत को बंदोबस्त भी हो जाएगा।

0: है।
1: हाँ हाँ वो जमानत हो गई है। मेरो पूत किते अकरम खान वो लगते जिगर।
2: कौन है गुलबानो?
0: आपे देख लियो अम्मा।
2: हाय अल्लाह मेरो अकरम आ गयो। खुदा को शुक्र है ओ सतवारी कुर्बान जाऊं। गुलबानो ओ बलियार रोटी काट अकरम भूखो वेगो। इस लालटेन में भी जरी तेज कर।
1: मेरो पूत किते वाह यू दे दूजो अकरम खान है।

0: साथियों
1: जी
0: खुदा बख्श ने मेरे नाल धोखो कियो है।
2: अच्छा
0: मिन्ना पुलिस में फंसा गए, आप साफ बच गयो।
1: अल्लाह
0: मारी गप उसका परसे करो सस्ती है, मारी कल कदर नहीं, चार पैसा खर्चना से वो तैयार नहीं, लखन विचों मारे वास्ते कख भी नहीं।
1: तो फिर हमें क्या करना चाहिए जी?
0: हम अपने काम शुरू करूंगा। हम सब मिल गए पलटते अकरम खान इस इलाका को ठेकेदार वेगो, सिर्फ अकरम खान। थारी की सलाह है?
1: बिल्कुल ठीक है,
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पायो सारा सुन लियो, आज दे बाद मारो ठेकेदार सिर्फ अकरम खान है।
3: ठीक है जी, अकरम खान रहम दिल आदमी है।
1: बिल्कुल इतना रहम दिल को नहीं बोलो, बस
4: अकरम खान चंगो आदमी,
3: चंगो आदमी जी,
1: रहम दिल आदमी जी। फिर अकरम खान
2: ठीक है जी,
3: ठीक है, अकरम खान
2: ठीक है,
3: आज दे बाद मारो ठेकेदार
2: अकरम खान।

0: बाबूशील।
1: हाँ जी।
0: कितना बूटा कपे है आज?
1: ठेकेदार साहब बीद है बूटा था, लकड़ी चीरन वास्ते जंगली मारी ला देती है, बस रातों रात माल ठिकाने पहुंच जाएगा।
0: ठीक है, पलक थोड़ी टाल साफ हो जानी चाहिए, परसों परला नाला का बूटा कटना है, मंडी वाला नाल कल हो गई।
1: तुम फिक्र ना करो जी, सब कुछ फटाफट हो जाएगा।

0: ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब बुए खोलो।
1: महाराज जी गजब हो गए, ठेकेदार साहब गजब हो गए हो।
2: की गल है, खैर है, कोई छापा क्यों? तुम इस तरह की गल है? जीवो, क्यों नहीं?
3: जीवो जीवो अक्रम भाई, जल्दी चलो, रहीम चीड़ का बूटा बरू टह गया, वो रात बछूड़ बेहोश पिया हुआ।
2: या अल्लाह है कि तेरी किस तरह टह गया, कितू टह गया?
4: वो चीड़ पर डाला कपे थो, एक डालो टूट गया, डाला के नाल ही रहीम नहीं। बस जी बस, हूं चलो तुम आओ,
1: चलो चलो चलो चलो।
5: क्या गल अक्रम खान, किस जा रहे तुम?
2: मेरा
5: केड़ा गुनाह की सजा मिल रही है? मेरा नसीबा में खुशियां वो काल क्यों है? सारा दुख दर्द मेरी चोली में क्यों सटा है? के सोचो थो और के सहना पै रहे हो? हाय मेरा लाल, हाय हाय मेरा लाल।
6: गुरबाना सब नाल कम ले, खुदा पर भरोसा रख, दुआ कर, अल्लाह रहम करेगा।

0: मारी किस्मत में जो कुछ तो गुलबानो वो हर हाल में होना तो खुदा को लख लख शुक्र है कि करीम होनहार बच्चो निकलो जिसने मेरो सारो बन गए सारो कारोबार संभाल लियो है वरना मेरो दे लक ही टूट गयो तो
1: कारोबार या एरा फेरी इस कालख ना कारोबार के तम नहीं सुधरिया सिर्फ दौलत ना ही जिंदगी को मकसद समझो तम तो मीना ही भुला गया
0: की कह रही है गुलबानो तेरा सारा तो हम जिंदू हूं तू नहीं जानती तेरा थोड़ा ऊंचे दर्द मीना कितना बेचैन करता है
1: हर पल त्याड़ी रात जड़ा लोग अथरू में रोते रहूं तो मैं कदे भी वे नजर नहीं आया
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कहीं तू इस वेले के कम पियो माल संभाल लियो ना
2: वो सब कुछ ठीक है अबा हूँ पूछना आयो जी उसे बड़ा बूटा वो के करना है
0: उसने उसने रहन दे करी
2: अच्छा फिर
0: रहन दे रहन दे उसने परसों देखूंगा
1: किस बूटा की गाल कर रहे हैं तुम
0: वो नहीं क्रीम भी वो पार्ली टक्की में एक बूटो तू आराम कर
1: नहीं नहीं तुम कोई छुपा रहे हैं
0: वैन ना करया कर क्यों ना कुछ भी नहीं तू आराम कर वो नहीं आयो

0: यो जंगल आज कितना दूर लग रहे हो है। लिंगा मां जान नहीं है। ओह हाय, याल्ला यो क्या देख रही हूँ। यो हैं, ये वही जंगल है। ये उजाड़ किसरा हो गयो। उनकी तो रात नहीं भूल गई। नहीं नहीं, राह भी वही है। फिर ये बूटा क्यों गया? अर्शंग बूटो की तय, बशीरा का बूटो भी नहीं। ते मेरी अम्मा, ते मेरी अम्मा। शुक्र है अम्मा, शुक्र है तू जा जिंदी है। मेरी बर्बादी ते इस क्रम न देखने वास्ते तू मौजूद है। अक्रम ने ते मेरे एक एक रही मेरी तेरी ही मुका छोड़ा है, पर उसकी आवाज अजा नहीं मुकी ते कदे नहीं मुकेगी। मेरे साहब क्यों नहीं निकलता।
1: गुलबानो, ये तुम्हें क्यों क्यों है? तू क्या पता है तेना चलना फिरना मना क्यों हुआ है?

0: या क्या हालत बनाई है? मुंह लाल हो गए हैं, होंठ सूख गए हैं।
1: शायद मेरी मौत इतने लिखी हुई है। अकरम, जितन बूटा गए हेठ हम इकट्ठा खेडा था, उनके नाल अपना दुख सुख बंडा था, इन्ना कपता तेना जरे भी तरस नहीं आया, मेरा ख्याल भी नहीं रहो।
0: खुदा का वास्ते अपना अपना सवाल कर डालो, उन्हें माफ कर, बस बस और तेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: और अपनी अम्मा को सिर कपता नहीं देख सकती अकरम, वो दिन देखने वास्ते जिंदो नहीं रहना चाहती अकरम। अम्मा अकरम, अम्मा।
2: ओ बशीरा, करीम, ओ अब्दुल्ला, आओ रे आओ रे आओ, मेरी मदद करो, पानी लाओ पानी लाओ। गुलबानो
3: ओके गाना,
2: गुलबानो
3: आ मेरा के गाना। ओ मामा, आ गया
2: अपनी अम्मा,
3: आ आ
2: मेरी मदद करो।

0: गुलबानो, अल्लाह तेरो लख लख शुक्र है, तेरो लख लख शुक्र है।
1: अकरम मामा, वो बूटो
0: तेरी अम्मा हमेशा जिंदी रहेगी गुलबानो, जिन बूटा में तेरी जान है वे हम कदे नहीं कपनवेगा।
1: बूटा वो ठेकेदार या गल कह रही हुए,
0: वो ठेकेदार मर क्यों है गुलबानो, हम इन बूटा वो पहरेदार बोल रहे हुए, और कोई खुदा बख्श अकरम खान या रहीम खान इस जंगलदार मैलिया के नहीं देख सकेगा।
1: सच अकरम?
0: हाँ गुलबानो, सच, बिल्कुल सच।

अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। रात 9:30 पर रहीम रहबर का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नशर होगा मौजूद। आकाशवाणी।

0: निकासरी नगर स्टेशन है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें पेश होंगी, जिसके फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन पेश होगा। पहले मकामी गोजरी खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, यू आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों को बुलेटिन लेके चौधरी इरशाद। पहला अहम खबरों की सुर्खी। मुल्क में पिछले 12 साल के दौरान आई मस्बत तब्दीलियों की बदौलत हुकूमत तय इंतजामिया पर आवाम को एतमाद हुए मुस्तहकम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी में आज मजहबी जोश खरोश अकीदत व एहतराम के नाल मनाए जा रहे हुए माता खीर भवानी मेलो। एल जी मनोज सिन्हा ने तुलामुला में अस्थापन पर दी हाजिरी, क्यों इंतजामिया पंडित बरादरी का लोगों का मसाइल हल करने की वादा बंद। हारजे अमूर तो मुतलक पार्लीमानी स्टैंडिंग कमेटी को 4 रोजा दौरों जम्मू कश्मीर ते लद्दाख आज तो शुरू। हुन पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में पिछले 12 साल के दौरान आई मस्बत तब्दीलियों की बदौलत हुकुमरानी का अमल ते इंतजामिया पर लोगों का एतमाद ते भरोसा मजबूत हो है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क का करोड़ों आवाम का मियार हयात में बेहतरी आन, उनकी सलामती ने यकीनी बनान ते जिंदगी ना आसान करने वास्ते कई स्कीम ते प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर आज़म ने इन गलों को इजहार आज सनअत व हिरफत का मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल को एक मजमून सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर करता हुआ किया। उन्होंने कहा कि आवामी एतमाद ते भरोसा बेहतर हुकुमरानी को हासिल है। पीयूष गोयल ने पिछले 12 सालों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मुल्क की तरक्याती सरफ़रनामा ना उजागर किया थो। वादी में आज माता खीर भवानी गो मिलो मजहबी जोश खरोश अकीदत एहतराम के नाल मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में सब तो बड़ी तकरीब गांधरबल जिला का तुलमुला इलाका में माता खीर भवानी मंदिर में हो रही है, जित श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद ने पूजा पाठ में शिरकत की, जिनमें पंडित बरादरी के अलावा मुल्क ते बैरून मुल्क तो आया हुआ श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद शामिल है।

0: माता खीरभवानी मेला का सिलसिला माँ टुकर कुपवाड़ा देवसर तय मनसगाम कुलगाम और लोकरीपुरा इशमकाम में भी पूजा पाठ की खसूसी तकरीब मुनक़द हुई, जिनमें काफ़ी तदाद में पंडित बरादरी का लोगों ने शिरकत की थे। आलम इंसानियत की बका तय जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन ते अमान वास्ते दुआ की। कई श्रद्धालुओं ने मारा नुमाइंदा साबर अयूब तसद्दुक रशीद रफीक अहमद ते खुर्शीद पडरू के नाल गल करता हुआ अपना तसरात को इस तरह इजहार किया है।
1: मैं प्रार्थना ये कर रही हूँ जो हमारी माता खीर भवानी से कि जो हमारा त्योहार है हर साल हम ऐसे खुशी से मनाते रहे, बट हम जम्मू से ना आए हम कश्मीर में रह के ये त्योहार मनाए। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाई भाई है, पहले भी कहा गया है, आपस में प्यार रखिए, भाईचारे रखिए।
2: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबल में तुलमल तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यो यूथ असल प्रोग्राम थो हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान बच्चे शान बशान सत माता खुद यहाँ
1: एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम शुक्रिया करते हैं, पहले धन्यवाद उन लोगों से करते हैं यहाँ के लोग, उनसे आज बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: मेला का ताल्लुक नाल इन तमाम मुकाम पर आपसी रवादारी ते मजहबी भाईचारा का मनाजर देखना मिल रहा था। ते मुकामी मुसलमान बरादरी ने मेला के दौरान पंडित बरादरी का लोगों वास्ते मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखी थी। एक रिपोर्ट के नाल गांधरबल तू मारा नुमाइंदा।
3: हर साल की तरह इस साल भी मुल्क भर से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने माता खीर भवानी के मंदिर में हाजिरी दी, जबकि मुस्लिम आबादी इनके इस्तकबार और सहूलियतकारी में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। पुलिस की तरफ से पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम के बीच इंतजामिया ने सेहत ट्रांसपोर्ट बिजली पानी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए थे, जबकि रजाकार अंजनों की जानिब से जाहिरीन के लिए पानी मशरूबात का इंतजाम भी किया गया था। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए तुलमुला से मैं साबिर अयूब।
0: आज ज्येष्ठ अष्टमी को त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गुना मनोज सिन्हा ने इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपना एक पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार हम सब वास्ते अमन तरक्की खुशहाली की नोवीद लेके आवे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ज्येष्ठ अष्टमी का मौका पर पंडित बरादरी का लोगों ना मुबारकबाद देता हुआ, क्योंकि इस तरह का त्यौहार नाल अमन अहवत आपसी रवादारी का रिश्ता मजीद मुस्तकम उम्मीद। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज ज्येष्ठ अष्टमी का मौका पर तुलामुला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी। जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की लोगों की फलाह बहबूद वास्ते दुआ की। उन्होंने श्रद्धालुओं वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार किया। एलजी ने मेला खीर भवानी का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से

0: मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एशिया आकाशवाणी श्रीनगर शबजत 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बायन खतरा।

एशिया आकाशवाणी श्रीनगर शबजत 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बायन खतरा।

0: अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर,

0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं माता खीर भवानी का मेला वादी भर में तकारीब का एहतमाम। वजीर ज़िला तो बागबानी जावेद अहमदार ने रामबन और बानिहाल का दौरा किया। वजीर सेहत सकीना इतू ने जुनूबी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। और पुंछ जिले में जल जीवन मिशन की नाकामियां। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना,
3: हा?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हा?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
7: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
8: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट, तो मेरे शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
9: तो क्या शक्ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यहाँ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
8: मगर यह है आज सठा द्रोग।
9: हाँ ना ना, सुई कम मत, मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
10: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंत, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस मज दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
12: सेहत चु हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज त चु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल त सही मालूमातन हिं कमी, यम चीज चु रुकावट बनान त जरूरी इलाज चु।

0: मर्दुम शुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।
1: शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज माता खीर भवानी का मेला मजहबी अकीदत एहतराम और रिवायती जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब तुलमुरा गांधरबल में वाके माता खीर भवानी के स्थापना पर मुनाकिद हुई, जहां आज हजारों श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी और दिन भर पूजा पाठ में मसरूफ रहे। याद रहे कि तुलमुरा में श्रद्धालुओं की आमद गुज़त 5 रोज से जारी रही और 2 रोज कबल शनिवार को 9,000 श्रद्धालुओं का एक काफिला, जिसे नगरोटा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तुलमुरा पहुंचा। माता खीर भवानी के मेले के मौके पर कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालुओं के साथ मकामी मुसलमानों का इजहार यकजहती देखते ही बनता है और इस रिवायत की मुतासिर को नक्काशी करता है, जिसे हम कश्मीरियत के नाम से जानते हैं। वाजिर है कि माता खीर भवानी के मेले के सिलसिले में तुलमुरा के साथ साथ वादी के दिगर कई मंदिरों में तकारीब का एहतमाम किया गया। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ तुलमुरा से हमारे नुमाइंदे रहीम रिजवान।
2: माता खीर भवानी का सालाना मेला आज तुलमुरा गांधरबल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने तुलमुरा पहुंचकर माता खीर भवानी के स्थापन पर हाजिरी दी और खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत करके मुल्क खासकर जम्मू कश्मीर की अमन शांति, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। अगर खीर भवानी के स्थापन पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहता है, तमाम सालाना मेले के पेश नजर 5 रोज कबल कश्मीरी पंडितों का यहां आना शुरू हुआ, जिसके 22 वो सुबह शाम पूजा अर्चना में शिरकत करके खुसूसी दुआओं में शामिल रहे। इस दौरान जो 8,500 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से वादी की तरफ शनिचरवार के रोज सुबह सवेरे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया, वो जत्था शनिचरवार के दिन ही बाद दोपहर तुलमुरा पहुंचा, जहां डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जैतिन किशोर और SSP गांधरबल सुधांशु दामा की मौजूदगी में इंतजामिया और मकामी लोगों ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया, जिसको देखकर कश्मीरी पंडित फूले न समाए। इस बीच मकामी मुसलमानों ने भी यहाँ की कदीम रिवायात को बरकरार रखते हुए पंडित बरादरी के इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक नई मिसाल कायम की। मेले को आसान तरीके पर मुनक्कद कराने और श्रद्धालुओं को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए जिला इंतजामिया गांधरबल ने खातिर खा इंतजाम किए थे, जिसको लेकर श्रद्धालु मुतमइन देखने को मिले। मंदिर के इहाते में तमाम महकमों, रजाकार तंजीमों, सिविल सोसाइटीज और सियासी तंजीमों ने स्टाल लगाए थे, जहां हर तरह की खदमात मैसर रखी गई थी, जबकि खाने पीने के लिए मुफ्त लंगर, रिहाइश, बैतुल खुला इलाज मालजा और मुफ्त अद्वियात के साथ साथ सेहत सफाई का खास इंतजाम रखा गया था। श्रद्धालुओं को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से खीर भवानी स्थापन पर ले जाने और दर्शन करके वापस लाने के लिए मुफ्त सर्विसेज का एहतमाम भी किया गया था। पूरे जिले में हिफाजती के सख्त इंतजाम किए गए थे और जगह जगह सिक्योरिटी एहलकारों को चाको चौबंद रखा गया था। सालाना मेले के सिलसिले में आज तबका हाई फिक्र से वाबस्ता लोगों ने तुलमुला जाकर स्थापन पर हाजिरी दी और पूजा पाठ में शिरकत करके दुआएं मांगी, जिनमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, वहीदुर रहमान परक के अलावा सूबाई और जिला इंतजामिया के आला अफसर भी शामिल थे। मेले के दौरान जहां कश्मीरी पंडितों ने मकामी लोगों से मिलकर खुशी का इजहार किया, वहीं मरकजी सरकार और मौजूदा सरकार से मुतालबा किया कि उनकी वतन वापसी के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए।
1: तुलमुला से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की इतला है कि आज माता खीर भवानी के मेले के सिलसिले में टिक्कर कुपवाड़ा में वाकई माता के मंदिर में खसूसी पूजा अर्चना और हवन का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की और कश्मीर में दायमी अमन कायम होने की दुआ की। इधर कुलगाम से फारूक राठौर की इतला है कि माता खीर भवानी के मेले के मौके पर आज श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दिवसर और खीर भवानी स्थापन मंजगाम में रूह परवर तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें कश्मीरी पंडित बिरादरी के सैकड़ों अकीदतमंद शरीक हुए और कश्मीर की तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर मकामी मुसलमान अपने पंडित भाई बहनों को मुबारकबाद पेश करते हुए देखे गए,

0: मशीनरी से न सिर्फ शहर खास बल्कि मुल्क इलाकों के मरीजों को भी मयारी और जदीद तिब्बी सहूलियात मयसर आएंगी। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करना और सरकारी सेहत के निजाम को मजबूत बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।

0: मर्दुम शुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर बीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। देवर इंद्रबुक लोलाब के मकामी बाशिंदों ने मरकजी जामा मस्जिद के करीब गुजरने वाले नाले पर पुल की तामीर न होने से परेशानी का इजहार किया है। बताया जाता है कि पुल की तामीर महकमा पीएमजीएसवाई के जिम्मे है। मकामी आबादी के मुताबिक मजकूरा नाला सड़क के ऊपर से गुजरता है और वहां पुल तामीर न होने की वजह से बारिशों के दौरान पानी सड़क पर फैल जाता है, जबकि शदीद बारिश की सूरत में पानी करीबी दुकानों में दाखिल होता है और आसपास की जरई अराजी भी जेर आब आ जाती है। मकीनों ने बताया कि उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा मुतअल्लिक महकमे के नाले पर पुल तामीर करने का मुतालबा किया ताकि पानी पुल के नीचे से गुजर सके और अवामी इमलाक को नुकसान न पहुंचे, ताहम उनकी ये मांग आज तक पूरा न हो पाए। समय आज श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में वजीर सेहत तिबी तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूद इतू ने पहलगाम में एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें सालाना यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम और तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में रुकन असेंबली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कल्लू समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुतल्लिक अफसरान ने वजीर मौसूफा को यात्रा के पुरअमन मुनज्जम और कामयाब इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजाम के बारे में मुफसल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेहत और तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्ट, रिहायश, सिक्योरिटी इंतजाम और जायरीन को फराहम किए जाने वाले दीगर खिदमात से मुतल्लिक तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी गई। बाद में सकीना मसूद इत्तू ने मीडिया से बात करते हुए आज की मीटिंग और आज के इस इजलास के बारे में बताया।
2: मैं और मेरे साथ

0: थी ऑनरेबल एमएलए अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब और सारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, फूड एंड सप्लाईज हो, पीडीडी हो, पीएचजी हो, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यहाँ आए और हमने ओवरऑल जो है रिव्यू किया है हर डिपार्टमेंट के बारे में, फूड एंड सप्लाईज में क्या क्या फैसिलिटी रखी हैं, इसी तरह हेल्थ सर्विसेज में जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो किस हद तक कम्प्लीट कर दी है। मैंने पहले भी एक मीटिंग ली थी कुछ एक 15-20 दिन पहले, तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जो जो इंफॉर्मेशन आई है, जो जो सबने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी दी है, सारे डिपार्टमेंट्स ने जो है ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज जो है जो उनको करनी है वो ऑलरेडी अवेलेबल उन्होंने रखी है और हमने हिदायत दी है कि अगर कुछ और करने की ज़रूरत हो वो भी करेंगे। डॉक्टर्स तो ऑलरेडी मुकर्रर किए गए हैं, भेजे गए हैं, उनको ऑर्डर किया गया है, जितने भी 55 कैंप्स हैं उनके दौरान जो जो डॉक्टर्स की ड्यूटी होगी, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी होगी, उनके उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल होंगे, जो इक्विपमेंट होंगे वो सारे ऑलरेडी किए गए। इसी तरह पीएचई डिपार्टमेंट, इसी तरह पीडीडी डिपार्टमेंट, इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैंने यहाँ जानकारी ली कि उन्होंने क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो रखी हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो वो सारी जीएमसी अनंतनाग में क्या फैसिलिटीज़ होंगे यात्रा के दौरान, सिक्किम्स के दौरान जो है क्या फैसिलिटीज़ रखी जाएंगी, तो वो सारा जो है ओवरऑल रिव्यू हुआ और मुझे खुशी है कि ऑलरेडी जो है सारे इख्तिताम जो है वो ऑलरेडी कम्प्लीट। तो अपने तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको वेलकम करते हैं और मैं समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि वो लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और अमरनाथ श्राइन में दर्शन करके अच्छी तरह यहाँ कश्मीर के मौसम को भी एंजॉय करें।
1: सेहत तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना मसूदी थी जिन्होंने आज पहलगाम में सरना अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की सदारत की और बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात की। इधर बज़्म अदब गुलमर्ग के इंतखाबात आज खुश उसलूबी से मुनाकिद हुए जिनमें तंजीम के अहदेदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इंतखाबी अमल के दौरान अराकीन की मुत्तफिक राय से हिलाल कश्मीरी को बज़्म अदब गुलमर्ग का सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश की। और अब रुख करते हैं त्राल का जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं शब्बीर भट्ट।
2: वादी कश्मीर में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल की वजह से जहां काश्तकारी का शोबा बुरी तरह मुतासर हो रहा है, वहीं बेदर पे जालाबारी और शरीर बारिशों की वजह से किसानों की उम्मीदें खाक में मिल रही हैं। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज सदर सब जिला त्राल के बालाई देहात खानागुन सौफीगुण सतूरा गुतरू पिंगलिश अरसोना गुलशनपोरा नगीनपोरा और मजाफात में मौसम ने अचानक करवट बदली और कई मिनट तक जारी रहने वाली शदीद जालाबारी ने खड़ी फसलों और मेवाजात को शदीद नुकसान पहुंचा दिया और बाग मालिकान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। कई मुतासर किसानों ने शहरवीन को बताया कि खानागुन और सौफीगुन इलाके में आज हुई इस शदीद जालाबारी ने लोगों को खौफजदा कर दिया और जालाबारी के बाद कई मिनट तक जारी रहने वाली शदीद बारिशों के बाद आई तुगियानी से सौफीगुण मेन सड़क का एक हिफाजी बांध मुनहजिम होकर मामर शफी सौफी के आंगन में गिर गया। तमाम खुशकिस्मती ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं इससे कबल भी गुजशत हफ्ते त्राल के ही शिकारगा ब्रह्मपदरी जराड़ीहार दूधमर्ग और मजाफात में कहरंगे जालाबारी ने खड़ी फसलों और मेवा बागात के साथ साथ सब्जी क्यारियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दिया था। सौफीगुण से ताल्लुक रखने वाले एक मौजूद शहरी मोहम्मद मकबूल सौफी ने बताया कि इलाके में मईशत का दार मदार हार्टिकल्चर सेक्टर पर ज्यादा है जिसे सैकड़ों क्या हजारों अफराद का रोजगार दिल वास्ता या दिला वास्ता जुड़ा हुआ है। ताम बार बार की मौसमी तब्दीलियों जालाबारी और गैर मुतवक बारिशों ने बागबानी के शोबे को हद से ज्यादा मुतासर कर दिया है, इसलिए जुमला आबादी हुकूमत से मुतालबा करती है कि सेब की फसल को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में लाया जाए और एंटीहेल नेट समेत दीगर हिफाजती आलात सब्सिडी पर फराम किए जाए। मुकामी लोगों ने यह भी इल्जाम आयद किया कि जालाबारी के बाद हार्टिकल्चर महकमे के मुलाजमीन मुतासरा इलाकों का दौरा करके रिपोर्ट तो बनाते हैं लेकिन आज तक किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। इस दौरान मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक और साबिक टीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल इलाके में हुई शदीद जालाबारी से नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा किसानों को भरपूर मुआवजा देने का मुतालबा कर दिया है। इस दौरान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर त्राल सरताज अहमद ने आज शाम शहरवीन को बताया कि आज चौथी मरतबा त्राल इलाके में इस सीजन की शदीद जालाबारी हुई जिसकी वजह से बागबानी शोबे को बड़ी हद तक नुकसान पहुंचा है और मालिका

0: माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में टिकर कफाड़ा देवसर और मंजगाम कोलगाम नीस लोहरीपोरा अश्मकाम में भी पूजा पाठ की खसूसी तकारीब मुनक्द हुई जिनमें काफी तादाद में पंडित बरादरी के लोगों ने शिरकत की और आलम इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान के लिए दुआ की। कई श्रद्धालुओं ने हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब तसद्दुक रशीद रफीक अहमद और खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
1: मैं प्रार्थना यही कर रही हूँ जो हमारी माता खीर भवानी से कि जो हमारा त्योहार है हर साल हम ऐसे खुशी से मनाते रहे बट हम जम्मू से ना आए हम कश्मीर में रह के ये त्योहार मनाएं। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है भाई भाई है पहले भी कहा गया है आपस में प्यार रखिए भाईचारे
2: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबल तुलमल तो ये क्राउड एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यो असल प्रोग्राम थो हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान बच्चे शान बशान सत
1: एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम शुक्रिया करते हैं पहले ही धन्यवाद धन्यवाद उनसे करते हैं यहाँ के लोग उनसे आज बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: मेले के ताल्लुक से इन तमाम मकामात पर आपसी रवादारी और मजहबी भाईचारे के मनाजिर देखने को मिल रहे थे और मकामी मुसलमान बरादरी ने मेले के दौरान पंडित बरादरी की लोगों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखी थी। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से हमारे नुमाइंदे।
3: हर साल की तरह इस साल भी मुल्क भर से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने माता खीर भवानी के मंदिर में हाजिरी दी जबकि मुस्लिम आबादी इनके इस्तकबार और सहूलियतकारी में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। पुलिस की तरफ से पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम के बीच इंतजामिया ने सेहत ट्रांसपोर्ट बिजली पानी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए थे जबकि रजाकार अंजनों की जानिब से जाहिरीन के लिए पानी मशरूबात का इंतजाम भी किया गया था। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए तुलमुला से मैं साबिर अयूब।

0: पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स की सदारत कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में इसकी सदारत की थी। बरतानिया के वजीर अजम केयर स्टॉर्मर ने वजीर अजम और लेबर पार्टी के रहनुमा के ओहदे से इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ एलजी का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक उस्ताद शबीर हुसैन राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशा एक ऐसी खामोश तबाही है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों की खुशियां और माशरे का सुकून छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करें और नौजवान मस्बत सरगर्मियों को अपनाएं। सब मिलकर अहद करें कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशियात से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें।
0: बीजेपी रिफ्यूजी सेल के कन्वीनर एस बलविंदर सिंह सूडन की सदारत में सिख तबके का एक वफद जम्मू में मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा से मुलाकात हुआ और उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सिख तबके के लोगों के मसाइल पर मबनी मेमोरेंडम पेश किया। सत शर्मा ने वजीर दाखिला अमित शाह के नाम लिखा गया ये मेमोरेंडम वसूल किया और वफद को यकीन दिलाया कि इसे मुतलका हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने एक बयान में कहा है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कयादत वाली हुकूमत ने पिछले 12 वर्षों के दौरान मुल्क के किसानों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज पीएम किसान की 23वीं किस्त के तहत 9,44,00,000 किसानों में 18,880 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज गौसे अस्पताल खानियार में 1,25,00,000 रुपए मालियत के जदीद आलात और मशीनरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को तिबी निगादाश्त में मयारी सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने आज आलमगिरी बाजार में एक मुनफरिद और तारीखी इस्लामी खताती पर मबनी यादगार मनसूबा अवाम के नाम वक्त किया। पार्टी के नायब सदर सूबा कश्मीर एहसान परदेसी की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद हुआ। आज मुकद्दस माह मुहर्रमुल हराम की छठी तारीख है। वादी बरमै हुसैनी मजालिस का आजादारी जुलूसों का सिलसिला जारी है जिनमें करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यौम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में आज तारीखी खानकाह मौला में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान नमाज जहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत के मुख्तलिफ गोशे बयान किए। पंचायती राज की मरकजी वजारत की तरफ से कल श्रीनगर में सेवा से समृद्धि मौजू के तहत एक इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे जबकि तकरीब में दीही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी इसमें शिरकत करेंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज नई दिल्ली में पंचायती राज के मरकजी वजीर के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर हुक्मरानी और देही तरक्की के अमल को मुस्तहकम करने से मुतलिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत

0: 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। खास खबरों पर फिर एक नजर। मुल्क में पिछले 12 बरसों के दौरान आई मुस्बत तब्दीलियों की बदौलत हुकूमत और इंतजामिया पर आवाम का एतमाद हुआ मुस्तहकम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी में आज मजहबी जोशो खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया माता खीर भवानी मेला। एलजी मनोज सिन्हा ने तुलमुल्ला में अस्थापन पर दी हाजिरी, कहा इंतजामिया पंडित बरादरी के लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद। और खारजी उमूर से मुतलिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी का 4 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से शुरू। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। वादी कश्मीर में आज जैश अष्टमी के मौके पर खीर भवानी मेला मजहबी अकीदत और रिवायती भाईचारे के जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब माता रागनीय देवी के तुलमुला गांधरबल में वाका खीर भवानी स्थापन पर हुई। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने, जिनमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित शामिल थे, स्थापन में हाजिरी दी और खसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। खीर भवानी का ये मंदिर कश्मीर में हिंदू बरादरी का एक अहम देवी पीठ है और हिंदू अकीदे के मुताबिक रागनी देवी माँ दुर्गा का एक रूप है। 1990 में कश्मीर में तशद्दुद और तोड़फोड़ का दौर शुरू हो जाने के बाद कश्मीरी पंडितों की वादी से भारी पैमाने पर हुई नकली मकानी के तनाजुर में गुज़श्ता कई सालों से जम्मू और मुल्क के दीगर इलाकों में रिहायश पजीर कश्मीरी पंडित मेला खीर भवानी के मौके पर वादी आकर इस त्यौहार में शामिल होते हैं। अमन सलामती की सूरत हाल में आई बेहतरी के नतीजे में इस त्यौहार में शिरकत के लिए आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता रहा है। इस साल भी खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी देने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिला। स्थापन के अंदर और बाहर आज खासी रौनक और चहल पहल रही। मकामी मुसलमान बाहर से आए कश्मीरी पंडित भाइयों का वालेहाना इस्तकबाल करते नजर आए और हस्ब रिवायत इनको इस अहम मौके पर पूजा के लिए दरकार फूल और दूध वगैरह फराहम करते रहे। मेला खीर भवानी नामसाइद हालात से कश्मीरी पंडितों और वादी के अक्सरीती तबके के माबैन पैदा हुई दूरियों को कम करने का एक वसीला रहा है और स्थापन पर इस साल का मंजर भी यही जाहिर कर रहा था कि हालात की सितमजरीफी से पैदा शुदा इन दूरियों को खत्म करने का जज्बा दोनों तबकों में तकवियत पा रहा है। खीर भवानी मेले के मौके पर कुपवाड़ा और कुलगाम जिले के स्थापनों पर भी आज तकरीबात मुनक्कद हुई। इन तकरीबात में अकीदतमंदों की भारी शिरकत और मकामी लोगों का इनके तई खैर सगाली का जज्बा मुस्तकबिल के हवाले से खुशायंद इम्कान को उभार रहा है। तकरीबात में शामिल हिंदू अकीदतमंदों ने इस मजहबी त्योहार के मौके पर उन्हें सहूलत पहुँचाने और ताउन देने के लिए मकामी आबादी के जज्बे की सराहना की और वादी में दायमी अमन और भाईचारे की फजा की मुकम्मल बहाली की तमन्ना का इजहार किया। बहरहाल कश्मीर सदियों से मजहबी रवादारी और इंसानी कदरों की सरबुलंदी की सरजमीन रही है। 1990 में शुरू हुआ तशद्दुद और तोड़फोड़ का दौर सभी कश्मीरियों का एक अफसोसनाक अलमिया रहा है। अब जबकि अमन और मामूलात लौट रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि भाईचारा और रवादारी की पहली जैसी फजा कायम करने की हर तरफ से सरगर्म कोशिश की जाए। मेला खीर भवानी जैसे त्योहारों का ऐसा इनकाद इस अहम मंजिल की जानिब पेशकदमी का मजहर है और हम सबको इस मंजिल के हुसूल के लिए मुखलिसाना कोशिशों में सूरत लानी चाहिए। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ। इजाजत दें, शब बखैर।
8: मीडिया 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
9: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: प्रोग्राम वादी की आवाज़ सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से खलूस भरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बखैर वाफियत होंगे। बात करते हैं हमसाया मुल्क पाकिस्तान की। समीन, अब दुनिया पर यह बात वाजह हो चुकी है कि पाकिस्तान जिस मकबूज़ा ख़त्ते को आज़ाद कहता आया है, उसे दरअसल पाकिस्तानी हुकूमतों ने सदियों से गुलामी की शदीद और अज़ियतनाक जंजीरों में जकड़ कर रखा है, और वो भी वहाँ के आवाम की मर्ज़ी के बिल्कुल खिलाफ और बरक्स। असल में पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लुगत में एक लिसानी बेज़ाब्तगी है, जहाँ लफ्ज़ आज़ाद का अमली तौर पर तर्जुमा मकबूज़ा में होता है। चनाच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मकबूज़ा ख़त्ते में आज़ाद की तारीफ पूरी तरह से पलट दी है। पाकिस्तान ने बाज़ाबता तौर पर कश्मीर के उस हिस्से को ब्रांड किया है जिस पर वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के तौर पर काबिज है। ताहम करीब से देखने से तंज में एक मास्टर क्लास का पता चलता है। इस्लामाबाद की सियासी लुगत में आज़ाद का मतलब दरअसल ज़ीरो खुद मुख्तारी दी गई है, जिसने एक नामनिहाद आज़ाद इलाके को एक मकबूज़ा इलाके में तब्दील कर दिया है। मयारी उर्दू में आज़ाद आज़ादी की खुशगवार हालत को जाहिर करता है। ताहम जब पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के इलाके पर लागू होता है तो ये लफ्ज़ ड्रामाई तब्दीली से गुजरता है। इंतजामात की तंजिया चमक इंतखाबी अमल से शुरू होती है। AJK के ख्वाहिशमंद रहनुमाओं को एक सख्त नज़रियाती हलफ पर दस्तखत करने की शर्त रखी गई है, जो न सिर्फ रियासत से बल्कि इसके पाकिस्तान के साथ इल्हाक की वफादारी पर भी दस्तखत करने पर उन्हें उनकी मर्जी के बरक्स मजबूर करती है। हकीकी तौर पर आज़ाद या आज़ाद रियासत का ख्वाब देखने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर दरवाज़ा दिखा दिया है। समीन, असल ताकत पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में कश्मीर कौंसल के ज़रिए खामोशी से बहती है। मकामी क़यादत को शाहाना सरकारी अशाया की मेज़बानी की आज़ादी हासिल है, जबकि इस्लामाबाद को बजट, खारजा पॉलिसी, दाखिली सलामती और इजहार राय की आज़ादी के हक को किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है के इंतज़ाम का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इस तरह पाकिस्तान के अपने गैर कानूनी कब्ज़े वाले कश्मीर के इलाके के साथ ताल्लुकात सियासी हथियार डालने की एक लाजवाल हुक्मरानी को साबित करते हैं। इस्लामाबाद के ख्याल में हकीकी आज़ादी कभी ये सवाल नहीं करती कि असल में शो कौन चला रहा है। यहाँ के अवाम ने अक्सर खुद को क्रशिंग टैक्सों, बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बेतहाशा नरखों के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखा है, लेकिन एक गैर माकूल मोड में जब एक आज़ाद खित्ते के शहरी सस्ती गंदम और सस्ती बिजली के लिए मार्च करने का अपना बुनियादी जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं तो इस्लामाबाद की तरफ से रद्दअमल बहुत ज़्यादा फौजी होता है। पुरअमन एहतजाज के नतीजे में पुरतशद्दुद क्रैकडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट और नीम फौजी दस्तू की तैनाती हुई है। मुआशी रिलीफ के मुतालबे को इस्लामाबाद आज़ाद शहरियों की शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि अपने इख्तियार की शदीद तोहीन समझता है। चुनाचे पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर अब बड़े पैमाने पर मुजाहरों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के वहशियाना सिक्योरिटी क्रैकडाउन के बाद मुहल्लिक शहरी बदमनी की लपेट में है। रवां माह के अवाइल में तशद्दुद में तेजी से इजाफा हुआ जब इलाकाई हुकाम ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी लगा दी, जो सिविल सोसाइटी का

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। समी प्रोग्राम में बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस खुशफहमी में अब तक मुब्तला था कि अमेरिका उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। दर हकीकत पाकिस्तान के इसी हर मौसम के दोस्त ने इस्लामाबाद को अचानक चौंका देने वाली हकीकत से टकराया है, जिससे पाकिस्तान का दफ्तर खारजा शदीद सदमे का शिकार और मुकम्मल तौर पर हैरान रह गया है। दरअसल कई दहाइयों तक पाकिस्तान ने इस खुशफहमी को पाला कि वाशिंगटन के साथ इसके ताल्लुकात एक लाजवाल रोमांस थे। ये सरजंग की आग में जालसाजी का बाण था जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान तैयार किया गया था और इसे अरबों डॉलर के इमदादी फंड से बरकरार रखा गया था। समीन एक वक्त ऐसा भी था जिसका ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब पाकिस्तान ने सफारती फतह का जश्न मनाया, जब अमरीकी महकमा खारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और इसके मौलिक खुदकुश विंग मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नामजद किया है। पाकिस्तान ने अपने देरीना दावों में साबित किया कि ये अलहदगी पसंद ग्रुप दर हकीकत दहशतगर्द हैं, लेकिन जैसे ही सफारती सियाही खुश्क हुई, हर मौसम की दोस्ती का वहम जल्द ही अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में एक तलख सबक की शक्ल में जियोपॉलिटिकल हकीकत की जांच पड़ताल का निशाना बना। अपने इंसदाद दहशतगर्दी की हिटलिस्ट को ग्लोबलाइज करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड को अक्वामे मुत्तहिदा की 1267 की दहशतगर्दी की पाबंदियों के निजाम के तहत ब्लैक लिस्ट करने की करारदाद पेश की थी। सफारती ब्रीफकेस भरे हुए थे, आतिशें तकरीरों की रिहर्सल हो रही थी और फतह के लड्डू मंगवाए जाने वाले थे। इस्लामाबाद ने फर्ज किया कि वाशिंगटन वफादारी के साथ यकजहती के लिए अपना हाथ उठाएगा। इसके बजाय अमेरिका ने जियोपॉलिटिकल गोस्टिंग में एक मास्टर क्लास पेश किया, जिससे करारदाद को ठंडा पड़ना पड़ गया। अमेरिका ने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर सितंबर 2025 में इब्तदाई तौर पर इस तजवीज पर 6 माह की तकनीकी होल्ड रखी थी। बाद में इस होल्ड में मजीद 3 माह की तौसी कर दी गई। फिर 5 जून 2026 को पाकिस्तान को शदीद झटका देते हुए अमेरिका ने अक्वामे मुत्तहिदा की 1267 दहशतगर्दी की पाबंदियों के निजाम के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड को ब्लैक लिस्ट करने के लिए पाक चीन मुश्तरका तजवीज को बाजाबता तौर पर रोक दिया। एक ही झटके में अमेरिका ने यह जाहिर कर दिया कि इसकी खारजा पॉलिसी हर मौसम के इतिहाद के जज्बाती तस्वुरात से रहनुमाई नहीं रखती, बल्कि ये सख्ती से मौसमी बुनियादों पर काम करता है। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी हुकाम ने बाजाबता तौर पर बताया कि BLA और मजीद ब्रिगेड दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिन्हें इलाकाई दहशतगर्दी को हवा देने और पाकिस्तान के अंदर हमले करने का काम सौंपा गया है। नई दिल्ली ने इसके मुखालिफ यह दलील दी कि यह करारदाद उसके मुखालिफीन की तरफ से हकीकी इंसदाद दहशतगर्दी के बजाय जियोपॉलिटिकल एजेंडों को आगे बढ़ाने की कोशिश थी। भारत की तरफ से फराहम करदा शवाहिद की हिमायत में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इस करारदाद को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने से पहले तकनीकी तौर पर रोक दिया। इस तरह अक्वामे मुत्तहिदा के 1267 के ओहदे को बाजाबता तौर पर रोक कर उन मगरबी ताकतों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बयानी को मुस्तरद कर दिया। ये फैसला इलाकाई दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के हवाले से बढ़ती हुई अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की निशानदेही करता है, जिससे नई दिल्ली में पाकिस्तान की तरफ मुमकिन अमरीकी झुकाव के बारे में पेश की

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। समीन, अब बात करते हैं अपने मुल्क भारत की। आलमी माशियत और मौसमियाती तब्दीली से लेकर सलामती और सफारतकारी तक हिंदुस्तान का किरदार इतना बढ़ गया है कि बड़े बैन अल-अक़वामी फैसले इसकी शमूलियत के बगैर तश्कील पाना मुश्किल होता जा रहा है। जाहिर है कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन गया है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरों ने इस बात को और ज़्यादा तकवीत बख्शी कि भारत अब बड़ी बड़ी ताकतों का बेहतरीन दोस्त बन रहा है और आलमी अमन तनाज़ात के हल और मसाइल का अजाला करने की बैन अल-अक़वामी बरादरी की कोशिशों में भारत का रोल नाकाबिल फरामोश बन गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई दहाइयों

0: आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज़, यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हो रहे हैं। आप पेश हैं खेलों से मुतालिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम से पहले एक वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आगाज में एक नजर डालते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल से जुड़े चंद अहम और दिलचस्प नतीजे पर। पिछले हफ्ते के दौरान एक छोटे से मुल्क कैबो वर्डी ने वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपना डेब्यू बेहद शानदार अंदाज से करके दुनिया के करोड़ों शायकीन फुटबॉल की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की थी। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के इब्तदाई मुकाबले में इसने साबिक आलमी चैंपियन और मौजूदा वर्ल्ड कप की एक बेहद फेवरेट स्पेन को गोल करने का मौका फराहम नहीं किया था। कैबो वर्डी के गोलकीपर वर्जी ने करीबन 26 मरतबा गेंद को गोल पोस्ट में जाने से रोक दिया था। यूं इस मुकाबले में कैबो वर्डी ने स्पेन के साथ मैच ड्रा करके वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक तारीखी पॉइंट हासिल किया था। कई एक तजियाकारों का ख्याल था कि दरअसल गोलकीपर के बेहद शानदार खेल के बायस ही ऐसा मुमकिन हो पाया, लेकिन इस हफ्ते के दौरान इस टीम ने इस तासुर को गलत साबित किया।

0: या इस हफ्ते के दौरान बल्कि कल ही खेले गए मुकाबले में इसने यूरोगाय के खिलाफ भी मैच ड्रा रखा। तहम इस बार स्कोर लाइन 0-0 नहीं बल्कि 2-2 गोल की रही, जिसका मतलब यह है कि अपने ग्रुप एच में इसने दो साबिक आलमी चैंपियन और दुनियाई फुटबॉल की दो बड़ी टीमों को मैच जीतने नहीं दिया। यूं इसने साबित कर दिया कि दिफाई एतबार से ही नहीं बल्कि ये टीम किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ हमला आवर होने की सलाहियत भी रखती है। दरअसल यूरोगाय के खिलाफ कैप वर्डी ने ही पहला गोल स्कोर किया। केविन पीना की जानिब से स्कोर किया गया ये गोल इस मुल्क का वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में स्कोर किया जाने वाला पहला गोल भी था। ग्रुप स्टेज के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में अब इसके सामने निस्बतन एक कमजोर टीम सऊदी अरब है। इसे हराकर या फिर इसके साथ मैच ड्रा करने की सूरत में इसके दूसरे राउंड में जाने के इम्कान भी मौजूद हैं। इस तरह का एक और बेहद दिलचस्प मुकाबला कल ही खेला गया। इसमें एक नव आमोज गैर मारूफ और बेहद छोटे से मुल्क से ताल्लुक रखने वाली टीम क्यूरासाओ को अपने ही बरअज़म यानी जनूबी अमरीका से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी टीम इक्वेडोर के साथ आमना सामना था। ग्रुप एच का यह मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। यूं महज 1.5 लाख की आबादी रखने वाले इस मुल्क ने भी वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 में अपना पहला और तारीखी प्वाइंट जीतने का शर्फ हासिल किया। ये एक और मुकाबला था जिसमें गोलकीपर के जरिए से एक गैर मारूफ और बेहद छोटे मुल्क की टीम ने तारीख रकम की। इस मैच के हीरो रहे क्यूरासाओ के गोलकीपर इलॉय रोम, जिसने कुल मिलाकर 15 सेव्स किए। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 तारीख का पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें 48 टीमों को शामिल किया गया है, जिसके बायस कई एक छोटे और गैर मारूफ ममालिक की टीमों को इसमें खेलने का मौका फराहम हुआ है। ताहम इस तरह की सभी टीमों ने अपने डेब्यू के दौरान ही न सिर्फ बेहद मुतासर किया है बल्कि इस तरह की करीबन सभी टीमें पॉइंट हासिल करके तारीख रकम करने में भी कामयाब रही हैं। ताहम अगले स्टेज के दौरान असल मुकाबला आरआई उन्हीं ममालिक की टीमों के माबाइन देखने को मिलेगी जो फुटबॉल की बड़ी टीमें तस्वर की जाती हैं, जिनकी वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक अलग पहचान है। ये कौन सी टीमें हो सकती हैं? बात कर रही है ऐना शबीर।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया भर में फुटबॉल के शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। टूर्नामेंट के इब्तदाई मुकाबलों ने न सिर्फ सनसनी खेज फुटबॉल पेश की है बल्कि मुख्तलिफ टीमों की असल ताकत, कमजोरियों और इम्कानात को भी नुमाया किया है। अगरचे अभी फाइनल मराहिल तक पहुंचने में वक्त बाकी है, ताहम बाज टीमें अपनी कारकर्दगी, हिकमत अमली, खिलाड़ियों के मयार और जहनी मजबूती की बुनियाद पर वाजिया तौर पर दूसरों से मुमताज दिखाई दे रही हैं। इब्तदाई नताइज ये इशारा दे रहे हैं कि इस बार टाइटल की दौड़ सिर्फ रिवायती बड़ी टीमों तक महदूद नहीं बल्कि चंद उभरती हुई टीमें भी अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर रही है। हर टूर्नामेंट में वही टीमें आगे बढ़ती है जो मुसलसल अच्छी कारकर्दगी, नज्म व ज़ब्त और मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। यही वजह है कि इब्तदाई मरहले में मजबूत दिखाई देने वाली टीमें भी बाज़ औकात नॉकआउट मरहले में दबाव का शिकार हो जाती है, जबकि कम तवज्जो हासिल करने वाली टीमें हैरान कुन नतीजे देकर सबको चौंका देती है। जर्मनी भी एक मर्तबा फिर अपनी रिवायती ताकत के साथ मैदान में मौजूद है। जर्मन टीम की सबसे नुमाया खूबी इसका नज्म व ज़ब्त और मुकाबले के आखिरी लम्हे तक लड़ने का जज्बा है। इब्तदाई मैचों में जर्मनी ने जिस एतमाद और जारहाना अंदाज का मुजाहिरा किया है, इससे वाजिया होता है कि वो सिर्फ शिरकत के लिए नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से आया है। टीम के खिलाड़ी जिस्मानी तौर पर मजबूत, तकनीकी तौर पर पुख्ता और जहनी तौर पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। यूरोगॉय भी इन टीमों में शामिल है जो खामोशी से अपनी ताकत का इजहार कर रही है। अगरचे आलमी मीडिया की तवज्जो अक्सर यूरोपी ताकतों पर मरकोज रहती है, लेकिन यूरोगॉय अपनी रिवायती सख्त मिजाजी जारहाना सोच के साथ खतरनाक हरीफ साबित हो रहा है। जापान ने भी अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए साबित किया है कि एशियाई फुटबॉल मुसलसल तरक्की कर रहा है। जापानी टीम का नज्म व ज़ब्त, फिटनेस लेवल और इज्तिमाई खेल इसे दीगर टीमों से मुमताज बनाता है। जापान की सबसे बड़ी ताकत इसकी जहनी मजबूती है। मुश्किल हालात में भी खिलाड़ी घबराने के बजाय मुनज्जम अंदाज में खेल जारी रखते हैं, जो किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी अंसर समझा जाता है। बेल्जियम अपनी तकनीकी महारत और इनफरादी सलाहियतों की वजह से अब भी खतरनाक टीमों में शुमार हो रहा है। اگر ٹیم اجتماعی کھیل پر توجہ

0: चलते हैं। इनका ताल्लुक तमिलनाडु और भारतीय नजाद ऑस्ट्रेलियाई खानदान से है। इन्हें फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम में शामिल किया गया था, जिसके बाद वो ये तारीखी एजाज हासिल करने वाले तमिल वर्षे के पहले खिलाड़ी बन गए। वो 5 मई 2001 को ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में पैदा हुए और मकामी क्लब मेलबोर्न विक्ट्री से वाबस्ता हुए। असल में इनका ताल्लुक मलेशियन श्रीलंकन तमिल बाप और एंग्लो इंडियन माँ से है और इन्हें वर्ल्ड कप 2019 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। सैमुएल मोतोसामी फुटबॉल की दुनिया में एक और भारतीय नजाद नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। ये तजुर्बाकार खिलाड़ी मिडफील्डर जमहूरिया कांगो की टीम का हिस्सा है। इनके वालिद का ताल्लुक इंडो गोरियलो पीन तामिल से है। ये एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है जो डिफेंसिव मिडफील्डर की हैसियत से खेलते हैं। फ्रांस में इनकी पैदाइश हुई, लेकिन बैन अलाकामी सतह पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी पैदाइश 12 अगस्त 1996 फ्रांस में हुई। कद 5 फुट 9 इंच, जबकि बाएं पांव से खेलना पसंद करते हैं। इस वक्त एफसी यूनानी सुपर लीग एट्रोमाटूस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा फ्रांसीसी क्लब नांटस के साथ गुजारा। 2017 से लेकर 2024 तक खेलते हुए 100 से ज्यादा मैचेस खेले और 2021-22 का कोपे डी फ्रांस टाइटल भी जीता। मोतोसामी पहली बार 2019 में डीआर कांगो की कौमी टीम का हिस्सा बने। भारतीय नजाद के एक और उभरता हुआ फुटबॉल खिलाड़ी तहसीन मोहम्मद जमशेद है। ये एक उभरते हुए नौजवान फुटबॉल फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक रखते हैं। इसके बावजूद बैन अल-अक़वामी सतह पर कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी करके तारीख रकम की है। इन्हें कतर के कोच लोपीटो गोई ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर की कौमी टीम में शामिल किया, जिससे वो इस आलमी मुकाबले में खेलने वाले अव्वलीन मलयाली केरला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी बन गए। तहसीन मोहम्मद जमशेद पहले इंडियन नजाद खिलाड़ी हैं जिन्होंने कतर की जर्सी नंबर 3 पहनकर बैन अल-अक़वामी सतह पर फुटबॉल खेला है। बैन अल-अक़वामी सतह पर वो चमकने से पहले कतर स्टार्स लीग के मारूफ क्लब की नुमाइंदगी कर रहे थे। जमशेद इन चंद हिंदुस्तानी पैदावार खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने दूसरे मुल्कों की तरफ से खेलकर फीफा वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल कर ली है। तहसीन टीम में बतौर विंगर खेलते हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी गेंद पर शानदार कंट्रोल और तेज रफ्तारी समझी जाती है। सन 2024 में इन्होंने कतर स्टार्स लीग में कदम रखा और इंडियन नजाद पस मंजर रखने वाले पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इस लीग में खेलने का एजाज हासिल किया। सन 2024 में फुटबॉल के हलकों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तहसीन को कतर की सीनियर कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया। तहसीन का नाम उस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया जब इन्हें कतर के फीफा वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया। खैर, रोजमर्रा के मुशाहदे से वाजे हो जाता है कि एक मेहनतकश खिलाड़ी न सिर्फ अपना बल्कि अपनी कौम और मुल्क की इज्जत और वेकार को बुलंद कर देता है।
1: आज की स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
2: स्पोर्ट्स टाइम।
3: आप खेलों से मुतल्लिक प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। स्पोर्ट्स टाइम प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक।

0: मीडियन 268 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। रात के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह, DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिदर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना

0: से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली

0: गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। इसे आकाशवाणी श्रीनगर रोज संज 9 बजे सेमिनार से मिला खीर भवानी मनानी वन तो आत्मोकस पर बोझो के खीर भवानी लीला बड़ बोझो कैलाश मेरा तो धनंजय कोल तो सतीन आवाज मस कला में गुलाम रसूल संतोष।

0: Tu yesiu Lila Bozan, yos kalami piyandar fani, peşis karan ecaz rahatı sati. Mijin 268 aşeriya 8 meter yani 1116 kilohertz aur FM 103 aşeriya 5 megahertz par ya Akashvani Srinagar ki awaz hai. Raat ke 9:15 ho rahe hain. Aiye ab Akashvani Delhi se Urdu mein khabrein sunte hain.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना UBT के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफ़ुज़ाती निज़ाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैम्पियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाक़ एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्म

0: पुत्र अख नसीहत करे यूथ फिर लाइन सफर कर
1: क्रेन बाज मुंद मया मोल छी पोज बनान तिम हालात रुइत न शाम बांग सती।

0: ये क्या वानान?
1: सर, सुपारी जुमला, टीच योर डॉटर्स टू से नो लाउडली क्लियरली एंड विदाउट अपॉलॉजी. ये छ प्रथ तस मैलिस नसीहत यमिस बालियन कोर गरस मजास जे सुकरि पन्नी कोरि तिस तरबियत त्युत हौसला त हिम्मत दियस युत तेमसंस कोर प्रथ नाकार अमले जुरतमंदी सान करने निश इनकार कर तस कुन अगर जहका गलत नजर त्रावि सो कूर गच तस पन्न किरदार तो गुफ्तार सच सबक हिचनाव कूर गच न वल बोल
0: वल मतलब
1: वल मतलब गो कंस बहकावस मज यून तिजन गो कंस गैर महरम जवानस निश पनुन दामन बचाव पन नजर साफ थाव गलत तो हराम कार करने निश पथ रोज ती गो एन ओ नो नो वन
0: ओके आई गॉट इट
1: पीपल ट्रीट यू एग्जैक्टली हाउ दे फील अबाउट यू सो डोंट बी ब्लाइंड
0: वैसली लोग चाहे किस जवान कोरी मुतालक ती सोचा ये तस अमल आस यू सा करान आस तमसिन हरकात चे तमसिन खुल किताब
1: ये थे पर्चे किस जवान सिन मामलात ता हरकात तमसिन बिहेवियर यानी तमसिन चालो चलन बयान करा
0: कोरियो खत चे लड़कन में जहनी अफरा तफरी दो खुदा बढ़ान अक्सर वालदेन चे पाने निजवन पर नाराज अक्सर मल चे शिकायत करान जे तिमन चे पाने अवलाद बुझ फिर कचान
1: अवै गन वालदेन शुर पान पठे पन्न अवलादन सही तरबियत दिन
0: वारिया मल माज बुजरस मज डिप्रेशन शिकार गसान
1: अवै छु ज्याद खत ज्याद कुतुब खानन हुंद आसुन जरूरी ताकि जवान कोरी लड़का आसन पनुन फालतू वक आवार गर्दी करने बजाय यमन कुतुब खानन मज खर्च करा
0: नो मैटर हाउ गुड यू आर बट व्हेन यू आर ए रॉन्ग प्लेस यू आर वर्थलेस
1: बिल्कुल सही कूतह तो जान इंसान ऐसन अगर सो गलत जाय आसे तिम सिंस कैबिलियत छ जाय गथा
0: खुश आयंत

0: गीतों का प्रोग्राम होता था कोई, मुझे तो अब नाम भी याद
1: आपकी
0: नहीं।
1: पसंद मेरी पसंद,
0: कुछ इस तरह
1: ही
0: का प्रोग्राम,
1: इस तरह का ही प्रोग्राम
0: था।
1: हाँ,
0: लेकिन मेरा जो लहजा था वो निस्बतन बेहतर था,
1: सही सही,
0: और
1: सही।
0: मेरी प्रोनाउंसिएशन भी निस्बतन बेहतर थी, ये शायद मैं कर सकता था ये
1: ठीक।
0: लेकिन ये है कि पहली बार जब आप माइक्रोफोन पे जाते हैं तो माइक्रोफोन आपको यू नो एक देव जैसा लगता है, यू नो, तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे इसके साथ आप यू कांट टेक चांसेस विद इट, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। मैं दूरदर्शन में पहले तो मैं एंकर करता था, फिर उनने कहा नहीं आप इंटरव्यूज कीजिए,
1: ठीक।
0: तो फिर इंटरव्यूज करना एक सबसे मुझे लगता है मुश्किल काम है।

0: धीरे धीरे धीरे धीरे इसके साथ आप यू कांट टेक चांसेस विद इट, यू कैन नेवर टेक चांसेस विद इट।
1: सही सही।
0: मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। मैं दूरदर्शन में पहले तो मैं एंकर करता था, फिर उनने कहा नहीं आप इंटरव्यूज कीजिए।
1: ठीक।
0: तो फिर इंटरव्यूज करना एक सबसे मुझे लगता है मुश्किल काम है, जब तक ना आप इसको क्रैक नहीं करते, आपने क्या सवाल पूछना है, किस तरह से, कितने सवाल आपने, कितना आपने बोलना है। तो हमारे एक नए नए एक खिलाड़ी थे, वो U21 गए थे इंडियन टीम में।
1: ठीक।
0: तो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने लॉ किया हुआ था। तो जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो ही वॉज मतलब सो फ्लुएंट थे वो, बोलते थे वो। आपको पता है उस जमाने में जो कैमरे हुआ करते थे टेलीविजन के, वो बहुत बड़े बड़े बड़े होते थे।
1: सही सही। कट नहीं लगता था।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कट नहीं लगता था। 25 मिनट प्रोग्राम आपने किया, अगर आपने गलती की ना, इस तरह से आपको फिर से करना।
0: तो हुआ यूं कि वहां बहुत भरमा रहती थी, एक रिकॉर्डिंग दूसरी रिकॉर्डिंग, वो कह रहे यार खत्म करो जल्दी जल्दी से। ये हुआ था कि जो हमारे रिकॉर्डिंग थी उससे पहले जो प्रोड्यूसर थे उनने प्रोग्राम किया, उन्होंने और शूट किया था।
1: Okay.
0: तो अब हमारा जो टाइम था वो बहुत कम था,
1: कम था।
0: तो शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप, चूंकि ये अच्छा सेगमेंट है तो आप शुरू कीजिए। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया उन्हें, मैंने कहा ये हैं, अच्छा जो बताएं कि अब आप सिलेक्ट हो गए। वो एक हर्फ में जो 1971,
1: अच्छा,
0: और मेरे जितने भी 13-14 क्वेश्चंस थे वो एक मिनट में खत्म हो गए। अच्छा। तो फिर वहां से आवाज आई, मैं सुन रहा था
1: पैनल पे जो बैठे,
0: हाँ, जो जो फ्लोर मैनेजर थे उनको बता रहे थे कि ये करो ये खत्म करो। उन्होंने मुझे पहले तो मैं खत्म किया, मैंने देखा, उन्होंने कहा यू कंटिन्यू। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर आपने मुझसे कहा था कि आप जब वहां गए थे फिर ऐसा हो गया था ऐसा। अब मैं खुद ही सवाल भी कर रहा था, जवाब भी खुद दे रहा था। तो इस तरह से वो पूरा सिचुएशन हो गया। और जब खत्म प्रोग्राम हो गया, जब वो नीचे उतरे, वो शौक के बाहर तब आ गए थे, वो इतना रो रहे थे, वो कह रहे थे उनसे कि आप फिर से कर लो, ये मुझे पता नहीं क्या हो गया। आपको पता है वो करते थे 10 seconds to go, 9, 8, 7 और फिर फॉर द रिकॉर्डिंग, और फिर वो जो ऐसे करते थे, हाथ दिखाते थे। तो फिर काफी सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि ऐसे कई चीजें हुई हैं। एक बार हम प्रोग्राम लाइव करते थे टेलीविजन में, तो हुआ यूं कि मैं एंकर कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मेरी जगह मॉनिटर पे वो जो एक टेबल होता है वो है। वो क्या हुआ था, उसका मॉनिटर फेल हो गया, एक कैमरे का, तीन कैमरे होते थे। तो मैंने फौरन कहा कि कैमरा टू यू गो टू द एंकर। तो वो मेरे पास आए, अब वो मेरे पास थे, अब एंगल चेंज हो गया, तो मैं थोड़ा सा मुड़ के मैं बता रहा हूँ उसको ऐसे ऐसे, तो वो भी फेल हो गया। आप देखिए क्या अनहोनी है। तो फिर तीसरा जो कैप्शन पे था एक कैमरा, उसको फिर हटा के, फिर लाइव प्रोग्राम था, यू हैड टू डू इट। तो वैसे भी हमने प्रोग्राम्स किए, और ये भी था कि उस जमाने में फिल्म होती थी,
1: सही सही,
0: 200 फीट की फिल्म होती थी या 400 फीट की फिल्म, वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी।
1: बिल्कुल सही।
0: तब चूंकि फिल्म पे ही शूट होता था, तो हम जाते थे पोलो ग्राउंड में या कहीं, तो वहां वो शूट होता था, वहां से आता था, तो वो लैब में चला जाता था। लैब में जब वो डेवलप हो जाती थी फिल्म, तो वो बहुत गर्म गर्म होती थी फिल्म, और उसको हम ले जाते थे फिर एडिटिंग पे। वो मैनुअल एडिटिंग होती थी उसमें, और ये नहीं पता था कि अब क्या है किसका, मैं ये पता क्रोनोलॉजी ये है, ये क्रोनोलॉजी है। तो फिर वो लाइव चलता था और हमें लाइव उसके पीछे बोलना पड़ता था। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बहुत चैलेंजिंग था और बहुत मजा आता।
1: और रेडियो में भी आपने लाइव प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स किए। जब आप रेडियो में आए, मुझे याद है जब आप टेलीविजन पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंकर किया करते थे और इंटरव्यूज किया करते थे, मैं अपनी जाती राय बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब मैं आपको वॉच करता था। उसके बाद आप रेडियो आए, रेडियो में भी लाइव प्रोग्राम किए, कितना डिफरेंस महसूस हुआ आपको टेलीविजन के स्टूडियोज और रेडियो के स्टूडियोज में?
0: देखिए, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। हमारे यहाँ एक अनाउंसर हुआ करती थी सूरज साहिब,
1: जी जी,
0: वन ऑफ द फैंटास्टिक ब्रॉडकास्टर्स। वो करती थी आपकी फरमाइश, आपको पता है निजामी साहब किया करते थे वो प्रोग्राम, और फिर वो करती थी। वो क्या करती, वो उतनी कॉन्फिडेंट थी, वो कोई तैयारी नहीं करती थी, वो ऐसे खत उठाती थी, पढ़ती थी, शेर पढ़ती थी, ट्रमेंडस कॉन्फिडेंस था उसमें। फिर ये हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि वो चली गई छुट्टी पे, ये प्रोग्राम मुझे दिया गया। तो मैंने कहा कि अगर ये कर सकती है, मैं थोड़ी सी जबान भी जानता हूँ। जब मैंने गया तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आई शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग। तो फिर मैंने जैसे तैसे वो प्रोग्राम किया, लगा नहीं किसी को, लेकिन मुझे बहुत ये बहुत अंदर से मुझे महसूस हुआ कि नहीं
1: मुझे।
0: फिर उसके बाद एक होता था कि मैं बहुत तैयार होके आता था। एक और बड़ी दिलचस्प बात है,
1: जरूर,
0: जो एक कॉम्प्लीमेंट था, मैं जब

0: रीजनल अनुसार आया तो मैं सीबीएस में आता था
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग
0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर। तो वहाँ एक प्रोग्राम होता था सुबह, पता नहीं उस प्रोग्राम का नाम क्या था, 20 मिनट का होता था प्रोग्राम और
1: लोकल प्रोग्राम हुआ करता,
0: उसमें 6 दिनों के लिए। अच्छा, वो नॉर्मल होता था, फिल्मी नगमों का प्रोग्राम होता था,
1: ठीक।
0: और जुमे के रोज उसमें
1: डिवोशनल
0: सॉन्ग
1: दिया जाता था,
0: बिल्कुल। तो जनाब अब मेरी थर्सडे को ड्यूटी थी, तो थर्सडे को मैंने प्रोग्राम किया और बहुत ही जैसे मैं उन दिनों में करता था, बहुत वो रोमांटिक सा वो स्क्रिप्ट होता था और मैंने प्रोग्राम किया। तो सुबह जब आया तो निजामी साहब ने कहा,
1: मोहम्मद बिन निजामी साहब
0: हमारे गुरु रह चुके हैं, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कहा बहुत जबरदस्त प्रोग्राम तुमने किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब वो उस जमाने में उनका कहना मेरे लिए ये बहुत बड़ी ट्रॉफी
1: अवार्ड था, ये
0: बहुत बड़ी ट्रॉफी,
1: बिल्कुल सही।
0: तो वह क्योंकि दूसरे दिन भी मेरी ड्यूटी थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि दूसरे दिन अब डिवोशनल प्रोग्राम करना था, तो मैंने डिवोशनल प्रोग्राम किया। लेकिन जब मीटिंग खत्म हो गई तो मुझे कह रहे थे कि निजामी साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मर गए, आज शायद मुझसे कोई गलती हो गई और वो मेरे कान खींचे, क्योंकि निजामी साहब को मैं जानता था, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे,
1: सही सही,
0: ज्यादा तो खैर नहीं जानता था, लेकिन मुझे पता था वो वहीं रहते। तो बहुत अदब था बेहद, और वो पर्सनालिटी और उनका ऑरा बहुत डिफरेंट था। मैं डरते रहे, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो आए, मुस्कुराने लगे, कहा ये स्क्रिप्ट किसने लिखा था। मैंने कहा सर कोई गलती होगी, स्क्रिप्ट मैंने ही लिखा था। से कहा नहीं, लेकिन तुम इस उम्र में कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हो।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा शायद कुछ इसमें और गलती हुई है, ऐसे नहीं कहते। कहा नहीं, बहुत अच्छा था वो जो कल था, वो एक अलग आदमी था, ये जो आज है ये अलग आदमी था, उन्होंने मुझे बोसा दिया मेरे माथे पे। दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रॉफी दैट आई हैव।
1: और कौन सी शख्सियत रेडियो की थी जिनको आप सुना करते थे या जिनको सुन सुन कर आपने बोलना सीखा?
0: यहाँ सबका अपना अपना अंदाज था। प्राण चंद्रा थे हमारे बहुत अच्छे, और सबसे जो बेहतरीन ब्रॉडकास्टर जो मैंने पूरी दुनिया का रेडियो सुना है
1: जी,
0: लेकिन मनोहर परोती साहब ऐसे वर्सटाइल ब्रॉडकास्टर थे, ऐसे वर्सटाइल ब्रॉडकास्टर मैं आपको कह नहीं सकता, मैंने देखा उन्हें। आप उनको सुबह बोलें, आप शुरू करें, ही वुड नॉट गेट टायर्ड, वो 8 घंटे भी बोल सकते थे और रेलेवेंट बोल सकते थे। उनको जुबान पे इतना कंट्रोल था और वो जो बोलते थे वो बहुत शगुफ्ता जबान वो बोलते थे। ही इज वन पर्सन जिसने, हालांकि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में जिसकी वजह से वो बाद में बहुत प्रॉब्लम, बट एज अ ब्रॉडकास्टर आप उनके ड्रामे सुने, मैं सुना करता था यहाँ,
1: सही सही सही,
0: ड्रामे सुना करता था। मैं आपको एक इस पे एक और किस्सा सुनाता हूँ। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो नाजगी साहब डायरेक्टर थे, तो चूंकि वो यही रहते थे, फिर शाम को उन्होंने फोन किया, जब मैंने सलाम की तो कहा तुम ड्यूटी पे? मैंने कहा जी। कहा मैंने इससे कहा लाइब्रेरियन से कि आर्काइव्स उसने रखी है चाबी? मैंने कहा जी रखी है। तो कहा वहां देखो और कोई ऑटम पे खिजां पे कोई फीचर है तो वो आप निकालो और उसको लोड करो, मैं सुनने के लिए आऊंगा ऊपर। तो मैं गया, मैंने उसकी जो किताब है वो खोली, देखा, मैंने एक मैं उठाया, मैंने उसका क्यूशिट भी नहीं पढ़ा, मैंने उठ के वो नंबर 1 में लोड किया। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद आए और कहा चलो, मैं गया और मैंने वो ऑन किया। आप यकीन करें कि 3-4 मिनट की उसकी ओपनिंग थी, मैं भी हक्का बक्का रह गया, वो भी हक्के बक्के रह गए।
1: वो मनोहर प्रोथी की आवाज में,
0: वो मनोहर जी की आवाज में था, और यू कैन नॉट बिलीव इट द वे ही हैड रेंडर्ड इट, अनबिलीवेबल। और उसका स्क्रिप्ट इतना जबरदस्त था। अब उस दौरान मैंने उसका क्यू शीट उठाया था हाथ में। अच्छा। देखा ये मुझे पूछ रहे हैं याचू बड़ जबरदस्त। मैंने कहा हाँ बहुत जबरदस्त है, ये क्यों लिखो? मैंने मुझसे या तो तुम दी ना, ये आपने लिखा है?
1: फारूक नाज़की ने लिखा।
0: हाँ।
1: अच्छा,
0: आप देखिए कितना बुलंद काम हुआ था। उसने लिखा था और उसको याद भी नहीं। देन ही टुक दैट टेप, कहा मैं उसको ट्रांसक्राइब करके, देन आईएलएल से, इतना खूबसूरत था,
1: जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत ये यादें हैं, फिर यादें रह जाती हैं। बेद करो जोर सब तो ऐसी कात खास कर रीजन आख जिंदगी हूँ अलग रंग अख तुह सो क्रिकेट तथ पे करो कत मगर गोडने अगर तुम बोजन ये क्या
0: आ नसीम शिफाई हूँ जो आ कलाम मदनो युति ये रिकॉर्ड गो गोनिच लेट बजाए हुई है वुमेन्स कॉलेज ऑडिटोरियम। अच्छा, आत्म उस कमाल ली की वो आई वॉज द होस्ट वो उस करानी शुरुआत कर में आज। अच्छा, प्रोग्राम मगर तथ प्रोग्राम मज कर कंपेयर करिक ना जम करिक नई सुगो तलाह जहांगीर तो बे मजबूर सा।
1: اچھا غلام علی مجبور،
0: غلام علی مجبور صاحب. تو سُہ اوس اٹ اِز اے مِکس آف سیٹایر مزایا اوس یہِ بیٚیہِ اوس بَڑٕ سیٖریَس چیٖز تَتھ منٛز اَسہِ بٲتھ تٔتھۍ منٛز چَلے یہِ گۄڈنِچ لَٹہِ. اِٹ واز سَچ اے وَنڈَرفُل کَمپوزِشَن.

0: फिर लोगों को, उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फास्ट बॉलर को आगे खेलते हैं लोग।
1: मैंने परवेज साहब का एक वीडियो देखा इंग्लैंड का, काउंटी का, और वहां पे वो कीपिंग कर रहे थे तो वो स्टंप्स के साथ कर रहे थे।
0: वो करते थे वो, ही हैड ट्रमेंडस, उसमें होता है ना आई और हैंड कॉम्बिनेशन, वो उनका गजब का था, नोबडी कैन टच हिम। और द वे अब ये है कि बॉलर सिर्फ अफजद और स्टंप थोड़ी ना गेंद फेंकेगा,
1: सही बात,
0: वो इन भी लाएगा आउटसाइड द लेग स्टंप, उस थोड़े से वक्त में जब आपकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, लेग स्टंप से वो लेके उस स्टंप करते थे।
1: आप भी अच्छे कीपर थे।
0: मैं ठीक ठाक था, उतना जबरदस्त नहीं था, मैं ठीक ठाक था। हाँ, बैटिंग करते थे, बैटिंग भी मैं करता था, ओपन करता था बैटिंग, लेकिन वही एक फिजिकल उतनी ज्यादा, क्योंकि आप कीपिंग करते हैं, आप पूरी इनिंग्स में खड़े हैं, आप एक दिन खड़े हैं, फिर आप फिर से जाते हैं बैटिंग के लिए। तो
1: आपके साथ जो साथी थे या आपसे थोड़े से सीनियर, सपोज सईद परवेज कैसर थे, अश्वनी थे, हुमायूं कैसर साहब थे,
0: हुमायूं कैसर तो खैर हम तो एक साथ पढ़ते थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: हुमायूं यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी, वो तो हमारे कैप्टन थे।
1: अच्छा,
0: यूनिवर्सिटी में कैप्टन थे।
1: जी जी जी।
0: और
1: ये लोग रांची में चले गए।
0: हाँ, ये फिर रांची,
1: रांची तक पहुंच गए। आपने कोशिश नहीं की?
0: नहीं, मैंने फिर एक्चुअली फिर मैंने ये सीरियस क्रिकेट जो है वो उसको खैर बात कहा।
1: अच्छा,
0: हाँ मैं नहीं गया, और मुझे लगा कि इसके लिए काफी सारा वक्त आपको डेडिकेट करना है, तो तब जब आपको मौका मिले तो तब जा सकते हैं। देखिए परवेज साहब तो एट द एज ऑफ मेरे ख्याल 16 या 17 उन्होंने रणजी खेला है, एट ए वेरी यंग एज। ही इज एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग और एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर थे वो कश्मीर के, नो डाउट अबाउट। और जिनको गेम की समझ थी वो आपको कहते कि भैया ऐसी बात है कि आप ऐसा करो, ही वुड टेल हिज बॉलर्स कि ऐसे करो इसकी ये।
1: मैंने ये भी सुना है कि उनको सईद किरमानी ने कहा कि आप मेरे जानशीन हैं हिंदुस्तान टीम के।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली ही वाज, और वो पूरा पैकेज थी, वाज नॉट जस्ट अ विकेटकीपर, ही वाज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैट्समैन।
1: कोई इनिंग्स जो आपने खेली हो या कोई विकेट कीपिंग की हो जो अभी तक आपको याद हो कि उस दिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा?
0: काफी सारे थे हमारे यहाँ, अरुण थे,
1: अरुण बेरी,
0: बिल्कुल बहुत तेज बॉल,
1: जबरदस्त बॉलर।
0: नहीं, जब वो हमारे कॉलेज में थे तो वो बाउंसर लगाते तो वो छक्का हो जाता था, इस कदर तेज थे वो, वाज टेरिबली फास्ट। वो जब बॉल करते थे, जब बैट का एज, फास्ट बॉलिंग में तो एज जो है वो उससे डबल स्पीड पे निकलता है,
1: बाउंड्री में चला जाता था।
0: हाँ, वो बहुत तेज निकला। मैं डाइव लगा के दूसरी स्लिप में, तीसरी स्लिप में उनका कैच पकड़ा। एक बार ऐसे ही हम सोपोर में खेलते थे और अच्छा। वो बैट्समैन डर गया, उसने थोड़ा सा लेकिन उसने बैट अड़ाया, इनसाइड एज आया, बॉल आउटसाइड द ऑस्टम जा रही थी। तो फिर मैंने डाइव लगा के मैंने लेग स्लिप में कैच पकड़ा। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। वो सब लोग जो थे वहां वो आए,
1: वीडियो नहीं होंगे ना उन दिनों,
0: वीडियो नहीं था, उन दिनों तो खैर था ही नहीं।
1: हाँ, ये तो
0: उन दिनों तो
1: ये चीजें
0: का था ही नहीं।
1: जबरदस्त है, बड़े ये फिर यादें रह जाती हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते तो आप, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जा सकते थे क्रिकेट में। अब क्रिकेट में जिन दिनों आप खुद खेलते थे या उससे पहले थोड़ा, किन को आप रोल मॉडल समझते थे या जिनका आपको बहुत अच्छा लगता था?
0: काफी सारे प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का मुझे एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त लगा, वेरी टफ एंड दे उनका था। और सब कॉन्टिनेंट में सुनील गावस्कर, he was, मैंने देखा, उनसे बात की है।
1: हाँ,
0: जब पहला यहाँ वनडे मैच हुआ, जब वो आए थे, तो मैं टेलीविजन में वहाँ एक लिंक था उसमें।
1: अच्छा,
0: कि आई वुड गो टू देयर, उनका जो ड्रेसिंग रूम था वहां तक मेरी रसाई थी।
1: अच्छा,
0: और आई वाज अ लिंक बिटवीन द कमेंट्री एंड द प्लेयर्स।
1: ओके,
0: और वहां मैंने देखा, उनको बहुत करीब से देखा है और काफी लोगों से बात की है, और उनको देखा है मैंने, रिचर्ड्स को देखा है मैंने, डेसमंड हेन्स को देखा।
1: हाँ, जब यहाँ आए तो
0: वो तो दैट इज, मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या क्लास है।
1: अच्छा,
0: फास्ट बॉलर्स थे उनके, एंडी रॉबर्ट्स थे, बाकी लोग,
1: मेलकम मार्शल थे,
0: काफी सारे लोग थे, उनसे मैंने बात की है, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी किया है। अच्छा, मैंने क्लाइव लॉयड की पढ़ी थी बायोग्राफी।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो फिर उनके साथ बातचीत हो गई, तो आई टॉक एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि व्हेयर डू यू नो दीज थिंग्स। मैंने कहा मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी है। कहा इज इट हियर? का या हमारी यूनिवर्सिटी में है, इट्स हियर इन द यूनिवर्सिटी। ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज। एलन बॉर्डर साहब जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, तीन रोजा मैच
1: खेला था,
0: एलन बॉर्डर ही थे कैप्टन। और फिर कुछ जम्मू में मैच हुए थे तो उसके लिए भी मुझे दूरदर्शन ने बुलाया था,
1: लेकिन वो फिर हुए नहीं जम्मू में।
0: नहीं, एक बार तो वॉश ऑफ हो गए, लेकिन अब खैर
1: उन्होंने, मैं भी गया था देखने के लिए जम्मू, लेकिन

0: वो वॉश ऑफ, एक मैच वॉश ऑफ हो गया था, लेकिन अब चूंकि दूरदर्शन की वजह से या रेडियो की वजह से काफी सारे लोगों से मिलना मिलाना हुआ था।
1: बिल्कुल सही बात है। तो ये हुई क्रिकेट से वाबस्तगी, और उसके बाद वापस आते हैं कि आपकी जो यहाँ रेडियो में नौकरी लगी, फिर आप अनाउंसर बने। जब आप अनाउंसर बने, आप पहले एक ऐसे स्टूडेंट थे, जैसा आपने खुद ही इस बात का इतराफ किया कि आप कहीं तक भी जा सकते थे, रेडियो में आकर के सेटिस्फेक्शन मिला आपको कि बस ये मेरे लिए?
0: एक्चुअली जिस जमाने में मैं रेडियो आता था, तो यहाँ जो लोग हुआ करते थे, हर रोज आप कुछ ना कुछ सीख के घर जाते थे, तो ये एक मेरी एक कमजोरी थी कि कुछ सीखूं, मैं हर रोज सीखूं। अब निजामी साहब के पास आप 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो बहुत सी चीजें। आप इसी तरह यहाँ बहुत बहुत अच्छे लोग थे, बहुत काबिल लोग थे, बहुत ब्रिलियंट लोग थे, तो उनसे। लेकिन जब मैं आया रेडियो में, जो मेरी नौकरी लगी, तो तब भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके 8-9 महीने के बाद हालात खराब हो गए बहुत।
1: जी जी।
0: तो फिर मैंने कोशिश की कि मुझे लगा कि मैं एक अंधे कुएं में फंस गया हूं, लेकिन फिर वापसी
1: मुश्किल थी,
0: बहुत मुश्किल थी, हो नहीं पा रही, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब थे, हो नहीं पाया। लेकिन ये था कि मैं अपनी चॉइस से रेडियो आया था
1: जी।
0: और मैंने कहा ना, यहाँ ऐसे लोग थे जो बेहद नॉलेजेबल थे और बेहद क्रिएटिव लोग थे, यहाँ बेहद क्रिएटिव लोग थे, तो सीखा तो सबसे है। मैंने तकरीबन हर जगह काम किया है, मैंने देहाती सेक्शन में काम किया, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब हैं, शरीफुद्दीन साहब हैं, मोहम्मद सुल्तान पंडित साहब हैं, उनके साथ काम किया। मैं चाह रहा था, हालांकि मानते नहीं थे तब हमारे यहाँ जो डायरेक्टर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं
1: इस सेक्शन
0: कुछ देर के लिए मैं
1: इस सेक्शन में जाऊं।
0: मैंने तकरीबन हर ड्रामा प्रोड्यूस किए थे मैंने कुछ, फिर तो एक ड्रामा मैंने किया था, मुझे यहाँ बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उसके लिए ये था कि मैंने तकरीबन 1 महीने रिहर्सल की, नए 2 लोगों को लाया, उनके साथ काम, वो दो ही करेक्टर थे। तो जब वो प्रोग्राम जब वो चला, और मेरे पास ये शौक बहुत था, मेरे पास म्यूजिक की कलेक्शन बड़ी जबरदस्त थी।
1: अच्छा।
0: मेरे पास गजलों की कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त थी, मैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स भी थे, मैं मंगवाता था
1: जी जी, हाँ। जी
0: काफी अच्छी कलेक्शन थी। तो जब वो ऑन एयर हुआ, तो उसमें कहीं जो इफेक्ट्स यूज किए थे, वो लगा बहुत से लोगों को, कि वो सीनियर आदमी ने मुझसे कहा कि मैं डर गया था रात को।
1: अच्छा।
0: जिसने पूरी जिंदगी रेडियो में दी है,
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: उसने जब ड्रामा सुना तो कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त,
1: ऐसे सीन आपने क्रिएट किए थे, ऐसा
0: म्यूजिक लिखा गया था वैसे। जी, जी, जी। लेकिन ये है कि देखिए, ये साउंड का मीडियम है,
1: बिल्कुल सही।
0: इसमें आपने चुन के जो है वो जो साउंड आपको चाहिए, यू शुड नो कि कौन। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमारी ड्यूटी हुआ करती थी उस जमाने में, मैं म्यूजिक सेक्शन में जाया करता था, जो हमारे म्यूजिक सेक्शन है बाहर, वहां तो तब बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो मैं उनसे पूछता था ये शाम की राग कौन सी है, सुबह की राग कौन सी है।
1: तो
0: जो फिलर चलाया करता था मैं, ये मैं वही राग चलाया करता था जो शाम की राग हो, ताकि अगर 1% भी वहां क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाला हो, उसको अगर सुबह की राग उसमें, तो एक
1: नहीं, नहीं, ये तो खैर, ये तो बहुत जबरदस्त बात आपने कही। आजकल फुकदान है इन चीजों का। ज़ुहूर ज़ाहिद को किन प्रोग्रामों ने शिनाख्त दी, यानी लोगों ने बाहर पहचानना शुरू किया?
0: स्पोर्ट्स प्रोग्राम करता था मैं, उसकी एक वजह ये थी कि मैंने बराए रास्त एम्बेसीज को लिख के तस्वीरें मंगाया करता था, टेलीविजन के लिए भी और रेडियो के लिए भी, और मैंने एक अच्छी खासी एक लाइब्रेरी बनाई। मेरे पास 1904 की रिकॉर्डिंग थी, दैट वाज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम BBC दैट आई गॉट। मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना था
1: जी।
0: तो मैं, हर एक का अपना अपना होता है तरीका प्रोग्राम करने का, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, और मैं चाहता था कि हर अगर अगर कोई चीज है, अगर उसमें एक सौती असर हो, तो वो ज्यादा बेहतर आता, बजाय इसके कि आप बात करें, अगर कुछ करते हैं आप, तो मेरे पास अब भी मेरे ख्याल से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स मैं मेरे पास बेहतरीन मोमेंट जो हैं टेस्ट क्रिकेट के और वनडेज तो खैर बाद में आ गए, वो मेरे पास महफूज अब भी हैं, अब भी हैं। तो वो चीजें जो थी, वो शौक था मुझे जमा करने का और उसको सुनने का कभी कभी।
1: एक प्रोग्राम मुझे याद है जो आप करते थे, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, वो भी आप करते थे।
0: हाँ, इसमें एक और बात मुझे याद आ गई, हालात बहुत खराब थे, मसूदी साहब को भेजा गया था गोवा
1: जी,
0: तो ना गजलों का शायद प्रोग्राम था, और बहुत फ्लावरी लैंग्वेज होती थी उसकी, और बहुत अच्छी कोशिश होती थी कि प्रेजेंटेशन ठीक हो। उन्होंने मुझे वहां से खत लिखा, कहा ये तुम कैसे ये प्रोग्राम करते हो, तुम मारे जाओगे, यू आर टॉकिंग अबाउट लव, यू आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, आप मोहब्बत की बात करते हो, वो तुम्हें मार देंगे।

0: ये, मैंने कहा खुदा बहुत बड़ा है,
1: सही,
0: ये सारा उसी के हाथ में है, जब होगा तो देखा जाएगा।
1: आपने कहा कि मेरे पास म्यूजिक कलेक्शन थी, इफेक्ट्स की कलेक्शन थी, कमेंट्री की कलेक्शन थी। अगर म्यूजिक की बात करें तो जहूर जाहिद खुद एक तो हुआ लोगों को सुनाना कि फरमाइश आ गई है, आपने कोई प्रोग्राम तरतीब दिया। दूसरा हुआ कि जब आप अपने सुकून के लिए, अपनी रूह के लिए कुछ सुना करते थे तो क्या सुनते थे?
0: नॉर्मली गजल्स, मेहदी हसन साहब की गजल्स, और मैं क्लासिकल सुनता था काफी, बड़े गुलाम अली खान और बाकी लोगों को सुना करता था।
1: वेस्टर्न म्यूजिक,
0: वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत, मैं प्रोग्राम पेश भी करता था।
1: जी जी जी,
0: मैंने उसका ऑडिशन भी पास किया था, करता करते थे, था म्यूजिक के साथ शौक तो था, करते थे, लेकिन सुकून के लिए वही क्लासिकल म्यूजिक सुना। हालांकि मुझे क्लासिकल, मैं उसमें बहुत, आई एम जीरो इन दैट, लेकिन कैसर कलंदर साहब की किताब है मौसीकी पे, वो
1: हमारी मौसीकी,
0: ब्रिलियंट ब्रिलियंट बुक, वो कहते हैं कि कंसुरा होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही,
0: क्या आप कंसुरा हैं, कंसुरे हैं? तो शायद मैं भी कंसुरा हूँ, क्योंकि कैसर साहब ने भी कहीं से मौसीकी की
1: प्रॉपर तालीम
0: नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए वो किस कदर गजब के वो प्रोग्रामर थे, शायर थे, वो तो उनका एक अलग मकाम है हमारी ब्रॉडकास्टिंग में।
1: जी जी जी जी, जोर साहब, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में आपने एक खास वक्त गुजारा, इस शोबे की खासियत क्या है और आपका जो टेन्योर वहां गुजरा कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में वो कैसा है?
0: मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो मार्केटिंग में है
1: जी,
0: और जाहिर है हमें मार्केट करना था हमारे प्रोग्राम्स को, बाकी चीजों को, तो फिर मुझे वही उसी से मुंसलिक रखा गया और प्रोग्राम्स भी हम करते रहे, और यही वजह है शायद कि हम 3 साल लगातार नंबर 1 पोजीशन पे आए जब मसूदी साहब यहाँ।
1: जी जी जी जी,
0: तो उन्होंने एक आजादी दी रखी थी कि आप कैसे करें, और ये मैं जब वहां था तो ये जेके बैंक डायरी हमने ही शुरू किया था, तो वो सारा मैं तकरीबन 2 साल तो अकेले वो प्रोग्राम करता था उनके लिए। ये है कि अब रेडियो जो है वो, अब वो रेडियो रहा नहीं जो हमारे वक्त में था, रेडियो के आपका एंटरटेनमेंट है, आपकी एजुकेशन है, राइट, तो वो उसे बढ़ के अब ये हो गया कि ये सारा कमर्शियलाइज हो गया,
1: एवरीथिंग
0: इज कमर्शियलाइज, तो कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। अब
1: उन दिनों आपने जो काम किया कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, काफी रेवेन्यू भी आया जिस तरह से आपने कहा।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं होता, दिस इज जॉइंट इफेक्ट, और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हेड ऑफ द फैमिली को होता है।
1: जी जी जी,
0: कि जो आपका हेड ऑफ द फैमिली वो कितना, ये मसूदी साहब उस मामले में
1: जबरदस्त,
0: ही वॉज वेरी वेरी, वो कहते थे कि जनाब ये हमने करना है और करते थे, अगर अब कोई सजेशन देनी होती थी वो एक्सेप्ट करते थे और करते थे।
1: जोर साहब, अगर इस बेद के बोझो क्या बोझो तुम इसे फरमाइश पर,
0: कैसर निजामी सुबन छो आक बतक सुया सु बोझो मानी बुझो इमन कलामन होशा होश,
1: ये छो
0: एचो एक्चुअली दिल गमस युति बु नवे नवे आस
1: अनस
0: इत गयो वक प्रोग्राम अक शुरू तात इस वना स्टूडियो नंबर 6
1: सही,
0: आई मी प्रोग्राम को मुद्दा तो मकसद उस की नई आवाज बाद काटने ते नई साज करें
1: इस्तेमाल,
0: तो भजन जी उसी करान, ये दरअसल ब्रेन चाइल्ड था लसक कॉल साहब।
1: जी जी जी,
0: तो उसमें ये रिकॉर्ड हुई थी, और मैं उस दिन सोचने वाला है मैं उस बोधवर तो छुट्टी आसान मैं वीकली ऑफ, वो कहते थे कि नहीं चचुयून, तो वो ऑडिटोरियम में हमने रिकॉर्ड किया था
1: सुषमा का कैसर निजामी की आवाज,
0: शायद ये पहला यूसुन गुनुक बहुत
1: उसी में,
0: एंड दिस इज एन आइकॉनिक सॉन्ग, इज एन आइकॉनिक
1: वासुदेव राय का कलाम
0: जी,
1: जरूर पेश करेंगे।

0: बहुत अच्छे। वासुदेव रह का कलाम पंडित भजन सोपोरी की कंपोजिशन, कैसर निजामी और सुषमा दत्ता की आवाजें, और बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये ऑडिटोरियम में रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद फिर एक दो गाने और भी वहां हुए,
1: काफी सारे, मतलब ये तकरीबन 6-7 महीने तक चलता रहा है। और जितने भी इसके गाने बने हैं वो सारे आइकॉनिक गाने।
0: और जोर साहब इस गाने में, या वो गाने जो उस दौरान बने, उनमें सिंथेसाइजर यूज किया था, जबकि कश्मीरी गाने में ज्यादा नहीं,
1: पहली बार।
0: और
1: इलेक्ट्रिक गिटार भी और संतूर, शौकत साहब संतूर बजाया करते थे।
0: मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा, एक ही सवाल बना के, और मुझे लगता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है आज के दौर में। क्या सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रिवायती ब्रॉडकास्टिंग के किरदार को मुतासिर किया है? और इसके साथ दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि आज के इस डिजिटल दौर में रेडियो और टेलीविजन को आप किस निगाह से देखते हैं, और इन इदारों का फ्यूचर क्या है?
1: मेरे ख्याल से जो हम ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे वो तो कब की चेंज हो गई थी। जब हम आए थे तो तभी नैरो कास्टिंग हुआ करती थी, छोटे छोटे स्टेशन आ गए थे, वो बड़े बड़े स्टेशन नहीं थे। और आज भी अगर कहीं है, मैं जब यूनाइटेड स्टेट्स गया था तो हम कहते हैं ना कि रेडियो खत्म हो गया था। रेडियो खत्म कभी नहीं होगा, रेडियो की अपनी एक रेलेवेंस है, और वहां तो हजारों FM स्टेशंस हैं। लेकिन यह है कि वहाँ अलग अलग हैं, वहाँ क्लासिकल म्यूजिक के लिए अलग है, न्यूज के लिए अलग है, वेदर के लिए अलग है, हर एक चीज के लिए अलग अलग स्टेशंस हैं।
0: ठीक है,
1: तो कुछ ऐसा ही शायद यहाँ भी हो जाए। और जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया अब ये जो रेडियो की रेलेवेंस है ये बहुत हद तक कम हो रही है। मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं कि जिससे अब बहुत हद तक जो एक ट्रेडिशनल हमारा निजाम होता था रेडियो का, वो अब नहीं रहेगा। जैसे मुझे निजामी साहब की आवाज चाहिए, मैं आपका एक सैंपल ले लूंगा, उसको क्लोन करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये मैं हूं या कोई और है।
0: और तो हमारी जो
1: नहीं
0: होगी,
1: हाँ, और बिल्कुल वही
0: जो मैंने बोली नहीं होगी,
1: बिल्कुल बोली नहीं होगी वो बात। और वैसे भी अच्छा, और यही नहीं बल्कि साउंड में तो कहते हैं कि इट्स एट द ज़ेनिथ, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमने बहुत पहले किसी भी वक्त में कोई गाना रिकॉर्ड किया हो, आप उसमें से सिर्फ वॉइस निकाल सकते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: और उसको फिर बेहतर
0: रिवाइव कर सकते हैं,
1: उसको आप ठीक कर सकते हैं,
0: जी जी जी।
1: फिर उसको अलग इंस्ट्रूमेंटेशन से करते हैं। आजकल AI में जितने गाने बनते हैं वो गजब के गाने होते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल चाहिए, उसके लिए भी आपको वो लोग चाहिए जिन्हें म्यूजिक का पता है, जो म्यूजिक की इनकी बैकग्राउंड है, वो म्यूजिक जानते हैं।
0: AI को हम टूल समझें या ब्रॉडकास्टिंग ही समझें?
1: अब तो मेरे ख्याल से, अब देखिए हमारे जमाने में क्या होता था, हमें स्क्रिप्ट लिखनी होती थी, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, हमें रिलेवेंट किताबें ढूंढनी पड़ती थी, मैगजीन ढूंढनी। आजकल को जमाना है, आपने एक कमांड दी आपके साथ सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आपने एक और कमांड दी वो सारी एडिट हो गई
0: जी,
1: फिर आपने एक और कमांड दी। आपने टेलीविजन में भी काम किया होगा, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री की म्यूजिक करते हैं तो उसके लिए एक अलग हम ट्रैक बना लेते हैं
0: जी,
1: है ना, तो फिर उसको घटाते बढ़ाते हैं काम, अब वो सारा AI करता है, आपने उसको बता दिया तो वो खुद ही उसकी जो है वो खुद ही कर देगा। वक्त बहुत बचने लगा है, तो

0: ब्रॉडकास्टिंग इजी हो गई,
1: ब्रॉडकास्टिंग तो अब बहुत इजी होगी। मैं तो कहता हूँ प्रोग्राम स्टाफ उतने नहीं चाहिए जो आपके रिसर्च करें, फिर स्क्रिप्ट लिखें, फिर बाकी चीज करें, फिर बाकी चीज करें। हाँ, एक आदमी ऐसा हो कि जिसे ये सारी चीजें जो हैं पता होनी चाहिए, बट ही कैन डू इट। जहाँ आपके 10 लोग काम करते थे वहाँ
2: रेडियो और टेलीविजन का फ्यूचर अभी भी ब्राइट है।
1: हाँ बिल्कुल है,
2: खत्म होने वाली चीजें नहीं,
1: खत्म होने वाली चीज नहीं है ये जी। एक है, एक रेलेवेंस रहेगी, लेकिन वो किस तरह की होगी, वो टेक्नोलॉजी के तकाजे कुछ इस तरह से होंगे कि वो वैसे ही फिर उसको बनाएंगे।
2: जोर साहब, इस वक्त आपको अपने लिसनर सुन रहे हैं
1: जी,
2: एक पॉज आ गया बीच में
1: जी,
2: उन्होंने रेडियो पे आपको नहीं सुना
1: जी,
2: जब आप सुबुकदोश हो गए
1: जी,
2: लेकिन आज भी जब वो आपकी आवाज सुनते होंगे तो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आज जोर साहब अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं या अपनी फैमिली के बारे में भी बोलेंगे
1: जी।
2: अपनी फैमिली के बारे में बोलिए और उनका सपोर्ट, उनका किरदार जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग में रहा कितना रहा।
1: मेरी जो शरीक हयात है वो भी रेडियो में ही थी, फिर टेलीविजन चली गई, तो घर में ही है। लेकिन अब हमारे बच्चों ने ये शर्त रखी थी कि आप जब हम बैठे हों तो आप कोई रेडियो की बात नहीं करेंगे।
2: अच्छा,
1: हाँ हम कभी वो बात नहीं करते थे।
2: शरीक हयात का ब्रॉडकास्टर होना,
1: हाँ,
2: रेडियो में काम करना या टेलीविजन में काम करना, कितना फायदा मिला आप?
1: फायदा काफी है, इसमें काफी फायदा है कि आपको तफसील नहीं देनी
2: पड़ती
1: कि आप कहाँ गए थे, किस जगह गए थे। वक्त आपको मैं एक दिलचस्प बात बता दूं, मैंने कंप्यूटर बहुत, जब मैं यहाँ हुआ था तो उसके बाद ही मुझे परवेज साहब ने बुलाया था एक इसमें, तो मैं गया था वहां, तो मैंने, मेरे पैसे कुछ जमा हो गए थे, तो तब मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकता था या अच्छा सा मोटरसाइकिल ले सकता था, तो मैंने नहीं लिया, मैंने उनसे कंप्यूटर लिया था।
2: माशाल्लाह,
1: हाँ बहुत पहले की बात।
2: परवेज कैसे साहब?
1: हाँ जी
2: जी जी।
1: तो फिर मेरा एक रابطہ रहा, उसको अपडेट कराना, उसके ये करना, तो कंप्यूटर मेरे साथ ही रहा। और जब यहाँ कंप्यूटर फिर शुरू हुआ रेडियो में, तो मैं अपने जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको एडिट में घर में ही करता था।
2: सही सही।
1: तो अक्सर ये होता था कि मैं रात को बैठ के ये करता था।
2: अच्छा,
1: तो कभी मेरी शरीक हयात की आंख खुल जाती थी, ओके कहाँ गए, तो अच्छा। देखते थे कि ये बैठा है और काम कर रहा है, पता उसमें सो होना, तो उनके ये मुगले आजम गई ना, इनकम्प्लीट।
2: लेकिन आपने अपने बच्चों को रेडियो और टेलीविजन का दरवाजा नहीं दिखाया?
1: नहीं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी। मेरी जो छोटी वाली बेटी है, शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर,
2: okay,
1: और बहुत अच्छी क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर है,
2: माशाल्लाह।
1: उसको ये सारी चीजें आती हैं, शी कैन एडिट, शी कैन रिकॉर्ड, शी इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। और मैं इंसिडेंटली मेरी जिंदगी में एक बहुत फोटोग्राफी का, एक
2: पेंटिंग
1: फोटोग्राफी का, तो मैं बहुत जबरदस्त, और लैंडस्केप फोटोग्राफी का मैं एक जमाने में बहुत ज्यादा।
2: और यहाँ पे मैं अपने तमाम सुनने वालों को एक बात ऐड करूंगा इसमें कि जहूर जाहिद साहब ने कुछ लोगों की तस्वीरें ऐसी ली हैं,
1: हाँ,
2: जो रिमार्केबल हैं।
1: हाँ, कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, हाँ,
2: ऐसे ही कई लोगों की तस्वीरें, हाँ, आपने खींची।
1: बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ।
2: तो ये चीजें आपके साथ साथ चली, पेंटिंग भी आपके साथ चलती है क्या? आज पेंटिंग करते हैं जरूर?
1: नहीं, पेंटिंग तो मैंने फिर की नहीं, पेंटिंग का वो जो सिलसिला था
2: वो
1: खत्म हो गया। वहाँ पेंटिंग मैंने एक खास, मेरा शौक था, मैं करता रहा, फिर उस तरफ मैं तवज्जो नहीं दे पाया, क्योंकि जब मैंने फोटोग्राफी बहुत सीरियसली शुरू की तो मैं देखता था, मैं पेंटिंग ही देखता था अपने लेंस से।
2: सही सही, हाँ, बिल्कुल सही।
1: तो
2: बिल्कुल
1: वो
2: सही।
1: वो शौक फिर कम हो गया।
2: सुबुकदोशी के बाद जिंदगी की मसरूफियात जो हैं क्या हैं?
1: एक तो मैं लिखता हूँ काफी, आपको नहीं भेजता लेकिन आपके बाद भेजूंगा मैं,
2: ठीक है।
1: मैं एक दो किताबों पे काम कर रहा हूँ,
2: ठीक है।
1: वो, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे लगा कि कश्मीर के ताल्लुक से, तो उसकी एक दो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है,
2: माशाल्लाह,
1: हाँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक फिल्म बनाई थी हमने 2014 में ही बनाई थी, ये कश्मीरी फीचर फिल्म थी, परतव इसका नाम
2: से,
1: और इसको मिला था जी कैनेडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था।
2: बिल्कुल, बिल्कुल
1: जी। और इसके बाद हमने रिसेंटली एक और फिल्म की जिसमें मेरा एक हिस्सा था, वो थी हरमुख, ये दो लैंग्वेजेस में फिल्म थी, एक कश्मीरी में और एक कन्नड़ा में।
2: सही सही।
1: तो अभी कश्मीरी वर्जन तो हमने शुरू किया था, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोग अपने कल्चर से, अपने विरसे से बहुत दूर हो रहे हैं।
2: बिल्कुल सही,
1: वो एक गिला है मुझे बहुत ज्यादा,
2: क्या करें, ये माहौल ही कुछ ऐसा है। चलिए, आपकी कोशिशें जारी हैं
1: जी,
2: काम आप करते हैं, बहुत अच्छा है।
1: नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक काम करना है,
2: बहुत अच्छा।
1: जब तक जिंदगी खत्म हो जाएगी तब तक आप ऐसे नहीं बैठ सकते,
2: बिल्कुल,
1: यू हैव टू डू समथिंग।
2: बिल्कुल सही। जरूर साहब, आप अपने स्टूडियो में आए, अपने लिसनर्स के साथ बात की, हमें बहुत अच्छा लगा, और ये एक घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं चला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों से लेते हैं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने

0: वो जो यादों के जो झरोके थे उनको आपने खोला, और मैं तो आपको काफी बरसों से जानता हूं, तो वो सारी यादें एकदम से मेरी जहन में आ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।

0: प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे नशरियात में हमारे साथी आज के मेहमान थे मारूफ ब्रॉडकास्टर जोहर जाहिद। प्रोग्राम के मेज़बान थे रशीद निज़ामी। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज़ जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शब के 11 बज रहे हैं। चंद ही लम्हों के बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें पेश होंगी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
3: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के

0: 131 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around

मीडिया में 208.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर जाकिर गुलाम अहमद डार और साथी मरसिया पेश करेंगे। इनसे आप मजमूनी सौदागरी सुनेंगे। शब 10 बजे कश्मीरी फीचर पेश होगा अब्दी हयात। प्रोग्राम सुबह का ही पेश खिदमत होगा सुबह 6:35 पर। सुबह 7:10 पर लाइव मॉर्निंग शो पेश होगा पयामे सुबह।

हम सफर ये सुपांसर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। कल के शुमारे में इंतहाई अहम मौजू रहेगा, क्या नाबालिग बच्चों के लिए वसी बनाना दुरुस्त है। कल आप इस मौजू की 5वीं किस्त सुनेंगे। प्रोग्राम के रूह रवां और उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना फयाज़ अहमद ज़ोरू साहब इस अहम शरी और समाजी मामले पर तफसली रोशनी डालेंगे। इस मालूमती प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा। सुनना ना भूलिएगा कल सुबह 8:45 पर प्रोग्राम हम सफ़र।

कामनी कौशल, अमिताभ बच्चन साहब, अरुणा ईरानी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था और यह फिल्म उस दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत जिसे लिखा है संतोष आनंद साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। आवाजें हैं लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।

कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:35 और 20 सेकेंड और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की। और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1968 में और ये फिल्म है जिसका नाम है साथी। सीबी श्रीधर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, सिमी ग्रेवाल, पहाड़ी सान्याल, डेविड इब्राहिम, वीना वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था नौशाद साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके लिए।

साथ ही फिल्म का यह नगमा था, आवाजें थी मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। और वो नगमा है 1961 में आई फिल्म आस का पंछी से। मोहन कुमार साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार, राज मेहरा, नासिर हुसैन, मुमताज, लीला चिटनीस, ब्रह्मा भरतवाज वगैरह ने। इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है एक बार फिर से मुकेश साहब और इस बार लता जी उनके साथ है और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का। तो आइए सुनते हैं फिल्म आस का पंछी का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फेरोज और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। उन्हीं नगमों में से हम कुछ ऐसे नगमे आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और अगला नगमा कुछ ऐसा ही है। और ये नगमा है फिल्म आरती से। ये फिल्म आई थी 1962 में। फानी मजुमदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था मीना कुमारी ने, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, शशिकला, राजेंद्रनाथ, केशव मुखर्जी और महमूद वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रोशन ने। खास बात यह है कि इस फिल्म में शशिकला जी को

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर का पहला अवार्ड मिला था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए।

అర్ధి ఫిల్మ్ డే నగ్మాత ఆకాశవాణి ఢిల్లీ ఎఫ్ఎం గోల్డ్ ఛానల్ స్వదేశంలో ఏక్ మెగా హెర్ట్జ్ పర్ ఆవాజే తి ఆశా జీ ఆర్ మొహమ్మద్ రఫీ సాహబ్ కి. और दोस्तों मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज. और गीत मेरे मनमीत में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो फिल्म है 1958 में आई साधना से. बी आर चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था वैजयंती माला, सुनील दत्त, लीला चिटनीस और साथी कलाकारों में मनमोहन कृष्ण, उमा दत्त, मूलचंद, उमा भेंडे, नाजिर कश्मीरी और नंदनी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय निभाया. इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और माफ कीजिएगा साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है दत्ता नायक ने. इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा नहीं बल्कि एक कव्वाली है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफी साहब और एस बलबीर की बहुत ही प्यारी आवाजों में. तो आइए सुनते हैं वही कव्वाली चलते चलते इस गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर.

0: उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. 15 people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, Uttar Pradesh government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at KGMU and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following the Chief Minister's instructions, a special investigation team, that is SIT, was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting their report within 7 days. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation first spirit has guided India's achievements over the last decade. He noted that current decisions and actions are foundational for the country's future for centuries to come. The Prime Minister also recalled his recent participation in the G7 summit, where he observed that global leaders acknowledge India's unwavering commitment to the nation first principle.
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Reflecting on the government's 12 years in service, the Prime Minister stated that mobile connectivity was extended to approximately 45,000 villages. He added that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post-

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। सौ.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 3 सेकेंड। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

वाकई ये मिलन की रुत तो है ही, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब दो ऐसे दिल मिलते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और आपको तो पता ही है, मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, कभी हमारा मिलन अपनी यादों से होता है, कभी किसी पुराने सपने से, और कभी कभी उस रूप से होता है जिसे हम भाग दौड़ में बहुत पीछे छोड़ आए थे। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।

वैसे वादा निभाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है जिंदगी की भागदौड़ में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो लोग अपने शब्दों की कीमत जानते हैं वो हमेशा दिलों में जगह बना ही लेते हैं। और शायद यही एक वजह होती है कि ये गाना हमेशा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इस गाने में प्रेम तो है ही, लेकिन बात है भरोसे की, और किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर सबसे ज्यादा टिकी होती है। जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा भरोसा होता है उसकी नींव उतनी ही मजबूत होती है। तो इस खुशनुमा रात में अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान याद आ रहा है जिसने वादा निभाया हो, तो मन ही मन उसे ये गाना हम डेडिकेट कर सकते हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज में।

जब रात ने घुंघरू पहन ही लिए हैं और वो भी हमारे साथ थिरकने लगी है तो फिर कोई कैसे सो सकता है। तो चलिए फिर इस महकती और चहकती सी रात में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में

पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

گفتگو ہو اگر دلوں کے بیچ، گفتگو ہو اگر دلوں کے بیچ، حرف کچھ حیثیت نہیں رکھتے، تم کو فرصت ملے تو لکھ دینا، تم کو فرصت ملے تو لکھ دینا، خط کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 101.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:42 और 58 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिकंधा। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में।

आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने एक बात नोटिस की, बल्कि ये कहूंगी कि मैंने एक बात नोटिस की है, और वो बात ये है कि इतने सारे गानों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि दौर चाहे जो भी रहा हो, पर हर दौर में इश्क की भाषा एक ही होती है।

हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है ना। उनके होने भर से हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती भी शायद यही है कि वो हमें बदलते नहीं हैं बल्कि बेहतर बनाते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। अब बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि यह दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खरीद एजेंसियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद की समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य खरीद में तेजी लाने, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार में जरूरी दखल को मजबूत करना था। ब्रिटेन के

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है और आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन साहब ने और ये नासिर साहब की पहली फिल्म थी जिसका उन्होंने निर्माण किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने, प्राण ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और राजेंद्र नाथ सहायक भूमिका में नजर आए थे। और अब हम सुनते हैं अगला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म साथी से।

फिल्म साथी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। आवाज थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार थे बजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने। इस फिल्म को संगीत से सजाया था नौशाद साहब ने और मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल ने। यह फिल्म 1961 में आई एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। और अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

फिर उसने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, फिर उसने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, फिर एक जरा सी बात पर जीना पड़ा मुझको।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। गीत सुहाने प्रोग्राम का हसीन और खूबसूरत सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ। वक्त हुआ है 1:33 और 37 सेकेंड।

रफी साहब और लता मंगेशकर की जादुई आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म दिल तेरा दीवाना से, और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1962 में और ये एक कॉमेडी

टी फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी शमी कपूर, भाला सिन्हा, महमूद, प्राण, ओम प्रकाश ने, और संगीत शंकर जयकिशन साहब का था। और इस फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था और दर्शकों द्वारा सराहा गया था। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। बहुत ही सुरीली आवाज में अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म CID से।

0: फिल्म सीआईडी से शमशाद बेगम की आवाज में सुना आपने ये गीत। ये फिल्म 1956 में आई थी और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था राज खोसला ने और निर्माण किया था गुरुदत्त ने। देवानंद, शकीला, जॉनी वॉकर, के एन सिंह और वहीदा रहमान ने इस फिल्म में अभिनय किया था और देव साहब इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया था और गीत बजरू सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर ने लिखे थे। ये फिल्म वहीदा रहमान की हिंदी फिल्मों में पहली फिल्म थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में और इस गीत को पिक्चराइज किया गया है वहीदा रहमान पर।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आ।

फिल्म का नाम 20 साल बाद और आवाज थी हेमंत कुमार की और संगीत भी हेमंत कुमार का। गीतकार थे शकील बदायूनी और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था विश्वजीत और वहीदा रहमान पर। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में और फिल्म का नाम है श्री 420।

हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तान।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के एक मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:30। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ शायरी से समझने की, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

जब भी इस गाने को सुनूं तो ऐसा लगता है कि दो सहेलियां आपस में दिल के राज खोल रही हो, है ना? सच सच बताइए, इस गाने को सुनकर आपका मन बहका या नहीं? अगर आपका मन भी बहक गया है तो फिर उस खास इंसान की यादों में खो जाना चाहिए जिसे इस वक्त आप याद कर रहे हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में गए हो या और वहां पर किसी अजनबी से कोई ऐसा अजनबी नजर आया हो और जिसको देखकर ऐसा लगा हो कि हाँ शायद यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। सच कहूँ तो आंखों की भाषा बहुत कमाल की होती है, हम नज़रों से पहचान लेते हैं कि किस इंसान से हमारा रिश्ता

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कल रात तुम सपने में आए थे, कल रात तुम सपने में आए थे। हम दोनों एक दूसरे को माफ कर हंसी मजाक कर रहे थे। ताज्जुब की बात ये कि तुम्हारा चेहरा जो जहन में धुंधला पड़ गया था, रात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। आवाज भी बिल्कुल वही, खुशबू भी वही। मैं सपने से उठकर एक साथ इतना खुश और उदास कभी नहीं हुई।

104.5 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। रात सुरमई का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू के साथ। वक्त हुआ है 2:39 और 20 सेकेंड। रात सुरमई, जहां हम रात के सुरों को, दिल के दर्द को, इश्क के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं।

हैं अपने कुछ गानों से, अपनी कुछ बातों से, सुनी सुनी रातों को, गीतों से भरने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इसी कड़ी में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सुनना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर हामी भर ही दी है तो फिर इसे खूबसूरत बात और कुछ नहीं हो सकती। घड़ी की सुइयों के साथ साथ आपकी और मेरी मुलाकात लगातार और गहरी होती जा रही है। रात का सफर अभी लंबा है और यादों का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। तो चलिए फिर सुनते हैं अगला गीत।

इस गाने को सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि प्यार में जो रूठने और मनाने का सिलसिला होता है ना, यही मोहब्बत की असली ताकत होती है, यही जान होती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दिलबर है या कोई ऐसा है जो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, तो सच कहूं तो बहुत जल्द उसको मना लेना चाहिए। और अगर वो फिर भी ना माने तो ये गाना उसी के लिए।

तोता मैना की कहानी भले ही पुरानी हो गई हो, पर आपकी और हमारी कहानी कभी पुरानी नहीं होने वाली। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी रात सुरमई में। आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग, मुझे यानी अपनी रात की हमसफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने

0: दोस्तों नमस्कार। FM 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम हमराही और मैं आपकी दोस्त वंदना चुग।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो
1: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

बॉबी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी का संगीत। दोस्तों, आपको भी अगर किसी से कुछ कहना हो तो कह देना चाहिए, क्योंकि मन में बात रखकर कोई फायदा नहीं है।

फकीरा फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत था और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और तर्स बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप युगल गीत सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों, क्या आपने इस गीत को सुनते हुए उस दौर को याद नहीं किया जब चिट्ठी लिखा करते थे और जवाब का भी इंतजार किया करते थे। तुम्हारी कसम फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ हद किसी से कम नहीं फिल्म से, मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है आरटी परमन ने।

महबूबा फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्श की रचना थी और आरटी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्श ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: दोस्तों अगला गीत कह रहा है, जब चारों तरफ बहार है तो अब साथी को भी आ जाना चाहिए।
1: कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखे, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

मोम की गुड़िया। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना। आवाज कितनी मधुर थी, आनंद बख्शी जी की आवाज में गीत और साथ में लता मंगेशकर थी। आनंद बख्शी जी की ही रचना थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, अब आखिरी पड़ाव की तरफ है और अब कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ चोर मचाए शोर फिल्म से गीत इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा है और धुन तैयार की है रविंद्र जैन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में

0: भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हुए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रविवार रात रास लाफान में हुई घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दूतावास ने कहा है कि वे कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने और मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। एफआईएच प्रो लीग के लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex.

दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ, और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। सुप्रभात।

बहार फिल्म से अभी आपने गीत सुना शमशाद बेगम की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और एस डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, बहुत जब गर्मी होती है ना, तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना।

दोस्तों, बात तो बिल्कुल सच है कि किसी को अपना बना लेना या किसी का बन जाना, ये तो अपने हाथ में ही है।

ये गीत था मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और संगीत ओपी नैयर का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में। आप सुनेंगे शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

इम्तिहान फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, किशोर कुमार का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूं जीने की राह फिल्म से, आशा भोसले, हेमलता, मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बच्चों की मासूमियत कितने दिल को छू जाती है ना। और मासूम बच्चों से हम बहुत कुछ कह देते हैं, जैसे चंदा को मामा। तो आज तक सभी बच्चे चंदा मामा बोलते हैं। बच्चों को जो हम सिखा देते हैं वही सीखते हैं। यहाँ भी बच्चे चंदा को ढूंढने तारों की तरह निकल पड़े हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले का गाया हुआ, धर्मपुत्र फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है एन दत्ता ने। तन्हाइयों में जब भी कोई पुरानी बात याद आती है, तन्हाइयों में जब भी कोई पुरानी बात याद आती है, आंखों में खुशी और लबों पर मुस्कान छा जाती है। यूं तो कट जाती है जिंदगी, यूं तो कट जाती है जिंदगी अक्सर अकेले में भी, मगर अपनों की याद वो कभी भी पूरी कर जाती है।

0: दोस्तों, आप भी जब तन्हाई में बैठते होंगे तो कोई ना कोई अपना तो आपको भी याद आता ही होगा। अरुणिमा प्रोग्राम में आप गीत सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।
1: देख लिया कहां रहता हूं।
0: दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से सपने संजोता है और उसे मालूम होता है कि वो कभी ना कभी अपने मकाम पर पहुंच ही जाएगा।
2: चलो मुझे घर पहुंचा दो।

थी फिल्म से, ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन का संगीत। दोस्तों, बहुत बार आप कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाते तो दिल करता है

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने ये गीत सुना। फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस। हसर जयपुरी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत है, ज्वेल थी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत को

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी

0: दर्ज की है। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के तहत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। FIH प्रो लीग के तहत लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। 2024 में चीन के हुलूनपुर में हुई पश्चिम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला होगा। फीफा विश्व कप 2026 में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस और इराक के बीच खराब मौसम के कारण मैच रुका हुआ है। हाफ टाइम तक फ्रांस 1-0 से आगे था। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police have registered a case against 6 individuals and arrested 4 of them last night. 4 officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from CM Yogi Adityanath. In connection with the fire incident in Lucknow, Aligarh police have registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against 6 accused and other responsible persons. The building where the tragic fire broke out yesterday had been issued a demolition order in 2016 over unauthorized construction.

रूहानी इस कार्यक्रम में गीतों का आनंद लेते हुए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम सब FM 100.1 MHz पर आप सभी अपने दोस्त वंदना चौक के साथ। सुप्रभात।

कहते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ हमेशा हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता रहता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है।

सुख आता है, दुख आता है और फिर सुख आता है, यही क्रम चलता रहता है। दिल के घाव जख्मों से नहीं डरते, दिल को भी मालूम है कि ये ऋतु भी आएगी, लेकिन जो इसमें आगे बढ़ जाता है, जीत लेता है वो सब कुछ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 200 जिंदगी की सच्चाई से जुड़े गीतों के साथ भोर सुहानी कार्यक्रम में फिर से आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त वंदना चुग।

दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं होता, देरी भले ही हो जाए लेकिन वो देता जरूर है, और जब देने पे आता है तो बस छप्पर फाड़ कर देता है।